आदाब समीन, यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्स के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन, आज बुधवार है। शक संवत 1948 की वैसाख महीने की 23 तारीख मुताबिक 13 मई 2026 ईस्वी। सुबह के 6:33 हुए हैं। आज की नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: आकाशवाणी श्रीनगर बीटीवी वालावु एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज पर समय पेशकदमस प्रोग्राम सुबह का ही
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु प्रोग्राम सुबह गाहियुक अजुक शुमार हेतु तुहन मेज़बान मुबशिर रुफाई तुहद खदमत मज हाजिर प्रोग्रामुक आगाज करो तिलावत कलाम पाक त अम के तर्जम सत।

ہنس کھڑی لول مسر میو چمت کی

0: सभी तो सुबह का ही बोझान यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नाश होंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीयदिनांके राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरण विषये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रिय परीक्षण संस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति, सा च परीक्षा

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवीके सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवीके सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया।

0: पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the sub-divisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The special

0: अमीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहाँ सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
1: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, एक गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
4: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

0: आदाब समीन, लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट जहूर अहमद और मेरे साथ हैं
1: तस्लीमा अख्तर। हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लिसनर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सितारे रुखसत हुए, सूरज ने दस्तक दी और एक और खूबसूरत दिन आपकी दहलीज पर आंग खड़ा हुआ। जिंदगी की इस नई सहर में आपके साथ आज जब आसमान ने रोशनी की चादर ओढ़ी है तो मेरा दिल कहता है कि हर सुबह एक नया मौका है अपने ख्वाबों को तरतीब देने का और बिखरे हुए इरादों को समेटने का।
0: जी तस्लीमा, आगाज उस रब कायनात के नाम से जिसने लफ्ज को तासीर और दिल को मोहब्बत की जागीर बख्शी, जिसने सूरज की पहली किरण को उम्मीद का सफीर बनाकर भेजा।
1: बिल्कुल जहूर, ये जो सुबह की किरण होती है ना, यही खूबसूरत किरण हमें गहरी नींद से जगाती है और एक नए दिन का एहसास दिलाती है। और ये जो नींद है ना, दिन भर के थके मांदे काम और दौड़ धूप के बाद ये नींद जब आती है ना, तो इंसान एक नए दिन के आगाज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होता है। और ये सिर्फ थकन का नाम नहीं है, इस नींद के पीछे एक बहुत बड़ा फलसफा है।
0: जी, साइंसी नुक्ते नज़र से नींद महज जिस्म को आराम देने का वक्फा नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई पेचीदा और फाल हयातियाती अमल है जिसके बगैर इंसानी जिस्म और दिमाग का तवाजुन बरकरार रहना नामुमकिन है।
1: अगर हम साइंसी पहलू देखें तो कुछ साइंसी अहम वजूहात है कि नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कहा जाता है कि नींद से दिमाग की सफाई होती है। हालिया साइंसी तहकीक से मालूम हुआ है कि जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग में सफाई का एक खुदकार निज़ाम मुतहरिक हो जाता है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। दिन भर की जहनी सरगर्मियों के नतीजे में दिमाग कुछ जहरीले मादे जैसे एमिलॉइड बीटा प्रोटीन जमा हो जाते हैं। गहरी नींद के दौरान दिमाग इन जहरीले फुजले को धो डालता है जो बसूरत दीगर अल्जाइमर जैसी बीमारियों का सबब बन सकते हैं। इसलिए नींद बहुत जरूरी है।
0: जी, याददाश्त की पुख्तगी, नींद के दौरान दिमाग दिन भर हासिल की गई मालूमात को प्रोसेस करता है। ये मालूमात को मुख्तसर मुद्दती याददाश्त यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुंतकिल करता है। अगर आपकी

ये जो जहां पर ये चीज हमें फायदा देती है ना, वहीं पर ये इस चीज का गलबा हमें नुकसान भी देता है। इत पर इस टेक्नोलॉजी हंस कात करान उस वना अगर इस ये फोन ही अगर निमो ये जो हर कंसेंस पॉकेट में हम इसको कैरी करते हैं, एक आम से आम इंसान भी कहीं भी हमें किसी चीज की जरूरत हो हम इस फोन को निकाल कर इस पर अपनी इंफॉर्मेशन देखते हैं, कत क्या गो ये छे मालूम करा, या अगर इस बोर ऐसा महसूस करा उस चाहे फोन से सो काम थे हमारा। मगर इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीजें होती है, इससे भी आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, ब्रेन फॉग पैदा होता है, और इससे ये होता है कि अच्छू रोजा अति अति इतनी छोटी सी दुनिया बना के रखी है हमने। तो वो आजकल कूत आई इमन अच्छन होंगी उस गाशुक बसारत के जो मसले हैं, विजन का जो मामला है, छोटे बच्चों में दरपेश है, और छोटे बच्चों में कितना ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, याददाश्त के मसले हमारे देख लीजिए। आप हर तीसरे बंदे को कहते हुए सुनेंगे मैं छू नहीं आधी रोजा, वजह क्या है, जो इसकी BMW रेस जो होती है ना जो ब्रेन पे, हाँ यस एग्जैक्टली, ये तो ऐसी टेक्नोलॉजी।

0: और छोटे बच्चों में कितना ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। याददाश्त के मसले हमारे देख लीजिए, आप हर तीसरे बंदे को कहते हुए सुनेंगे मिशन याद ही रोजा, वजह क्या है, जो इसकी BMW रेस जो होती है ना, जो ब्रेन पे
1: हाँ
0: यस एग्जैक्टली, ये तो ऐसी टेक्नोलॉजी छ ना लाइफ में बड़े आरामदेह बनावान, और हम खुद कुछ कर सकते इसकी बुनियाद पे, बहुत कुछ कर सकते, तैती अगर इसे मिसयूज करो या इसका ज्यादा
1: इस्तेमाल करें तो ये इंसान को
0: सिंपल नींद से रिलेटेड मसला भी यही है कि जब हम नींद नहीं लेंगे तो वो भी हमें परेशान करेगा, और अगर हम नींद ज्यादा लेंगे तो वो भी हमें परेशान करेगा।
1: सही कि अर्ली टू बेड एंड early to rise.
0: Yes, exactly.

0: जी आप आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन के साथ जुड़े हुए हैं मीडियम वेव और एफएम 2 पर, और इस वक्त आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह लाइव मॉर्निंग शो। लाइव मॉर्निंग शो में आज हम आपके साथ हैं, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तस्लीमा, और मेरे साथ हैं
1: जहूर अहमद।
0: जहूर, आज अगर तवारीख के हवाले से हम बात करें, 13 मई की तारीख आलमी और बरसगीर की तारीख में कई अहम मोड़ लेकर आई। इस दिन के चंद बड़े तारीखी वाकात है
1: जी
0: जिनको हम यहाँ दोहरा सकते हैं। तो तारीख के हवाले से आपके पास क्या है?
1: 13 मई 1952 को भारत की राज्यसभा का पहला इजलास मुनक्कद किया गया।
0: 13 मई की बात अगर करें तो 13 मई 1981 को एक तुर्क बाशिंदे ने पोप जान पाल दोम पर फायरिंग की, जिसे वो शदीद जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से वो इस हमले में बच गए थे। इस वाक्य के बाद पूरी दुनिया में अमन और मजहबी रवादारी पर बहस छिड़ गई थी
1: जी। और 13 मई 1952 को जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले वजीर आजम बन गए।
0: दूसरे जंग अजीम के दौरान आज ही के दिन 1940 को बरतानिया के वजीर अजम विंस्टन चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी मशहूर जमानत तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे पास आपको देने के लिए खून, मेहनत, आंसू के और पसीने के सिवा कुछ नहीं है
1: जी। यहाँ भारत में 13 मई 1962 को डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे सदर मुंतखब हुए थे।
0: अगर खेलों की बात करें तो आज का जो दिन है 13 मई 1950 को ब्राजील में मुनक्किद होने वाले चौथे फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच की तैयारियां मुकम्मल की गई थी। ये जंग अजीम के बाद फुटबॉल का पहला बड़ा आलमी मेला था
1: जी। 13 मई 1996 को एम करुणानिधि ने तमिलनाडु के वजीर आला का हलफ लिया।
0: 1946 में आज ही के दिन यानी 13 मई को मदर टेरेसा ने भारतीय शहरियत के लिए दरख्वास्त दी थी, जो उनकी इंसानियत की खिदमत के सफर में एक अहम मोड़ साबित हुआ।
1: मई 2000 में आज ही के दिन लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स का एजाज हासिल हुआ।

0: करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: भारत करे आज तो पगह ब्रिक्स खर्ज वजीरन हज मीटिंग हज मेजबानी, तो मीटिंग करन खर्ज वजीर डॉक्टर एस जयशंकर सदारत। रात वो नई दिल्ली में नाम निगारन सत कत करान खर्ज वजार सन तर्जमान रणधीर जयसवालन जो मीटिंग में शिरकत करन वाल ब्रिक्स मुल्कन हिंद खर्ज वजीर बे मेंबर तो शराकत दार मुल्कन हिंद नुमाइंद करन वजीर अजम नरेंद्र मोदी सत मुलाकात। रणधीर जयसवालन वोन मीटिंग दौरान करन ब्रिक्स मुल्कन हिंद खर्ज वजीर मुख्तलिफ आलमी तो इलाकई मसलन पे ख्यालन हुन तबोदल। नेपाल सत भारत कन तालुकातन मुतलिक वोन खर्ज सेक्रेटरियन जे भारतस नेपाल सत कसीर जहती तालुकात दोशवे मुल्क चे पानवन तालुकातन अंदर नौ जू जत त्रावन बापत रलित मेलित काम करान। तमिलनाडुस मज आज सपदन वाले हाल ही बनेम चे हुकूमत हिंदी फ्लोर टेस्ट ब्रो चु अत ड्रामाई सियासी सूरत हाल पद सपुदमु तिकाज ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मोनित्रा कजागम चु हुकूमतस पन अथवास आयतन थावने किस मसलस पे दोन हिस्सन अंदर तकसीम सपुदमुत। साबिक वजीर आला तो पार्टी जनरल सेक्रेटरी इड्डापड़ी के पलानास्वामी छु पार्टी एमएलएन हिदायत दुतमु तिम मकरन टीवी के सरकारस हमायत। सीनियर लीडर एग्री कृष्णमूर्तियन छु खबरदार कोरमु पार्टी विप खिलाफ वर्जी करन वाल असेंबली मेंबरन पार्टी मज नबर कड़ने। दोमि तरफ चु पार्टी हिंद बेई एक दर दावा कोरमु तस त्रहन असेंबली मेंबरन हमायत हासिल तो तम चु एस पी विलोमानी पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी हुन सरबराह मुकर्रर कोरमुत। पार्टी हिंद अमे दरिक लीडर समिक रात साबिक वजीर आला सी वी शंगमुगमस तो मीटिंग कर पत मीडिया सत कत करान वन ग्रुपन जे तिम दिन टी वी के सरकारस फ्लोर टेस्टस दौरान हमायत। सरकारन चे ए एम एम के दस पार्टी मज कड़ित सन आमतिस मेंबर असेंबली एस कामराज सन हमायत हासिल करमच। वजीर आला जोसफ विजय चे रात पेट हमायती पार्टियन हिंदर लीडरन सत मीटिंग करान युत फ्लोर टेस्ट ब्रो तिम सारे हमायत हासिल करन। ए आई ए डी एम के कन त्रहन असेंबली मेंबरन हमायत मिलन पत चे वमेद जे टी वी के सरकारस सपद अखत पंचा एम एल एन हमायत हासिल। यम खबर चु तु आकाशवाणी पे बोजान। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान वोनमुत पतमें कैचन दोहन दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुनशियात किस नेटवर्कस खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करमच। तमो वोन नशखोरी खिलाफ चलान हतन दोहन पे मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियानस आम लुकन हज बेपनाह हमायत मेजम। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियानस तहत रात वर्मुल कड़नाम से पद यात्राए पत अकिस भार लुक जलसस खिताब करान वोन लेफ्टिनेंट गवर्नरन।
2: पिछले 30 दिनों में ड्रग्स की सप्लाई चेन पर बहुत ही करारा प्रहार हुआ है। जागरूकता अभियान को नई ऊंचाई देने में आवाम का जबरदस्त सहयोग मिला है। ड्रग कार्टेल्स के हर एक फाइनेंशियल लेन देन पर नजर भी है, पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि नशा तस्कर जितना भी बड़ा होगा उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। हमने एक एसओपी भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है, ऐसे लोग जो तस्करी से जुड़े हुए हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने, उनके गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने, उनके पासपोर्ट को निरस्त करना, आधार कार्ड को निरस्त करना, जो फरार है उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करना और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना, अनेक प्राविधान उसमें किए गए हैं।
1: पेट्रोल तो कुदरती गैसिक मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरियन वोनमु भारतन घरेलू एल पी जी पैदावार हुर्रवित ये 36,000 टन रोजान पे 54,000 टन रोजान कोर्मुत। नई दिल्ली में रात सालान बिजनेस समिट 2017 खिताब करान वन तमो जोदव कैंचो मुल्को ईंधन च वसी किन अमिक कीमतन अंदर बेवाई हुर्र कोर पोज भारत रूद घरेलू सोत्रस पे कीमत डंज थानस कामयाब।
3: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz.

रात 9:30 प्रोग्राम पेश होगा सैन फनकार। प्रोग्राम की मेहमान है मारूफ मूसिकार और गुलकार मुनीर अहमद मीर, मेजबान गुलाम रसूल आकुन। गजलों का फरमाइशी फोन प्रोग्राम हेलो महफिल गजल पेश होगा शब 10:00। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जोर जहां और ब्रॉडकास्ट होगा 8:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी 9:00। कश्मीरी में मौसीकी पेश होगी 9:30। सूफी ख्यालात पर मबनी प्रोग्राम सूफी सदा रोज की तरह नश होगा 10:00। प्रोग्राम मारूफ सूफी शायर ललदत से मुतलिक है। इसमें सतीश विमल और शफी शौक के माबेन गुफ्तगू होगी।

गुलाम मोहम्मद गनाई सरनल और साथी छकत रो पेश करेंगे सुबह 11:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और सुपहर 4:30 बजे।

रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज नशर होगा और रात 8:30 बजे जिला नामा नशर होगा। आज का जिला नामा जिला कुलगाम से मुतलिक है। समय ये है तफसील हमारे आज नशर होने वाले प्रोग्रामों की। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर सुबह के 8 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात पेश होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में

0: आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगियों ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने

0: ही अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल

0: में जगह बनाई और चार ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलावा एफएम 91.5 मेगाहर्ट्ज़ पर तुदुशु लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह भोजन।
3: बिल्कुल जहूर, जिंदगी में डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त या सब्र इस्तक़ामत तीन चीज सान जिंदगी वारिया मोहतरम बनावान परफेक्ट बनावान जिंदगी हिंद तम सतून इन पे कामयाबी हज पूरा इमारत सो खड़ा तो जिंदगी कीमती चीज अगर नमें नज़म ज़ब्त डिसिप्लिन अंदर रोजो वारिया के तम चीज रावित हेकान जन सान अत मज रावान तो एफोर्ड करान तम राव सारे खुद बोर्ड अगर ट्रैफिक कथ करो पेशेंस भाग दौड़ अच्छा तुम गाड़ पकान पत यी मोटर साइकिलिस्ट का सुच यूत तेज पी स्पीड करान कि इंसान सोच मज पे गुन कत पे ब्रो कुन वातान तथा सोरे ट्रैफिक मन सब बेहतरी तम सो तेज स्पीड लगान कुन मगर इन चीजन पे अगर कंट्रोल करो ना वारिया नज़म ज़ब्त मजमो मोटर साइकिलिस्ट आसवी मोटर साइकिल चलावान या स्कूटी चलावान हेलमेट ही आस कलस या हेलमेट आसान सत अक्सर वो लक्ट लक्ट नौजवान स्कूटी पे हेलमेट सत मगर सुन आसान कलस लगित कहीं सुन स्कूटी मज ये बंद कर हैंग कर युथ पुलिस चेक पोस्ट या नाक वो कुन जाए या कुन जाए वो ट्रैफिक पुलिस चेकिंग करा तुथ तुला यह हेलमेट तो लगावान कलस
4: सही यो चीजों सतान अक्सर मोटर साइकिलिस्ट या गाड़ी चलावान चलावान दौरान
3: फोन
4: मोबाइल फोन इस्तेमाल
3: अच्छा हेलमेट लगे हेलमेटस मे फोन एडजस्ट कर्मुत नजर हटी दुर्घटना घटी बे सारे ब्रो यह समझ कि पुलिस वुशती हेलमेट तुलान तो कलस लगा मतलब पानस दिन मतलब कि पुलिस वो वो करो खुश कि अस हेलमेट लगोमुत चालानस नश बचो लेकिन अगर जिंदगी चालान करना सो

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर है स्टेशन है। 8:30 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नाश्ता होगा।
1: से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली नौमुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ टीवीके के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब टीवीके को एआईएडीएमके के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। टीवीके को अम्मा मक्कल मुनेत्र कडगम के एक एमएलए एस कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में टीवीके के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीस्वामी की क्यादत वाली एआईएडीएमके ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद एमजीआर ने

0: की थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी। पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगासामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवीं मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला

0: बीजेपी के चुनाव इंचार्ज मनसुख मांडविया, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और रियासती बीजेपी के सदर वीपी रामलिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी अहदेदारों और पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज अरकान से बातचीत की थी। पुडुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी बंगाल में हुकूमत की तब्दीली के बाद रियासती पुलिस ने नज्म व जब्त और सियासी तशद्दुद के माजी के मामलात के बारे में फौरी तौर पर एक मौकफ इख्तियार किया है। इस सिलसिले में नज्म व जब्त के एडीजी ने कल सभी पुलिस कमिश्नरों, पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स और रेलवे हुकाम को एक तफसीली हिदायत जारी की है जिसमें बहुत से फौरी इकदाम के बारे में कहा गया है। इस हिदायतनामे में 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद तशद्दुद से मुतालिक सभी केसों का नए सिरे से जायजा लेने का हुक्म दिया गया है जिनमें वो केस भी शामिल हैं जिनमें कतई रिपोर्ट्स भी दाखिल कर दी गई है। इस हिदायतनामे में सरहद के बारे में मीटिंग्स और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करके सरहद पार से की जाने वाली स्मगलिंग और जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की किफायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के उजराए आला ने वजीरों, अरकान असेंबली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला, वजीरों और दीगर अफसरान की गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने पीएनजी, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक्किद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर जरूरी खरीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वजीर आला, वजरा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गैर जरूरी गाड़ियों को सरकारी काफिलों से हटाया जाए। वजीर आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने पीएनबी मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर खास तौर से जोर दिया। वजीर आला ने कहा कि वजरा, एमपी, एमएलए और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने मजीद अहकाम जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वजीरों की कौंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियां मुनक्किद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने भी वजीरों, अरकान असेंबली अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरक तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनजर लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो सीबीआई ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरखास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट

0: ट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 इम्तिहान इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था, जिसे कल पेपर लीक के इल्जाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने सीबीआई से कहा है कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाक़े में नीट यूजी 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के एसपी ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। एसपी अमूल तांबे ने सब डिविजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी के आरजी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले यह तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादोशुमार से मुतालिक मुशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदादोशुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क्यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लिमानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लिमान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के जिला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ातरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के इख्तिताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निज़ाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्ज हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नरसिंह

0: स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से नवाजा। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इनकलाब ने वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलाह, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, मुज़ाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मनसूबा जेर गौर, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू हो सकती है, ईरान का बयान।
1: खास खास खबरें एक बार फिर, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क़यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफ़ायत शियारी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मॉनसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वे वलावो एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट समय पेश खदमत छो स्पॉन्सर प्रोग्राम जोर जहां और
3: प्रोग्राम जू और तो जहां और छु तोय तां वातनावान डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स लाल चौक अनंतनाग कोट रोड शुपया खानका फैजबना त्राल सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर उर्दू बाजार बारामूला मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर इकबाल कॉलोनी बड़शा नगर नट्टीपोरा श्रीनगर सेल नंबर 9419408011।
4: अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन, प्रोग्राम जू और तो जहां और हेचेस हाजिर बिचस तुज मेजबान रिफत आरा। सामीन कह इंसाना आसे तालीम हुंद माहिर दबो ये छु माहिर तालीम, कैसे आसे दुनियादारी समझ आमत, कैसे आसे सियासत समझ आमत, कैसे आसे इंतजामिया समझ आमत, कैसे आसे सेहत समझ आमत, दबो यस इंसानस ये समझ आओ सु छु तमकुई माहिर, पत दबो यस इंसान ये मिसवन ये सोरी समझ आओ पत आसन पनुन पान समझ के हम तमिस क्या बनाओ। मसलन कंस इंसानस अगर चाय सत म्याद चौक बद हजमी गि म्यादस खस फोक अत अमिश तोत सुबह वथित चाय चेन ब्याक इंसाना सिगरेट शाठा शाठा मारान चास वास तो चालू। बहरहाल वनुक मकसद छु ये जे हो अगर चाय बंद कर मुमकिन म्यादस गस फर्क तो यख अगर सिगरेट बंद कर मुमकिन अमिस बल है छ अमुक मतलब मह कि तथ सोचस तिम नजरन तिम कनन कुल्फ गमो इंसान सोच है बोज है वुछ है समिन। आज करो अथ मौजूस पे कत तो मह गुफ्तगु रोजन स्टूडियोस मं वादे हिंद मारूफ यूनानी तबीब डॉक्टर हकीम नसर अहमद शाह सब। डॉक्टर सब असल
5: डॉक्टर
4: सब अंसान युथ थन पे सह मौसम तमिस कुन कोई अता पता अम क्या खता कह यह गो बेमार
5: وچس تہد سوال اخ انسان اس موسوم بنت آو یا دنیا پہ یہ کز پہ بمار
4: بالکل
5: وٹ سون زٹ تس غلطی کر خاندان تو قومن تمیک سزا ملان یتھے کن ونو کہ اس موسوم بچہ آو شین رتن امس ماجہ ہز امیونٹی ہز سو ست ست شین رتن امس ماجہ ہز پروٹیکشن ملان
4: بالکل
5: تھان پہ تم پتہ ام سز امیونٹی ٹریننگ ضرورت آسان گوم اس وائرسز کی بیکٹیریا مائکرو آرگنزمز خلاف امس ہوں وی کہ کت کن ایز امیونٹی کم کر گو ات مزہ تف تست ات مزہ معمولی ساس تیت زکام تیت اچھن ہز اریٹیشن تمہ تھی یوتان یہ ایڈجسٹ گھس ات دوران کس انسان

0: आना चाहिए।
1: कृष्णा घाटी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, दरअंदाज हलाक, मुश्तबा नकल हरकत देखते ही ऑपरेशन तेज, इलाके में तलाशी जारी।
0: इसी हवाले से एक और खबर इस उर्दू रोजनामे में छपी है, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, एक दरअंदाज हलाक, फौज का दावा।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर नल से जल का हदफ अधूरा, डेडलाइन में महज एक साल बाकी, चार बरसों में सिर्फ एक जिला में मिशन मुकम्मल होने की तस्दीक।
0: एक और उर्दू रोजनामे से खबर ये ऐसे है, जम्मू कश्मीर सरकार दो मिनटों में शराब पर पाबंदी लगा दे, अगर मरकजी हुकूमत की तरफ से आमदनी में नुकसान की तलाफी की जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
1: जी, सुर्खियां आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से।
0: एक और सुर्खी है इसी उर्दू रोजनामे से, अनंतनाग दारुल उलूम में आतिश जदगी, 12 साल तालिब इल्म जाम बहक। अभी खबरें और भी हैं जहूर, खबरों से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा।
1: जी
2: दुमया शकिल सुबह चमा जान पहन का मैकेनिका नजर तल बह शेरना भाई भाई पठना छमना वारंटी तक
3: बहुत सा खुश खबर लुकन हिंद आराम बापत खूल JK स्टेशनर्स वालों बेमनिस मन पन मल्टी ब्रांड वर्कशॉप ये प्रेत कुन TVS स्कूटी तो बाइकन होंडा स्कूटी तो बाइकन अलावा हीरो कंपनी हिंदन स्कूटर तो बाइकन काबिल तो तजुर्ब याफ्त मैकेनिक शेरन
2: मे वन मोन यह हीरो स्प्लेंडर तो शेरना
3: क्याज नख तुत वन स्पेयर पार्टसन पे खूसी छू
2: आ
3: तु याद JK स्टेशनर्स मल्टी वर्कशॉप बिमना नजदीक KFC।
4: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे, क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
5: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
6: पर क्या कर सकते हैं?
5: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 1416 पर कॉल करो, यहाँ सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
7: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
8: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
9: रुक जा बुड्ढू।
10: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
8: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
11: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
10: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: ہے لون صبا ہے ونچکات اکشی ڈورس گور گور کران بس آس وٹر پیٹ کے زمین کھاتا سگ نو
12: یس چم پرون آب موٹر اچ ٹائم لگنی سگون
3: ہم ساتن کچھ پھر ون مئی مسان بی کن کمپنی ہند آب موٹر زمیندارس ہسا پت کن ڈوک صرف ہونڈا وت پخت مس JK سٹیشنرس مولانا آزاد روڈ سری نگر تک ونکس اکشن سکیم چلان ہے یس نمو تو تم دن امہ بدل اس بدل نو آب موٹر باقی پونس دموک اتس کیا
1: आज की सुर्खियों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम।
0: आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं FM और मीडियम व्यू पर। मेरे पास एक उर्दू अखबार है, खबर शाया हो चुकी है इसमें, मसनूई जहानत खाने लगी नौकरियां, मेटा ने खत्म कर दी 8,000 की मुलाजमतें, जकरबर्ग का सख्त कदम।
1: यहाँ इस अखबार में छपी ये सुर्खी है, ईरान की खुली धमकी, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी करेंगे।
0: मेरे पास एक अंग्रेजी अखबार है, इसकी एक इसमें हेडलाइन शाया हो चुकी है, बॉर्डर विलेजेस नो लॉन्गर डिस्टेंट फ्रॉम दिल्ली, Lieutenant Governor Manoj Sinha on Tuesday said that under Prime Minister Narendra

0: Modi's leadership, border villages are no longer distant from Delhi but are now connected to the mainstream of development.
1: यहाँ इस अखबार पे सुर्खी है, मलेशिया और तमिलनाडु के दरमियान गहरे तालुकात, वजीराजम इब्राहिम की नई वजीराला विजय को मुबारकबाद।
0: अंग्रेजी रोजाना से एक और खबर, श्रीनगर पुलिस 30 डे रिपोर्ट, 101 केसेस, 143 अरेस्ट्स, रुपीज 21.5 करोड़ अटैच्ड इन अ मैसिव ऑफेंस अगेंस्ट नारकोटिक्स अंडर द ongoing Nasha Mukt Bharat Abhiyan. Srinagar police have registered 101 drug related cases and arrested 143 accused persons within a month while attaching properties and assets worth rupees 21.544 crores in one of the biggest anti-drug crackdowns in the district in recent years.
1: जी, मेरे पास ये उर्दू अखबार है, इस पे सुर्खी है, ईरान के खिलाफ प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने पर गौर जारी, व्हाइट हाउस।
0: अंग्रेजी रोजनामे से एक और खबर, ड्रग पेडलर्स रुपीज 1.2 करोड़ प्रॉपर्टी अटैच्ड इन श्रीनगर, कंटिन्यूइंग इट्स सस्टेन्ड क्रैकडाउन अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग अंडर द ongoing Nasha Mukt Jammu and Kashmir Abhiyan. Srinagar police have attached an immovable property worth approximately rupees 1.2 crore situated at Gaso Hazratbal.
1: जी, यहाँ इस अखबार की सुर्खी है, अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, ईरानी तेल चीन को फरोख्त करने वाली 12 कंपनियों पर पाबंदी आयद।
0: जरूर, खेलों के हवाले से कुछ खबरें, दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेटों से शिकस्त देकर प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार रखी। एक और खबर है, थाईलैंड ओपन, पीवी सिंधु से भी बड़ी उम्मीद है वाबिस्ता। और खेलों के हवाले से एक और खबर है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, हिंदुस्तानी लड़कियों का ताशकंद में डंका, 8 बॉक्सर्स फाइनल में दाखिल।
1: पाकिस्तानी एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी, इस्लामाबाद ने गुमराहकुन करार दी। आर्केडिया की साबिक मेयर ने चीन के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों का एतराब कर लिया। एक और सुर्खी है, कश्ती डूबने के बाद मलेशिया में लापता 14 इंडोनेशियाई बाशिंदों की लाशें बरामद। तमिलनाडु वजीराला विजय का एक और बड़ा फैसला, सुकूनों और मजहबी मकामात के करीब शराब दुकानें बंद। AIADM के पार्टी में फूट, बागी अराकीन असेंबली में विजय की हिमायत करेंगे। और आखिर पर ये सुर्खी, नर्सों का आलमी दिन, सदर जमहूरिया ने 15 एहलकारों को अवार्डों से नवाजा। ये थी आज की सुर्खियां, इस वक्त हमें इजाजत दीजिए,
0: पायम सुबह प्रोग्राम अभी जारी है, पायम सुबह प्रोग्राम में और भी बातें होंगी।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे होंडा, प्याजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बाइख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर।
1: गुजब छेड़ता है सुरम के फसाने, तो लफ्जों को मिलते हैं नए ठिकाने। आई समीन समाप्त करते हैं ये खूबसूरत गजल जगजीत की आवाज।

0: सबीन आप ये गजल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग लाइव शो पयाम सुबह।
1: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
2: माहिरीन की आरा, तजुर्बा और रहनुमाई,
3: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
1: सेहत के मशवरे,
4: ऑर्थोपेडिक कुछ तकलीफ ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
1: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
2: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
1: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम सुबह।
0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। अब खबरें नशरों की, पहले कश्मीरी और उसके फौरन बाद उर्दू में। खबरों से पहले ये वक्फा।
5: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
6: आदाब, खबरन हुन बुलेटिन है चु हाजिर शबनम विजपुर। इम्तिहानन मुतल्लिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चु नीट यूजी 2017 इम्तिहानस मंज पेपर लीक गस्ने किस इल्जामस पेट हनामुत इम्तिहान मनसूख करनुक फैसला कोरमुत। एजेंसी मुताबिक ये इम्तिहान नव सर हन यमे बापत न तालिब इल्मन नव रजिस्ट्रेशन हंज कह जरूरत आसे तो नई तिमन कह हुरे माने फीस हन। आ दौरान छात इम्तिहानस मंज पेपर लीक गस्ने किस मामलस सीबीआईन तहकीकात शुरू कोरमुत। जम्मू कश्मीर मंशियात निश पाक करने बापत कहमे अप्रैल शुरू करने आमच नशा मुक्त अभियान तहत सरगर्मी आजकल जोर शोर सान जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान मोंग रात वर्मुन मंशियात खिलाफ पद यात्रा झंड हवित रवाना करने ब्रो मंशियात न्याल गालन खतर समाज कन तमाम तबकन अथवा तमो वो नशा मुक्त अभियान तहत आई वनस तम जलश 5,000 बेदारी प्रोग्राम मुनद कर 44,000 नश करन वाले नफर नाव इलाज करन तो 7 ड्रग स्मगलर आए गिरफ्तार करन।
7: पिछले 30 दिनों में ड्रग्स की सप्लाई चेन पर बहुत ही करारा प्रहार हुआ है। जागरूकता अभियान को नई ऊंचाई देने में आवाम का जबरदस्त सहयोग मिला है। ड्रग कार्टेल्स के हर एक फाइनेंशियल लेन देन पर नजर भी है, पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि नशा तस्कर जितना भी बड़ा होगा उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। हमने एक एसओपी भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है, ऐसे लोग जो तस्करी से जुड़े हुए हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने, उनके गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने, उनके पासपोर्ट को निरस्त करना, आधार कार्ड को निरस्त करना, जो फरार है उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करना और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना, अनेक प्राविधान उसमें किए गए हैं।
6: अ दौरान करन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कपवोर गंशियात मुखल पद यात्रा झंड हवित रवाना। सन कपवारिक नुमाइंदा रफीक अहमदन खबर दिशा लेफ्टिनेंट गवर्नर बगरवन कपवार मरकजी सिकीमन हंद मुस्तक नफरन मज सेंक्शन लेटर ते 30 गाम अलाकस मज करन तम मोबाइल टीवी स्क्रीनिंग वैन झंड हवित रवाना। नशा मुक्त अभियान तहत कुलगामि गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट अंद वोतमुत। इख्तितमी तकरीब मंज कर कुलगामिक डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलमन शिरकत। तमो कर अमि टूर्नामेंट कन इंतजामन तारीफ तो वोनुक जि खेल सरगर्मियन मंज कोरियन हंज शिरकत मुसबत रुझान। चीफ सेक्रेटरी अटल डलुवन वोनमुत जि जम्मू कश्मीरन पी एम जन आरोग्य योजना अमलावनस तो अमिक फायदे मुस्तहिक लुकन तम वातावनस मंज गैर मामूली कारकरदगी हमत। श्रीनगर तमो स्टेट हेल्थ एजेंसी हज गवर्निंग काउंसिल मीटिंग दौरान ये स्कीम

0: 16 के दरमियान भी और आगे 19 20 के आसपास भी, तो टेम्परेचर भी अब ग्रेजुअली राइज होंगे फर्दर, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। लेकिन फिलहाल बारिश या बर्फबारी के हवाले से कोई मेजर फोकस नहीं है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर।
1: जो हेल स्टॉर्म है इसको लेकर हमारे जो किसान कम्युनिटी है वो बहुत वरीड है, तो उनका काफ़ी इससे नुकसान होने के चांसेस भी रहते हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेकर आपका क्या मशवरा रहेगा?
0: जी बिल्कुल, अभी जो स्प्रे एक्टिविटीज हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं कमिंग डेज में भी, आजकल में भी, और जो स्प्रे वगैरह लगाते हैं खासकर जो पोस्ट हेल स्टॉर्म इंसिडेंट के बाद, तो जो रिकमेंडेड केमिकल्स हैं, रिकमेंडेड जो डोज है फ्रॉम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चरिस्ट का जो एक्सपर्ट्स है

0: रहेगा।
1: जी बिल्कुल, अभी जो स्ट्रे एक्टिविटीज हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं कमिंग डेज में भी, आजकल में भी, और जो स्प्रे वगैरह लगाते हैं खासकर जो पोस्ट हेल स्टॉर्म इंसिडेंट के बाद, तो जो रिकमेंडेड केमिकल्स हैं, रिकमेंडेड जो डोज है फ्रॉम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चरिस्ट का जो एक्सपर्ट है, तो उसको जो है वो पूरी तरह पालन करें, कौन सा केमिकल यूज करना है, कितने दफे यूज करना है, और उसका जो कंसेंट्रेशन या जो सोल्यूशन बनाते हैं वो किस हिसाब से यूज करना है, तो ये चीजें जो है हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन स्प्रे शेड्यूल कमिंग डेज में कर सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी, ये थे महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद जो मौसम के हवाले से जानकारी दे रहे थे।
0: जरूर कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंसान के बस में नहीं होती है, लेकिन उनको सही तरीके से चलाना इंसान के लिए बस में है। वो ये कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि तीन प्रिकॉशनरी मेजर्स यूमर्स हर कुन चीज मीन नॉट ओनली फॉर मौसम, ऐसे कहो हर कुन चीज खतर तीन प्रिकॉशनरी मेजर्स तुले थन तीन कदम इकदम तुले थन एहतियाती तदाबीर एहतियाती तदाबीर हे कहो पे लेवल पे कर बाकी चु कुदरत तमाम सोरे कुदरत आफात समावी तम चीज इन पे सोन
2: बस
0: मौसम सो चीज उस बे वक्त बिगड़ित हे तथ हेको कहीं कर मगर क्या चीज तम यम पान बिगाड़ निश एहतियात हेको कर या इंसान जो अशरफुल मखलूकात कह चीज अगर बिगड़न पता अगर इस स्टेबल रोजो सिचुएशन मज स्टेबल पोजिशन मज रोजो स्टेबिलिटी मैटर करान मेंटल स्टेबिलिटी आपकी अपनी एक स्टेबिलिटी थिंक थिंकिंग की सोचने की कि अगर एक कहा मुश्किल वक्त आओ तम साथ कित पोचो तुम पुन हृदय अमल
2: जिंदगी गुजार
0: सोरे कह हृदय अमलस पे अगर तुम स्टेबल हेको रूज किचुएशन हेको तुम कुन तिचुएशन मज हेको तुम इजिली नबर नीर हैंडल कर مے باسان کشر بہت
2: کشر بہت بوزو
0: سن سامین آسن پیاران کیس کشر موسیقی چھ سارنی پسند
2: صحیح تو چھپیشی ناتیا کلام پیش کرن وحید جیلانی

0: मतलब एज पर इन्फॉर्मेशंस जो हमें हम तक पहुंचाई गई है, तत्मा चीवा मानना कि यूज सर गाउटुक मरीज छु ना आसान यूज चेरी हुंद इस्तेमाल यूज गिलासो के इस्तेमाल छु तमुक इस्तेमाल छु वहां यूरिक एसिड यूज लेवल छ ना सो काम करने खतर इंतहाई मददगार मानना. अच्छा निंद्र हुन छु ये काफी कुदरती खजान मेलेटोनिन छु प्रोड्यूस करान इंसान अंदर इम से निंद्र असल पड़ी वांचे मसल रिकवरी छ इम से गसान ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस छ इम से काम गसान हार्ट हेल्थ खतरु छु वारिया असल तो बे छु एम अलाउ शुगर त यूसन वजन छु सु छु इम से तवाजुन उस मज रोजान मतलब ये जे कि यू छु रियली अ सुपर फूड इंसान से खतर छु कम से कालस आसान बारिया सेंसिटिव
1: मैं छु
0: शेल्फ लाइफ छ वारिया कम बट है बहुत ही अच्छा
1: बीच में हार्वेस्टिंग पीरियड इज जन छना सा सिक्स वारिया कम इस टाइम इस रोजान इस ज्यादा टाइम इस रोजान के ती क्या जी छु गसा तैयार तकरीबन तकरीबन सोरी इक्वटाई एक्सी कम टाइम इस मज तो बड़ मजेदार फसल छ
0: बे छु इनके सन अगर शहरस मस्त स्टीम मस्त क से आंगन छु या थोड़ा बाग छु तिम ती छ करा बड़ पसंद बड़ नफासत सान छ तिम ये गिलास को घर बाबा
1: तक ये ती वजूहात की अच्छन ज्यादा दवा पेवान छगन की ही ज्यादा बीमारी हन सेंसिटिविटी आ
0: अस्ति छ घर
1: डिजीज रेजिस्टेंट आसान अच्छन ज्यादा टाइम चूंकि अच्छा टाइम ती कम आसान हार्वेस्टिंग फ्रॉम बन पेट फुली पेट हार्वेस्टिंग ट्रांसलेशन ज्यादा टाइम आसा कि
0: मे छु तछु पता यते छु ना मे वनी रछु बड़ खूबसूरत बास तमी खूबसूरती किना सो वनी वना दमो अस्ति छु गरे वो बड़ जबरदस्त एलते हते मला के लकड़ी गिलास पे वांच ना खाने से ज्यादा क्रेविंग आती है उसको देखने की अजीब सी एक खूबसूरत सा लुक होता
1: है सही छु बड़ा खुश करा
0: आ खूबसूरती छ सन कशन बर्तन मस्ती बड़ जबरदस्त टेक्सचर अगर ये कशर बहुत छु बहुत सारे इंसान छु مینٹلی اخ سکون میلان ذہنی سکون میلان مے باسان گڈ بوز ہاک شربت
1: ا

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़न दहन बजन ताम नश शब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे तक नशर सब्दान।

0: हेमंत पेटी साहित्य पैठ है का बजे 53 मिनट अंतर आए
1: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी पयामे सुबह।
2: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
1: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात
2: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगू पयामे सुब।
3: यारो वन यारो वन।
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से
2: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर पयामे सुब।
4: सुनो सजना
2: पयामे सुब।
5: पानी की लहरों से लड़ना हो या सड़कों पर अपनी हिम्मत को आजमाना, खेल सिर्फ जिस्म की वर्जिश नहीं बल्कि रूह की बेदारी है। जी हाँ साथियों, आपको पता है कि हमारे हर प्रोग्राम में एक थीम होती है और आज का जो हमारा गेस्ट हमारे साथ जुड़ता है, स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड हमारे गेस्ट होते हैं और आज भी जो हमारे साथ शख्सियत है, ऐसी शख्सियत मौजूद है जो न सिर्फ खुद इन रास्तों के मुसाफिर हैं बल्कि दूसरों को भी जीतना सिखाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ हम जुड़ चुके हैं आज के मेहमान रियाज अहमद वानी, जो स्विमिंग एंड सर्वाइवल सोसाइटी में एक एक्सपर्ट है और प्रेजिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर माउंटेन बाइक एसोसिएशन के। इसके अलावा भी इनका काफी बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ है, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, अपने मेहमान का इस्तकबाल करूंगी, मजीद बातचीत करेंगे इन्हीं के साथ। रिया साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे स्टूडियोज में, हमारे प्रोग्राम लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह में।
6: शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। बेसिकली मैं एक ट्रायथलीट हूँ, ट्रायथलीट जो स्पोर्ट है ट्रायथलॉन, उसको खेलने का बहुत ही शौक था। तो उसके लिए जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ, तब 90s में उस टाइप की कोई एसोसिएशन यहाँ पे थी नहीं, तो मैंने एक चीज़ किया, मैंने इन तीनों स्पोर्ट्स को अलग अलग किया और अलग अलग खेलने लगा और अलग अलग मैं पार्टिसिपेट करने लगा। चूंकि ट्रायथलॉन एक अच्छा स्पोर्ट है, जो भी ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट करा उसको आयरन मैन का एक खिताब दिया जाता है, तो इस लिहाज से मैंने इन तीनों स्पोर्ट को अलग अलग करने की वजह यही थी कि एसोसिएशन उस टाइप की उस टाइम में नहीं थी। तो फिर स्टार्ट किया पहले स्विमिंग से, फिर साइकिलिंग से, उसके बाद रनिंग से। तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई के साथ साथ भी इन स्पोर्ट को खेलना, तीन तीन स्पोर्ट को, वरना एक ही स्पोर्ट्समैन खाली एक स्पोर्ट खेलता उसी में एक्सेल करता है।
5: वैसे अगर मैं आपकी बात करूं, अगर यूथ की बात करें तो यूथ हमेशा चाहते हैं कि उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, बड़ा ख्वाब रहता, बड़ा सपना रहता है। क्या गवर्नमेंट जॉब घोषासन इस गो लाइफ टाइम खतरो मेंटली फ्री कि हमारे पास एक नौकरी है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अगर आपकी बात करें, आप एक गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो अच्छी खासी आपकी तनख्वाह भी होगी माशाल्लाह, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी स्पोर्ट्स में जाने की, मतलब आप अपनी नौकरी है आपके पास, तो आप ये जो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ चुके हैं, कब जुड़े, कैसे जुड़े, जबकि आपके पास है ऑप्शन कि आप अच्छी खासी नौकरी में हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो ये जो स्पोर्ट्स का रुझान है इसकी तरफ कब गया और क्यों गया?
6: देखिए, पहले स्पोर्ट्स खेला उसके बाद नौकरी मिल गई,
5: क्योंकि आपका जो पेशा है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, वो डिफरेंट है, ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर जो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, या मतलब स्पोर्ट्स में आप है, आपका पेशा जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है।
6: देखिए, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं काम करता हूँ रोड रिसर्च एंड मटेरियल टेस्टिंग लैब में, एक मैं छोटा सा एक्सपर्ट हूँ। मेरा काम यही है कि जो भी क्वालिटी कंसर्न होता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मैं क्वालिटी चेक करता हूँ अपने काम के हिसाब से। पहले मैं स्पोर्ट्स खेलता था, उसके बाद जॉब ऑफर आई, जॉब इंटरव्यू हो गया। तो अगर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है उसको जॉब मिलती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एक जॉब SRO होता है, जो भी नेशनल लेवल में पोजीशन हासिल करेगा पहली तीन में उसको जॉब यहाँ मिलता है। तो उस लिहाज

0: से भी थोड़ा सा मुझे ऑफर आई थी, लेकिन मैं पहले स्पोर्ट्स किया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की। लेकिन गवर्नमेंट ने एक इसमें रूल रखा है कि एक हमारा एक CSR होता है, लीव रूल, कि हम स्पोर्ट्स के ज़रिए खेल सकते हैं, तो हमें जो कैलेंडर ईयर होता है उसमें हमें 2-4 महीने मिलते ही है लीव, जो कि गवर्नमेंट ने रखा। हाँ, अगर हम अच्छे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट में स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे या कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखते हो कि इंडियन क्रिकेट टीम में कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, वो सारे मुलाजमी होते हैं
1: जी।
0: वो बहुत कम अपने ऑफिस जाते क्या, ताकि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट। इसीलिए यहाँ भी हम बहुत कम ऑफिस जाते थे पहले पहले जब मैं खेलता था, क्योंकि अब मैं एज कोच काम करता हूँ, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ रखी है तो मैनेज कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी डेली प्रैक्टिस होती है सुबह। टूर्नामेंट चैम्पियनशिप्स ये महीने में एक बार होते हैं या क्वार्टरली एक बार होते हैं, इनको भी मैनेज कर पाते हैं। बाकी जो ड्यूटी है वो 10 से 4 या 4:30 तक है, वो कर लेते हैं। बाकी जो टाइम मिलता है वो स्पोर्ट्स के साथ देता हूँ।
1: और एंजॉय किस चीज़

0: प्रैक्टिस होती है सुबह, टूर्नामेंट चैंपियनशिप्स ये महीने में एक बार होते हैं या क्वार्टरली एक बार होते हैं, इनको भी मैनेज कर पाते हैं। बाकी जो ड्यूटी है वो 10 से 4 या 4:30 तक है, वो कर लेते हैं। बाकी जो टाइम मिलता है वो स्पोर्ट्स के साथ देता हूँ।
1: एंजॉय किस चीज को करते हैं आप? आपको जो आप जॉब करते हैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल है या जो आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में है उनमें ज्यादा कंफर्टेबल?
0: देखिए दोनों चीजें सोसाइटी में हेल्प मिलती है सोसाइटी को, जो क्वालिटी चेक करते हैं, कहीं ब्रिज बनता है, कहीं रोड बनता है, कल को कोई हादसा ना हो जाए उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है। तो जो दूसरा है ये स्विमिंग का स्पोर्ट है या साइकिलिंग का है, ये फिटनेस के हवाले से है, लोग इसमें अपनी फिटनेस बरकरार रखते हैं, इसीलिए दोनों मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं और सोसाइटी को इससे फ़ायदा मिलता है। जो मेरी ये स्विमिंग सोसाइटी है, 2014 में मैंने सैलाब देखा, चूँकि मैं एक अच्छा स्विमर था तो मैंने सोचा कि नहीं क्यों ना एक अच्छी सोसाइटी बनाए, उसमें दो चीज़ों का फ़ायदा मिल सकता है, एक तो अच्छे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं और एक लाइफ सेविंग स्पोर्ट भी है, कोई बेचारा किसी जगह फंस गया पानी में वो अपने आप को बचा सकता है। तो हमने हमारा सेंटर है यहाँ निगीन वाटर स्पोर्ट सेंटर में, वहाँ हम बच्चों को स्विमिंग सिखाते हैं। सुबह सवेरे मेरे पास बहुत सारे कोचेज हैं, वो हेल्प करते हैं ताकि हम लोगों को स्विमिंग सिखाए और वो आगे जाके फिर स्पोर्ट में, इस स्पोर्ट में एक्सेल करें, इस स्पोर्ट में वो बहुत
1: आगे बढ़े
0: क्योंकि
1: ये जो स्पोर्ट्स है ये इंसान को फिट भी रखता है, मेंटली भी फिजिकली भी फिट रखता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत। आपने फ्लड की बात की, तो फ्लड के बाद से आपको ये ख्याल कैसे आया?
0: देखिए मैंने देखा कि लोग सर्वाइवल करते थे, उनके पास इतनी अच्छी स्विमिंग नहीं थी। अगर हम स्विमिंग की परसेंटेज देखें कश्मीर में वो बहुत कम है, 2-3%। इसके अलावा अगर हम दिल्ली जाए, दिल्ली या बहुत बहुत दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ गर्मी का मौसम रहता है, हमारे एक ये भी है सेटबैक है कि हमारे यहाँ मौसम गर्मी का बहुत कम आता है, जो कि मेन गर्मी का 4 महीने आता है, बाकी जो सीजन 4 में बटा हुआ है। इसीलिए ये चीज़ है कि वहाँ परसेंटेज स्विमिंग अच्छी है, यहाँ मैंने सहला में देखा लोगों ने 7 दिन सर्वाइवल किया। मैंने सोचा नहीं मैं एक अच्छा स्विमर है क्यों ना मैं एक अच्छा छोटा सा स्टेप उठाए ताकि सोसाइटी को फ़ायदा मिले, तो हमने अच्छा स्टार्ट किया। अभी तक एज पर हमारी सोसाइटी का रिकॉर्ड है कि 2000 से लेकर 2500 तक हमने बच्चों को ट्रेन किया, जो कि अच्छी खासी स्विमिंग करते हैं। आप देखते हैं कितने सारे ड्राउनिंग इश्यूज होते हैं साल भर में, जो हमारा रिपोर्ट है या SDRF का रिपोर्ट है वो कम से कम 80 से लेकर 90 लोग पानी में डूबने से मरते हैं और उनको कोई नहीं, थोड़ा सा रेस्क्यू होता है, 1-2% रेस्क्यू होता है, बाकी कुछ नहीं।
1: लाइफ सेविंग हैक्स का उनको पता नहीं है। और अगर हम स्विमिंग स्पोर्ट्स में डालते हैं बच्चों को ही बचपन में ही, एक तो वो हाइड्रोफोबिया भी उनके दिमाग से निकल सकता है, हाइड्रोफोबिया बहुत सारे लोगों को है। तो क्या लगता है आपको, हमारे जो अभी माँ बाप है, पेरेंट्स है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, आपने जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था कि आप बहुत सारे छोटे बच्चे जो किड्स है आपके पास उनको भी ट्रेन करने के लिए आप अवेलेबल रहते हैं और वो भी आते हैं, कितना रुझान है, कितने बच्चे आते हैं आपके और लोगों का कितना है इसमें कि कितना साथ देते हैं वो, कितना इस चीज को सपोर्ट करते हैं?
0: देखिए भीड़ तो बहुत अच्छी है, लोग भी सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इस हवाले से हमारे पास उतना है नहीं। हमारे पास वही एक लेक है, डल लेक, निगीन लेक और कुछ स्कूलों में पूल्स हैं, लेकिन अब सारे स्कूल्स में पूल्स बनने लगे, अब अच्छा खासा एक रिजल्ट आता है, परसेंटेज बढ़ गई है। जो 1-2% हमारे पास स्विमिंग परसेंटेज थी उन लोगों में जो पानी के नजदीक रहते थे, बाकी जो पानी के दूर रहते थे उनमें कोई स्विमिंग परसेंटेज थी नहीं। अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है। अब इसमें एक चीज़ है कि अब जो स्कूलों में पूल आ गए हैं उनमें थोड़ी सी परसेंटेज में बढ़ोतरी हो गई है
2: और बच्चों को स्कूल में स्विमिंग सीखने का भी मिलेगा
0: और
2: जैसा तस्लीम जी ने कहा कि हाइड्रोफोबिया से ये उसे काफी हद तक उन पर काबू पा सकते हैं लोग। रिया साहब, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, साइकिलिंग और स्विमिंग दो अगर देखा जाए तो दो अलग अलग गेम्स हैं, तो आपका कैसा, मतलब आपको कैसा रहा इसका ये कि दोनों साथ साथ अपने लिए?
0: देखिए ये मैंने पहले भी इसका अर्ज किया कि ये एक ट्रायथलॉन एक ओलंपिक स्पोर्ट है और इसमें 3 चीजें एक साथ करनी पड़ती है। पहले आपका स्विमिंग रहता है 3 किलोमीटर का. 3 किलोमीटर कहना ऐसे जबानी आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है. स्विमिंग खत्म करते ही आपको 40 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी है, उसके बाद 10 किलोमीटर की रनिंग.
2: मतलब ये सारे स्पोर्ट्स साथ साथ ही लिए,
1: ये कनेक्टेड है.

0: कनेक्टेड टू
1: ट्राइएथलॉन उसको कहते हैं, थ्री एथलेटिक इवेंट्स हैं इसमें, ये आपको जरूरी, मैंने इसमें दो तीन नेशनल खेले हैं, एक तो चंडीगढ़ में खेला है, एक तो तमिलनाडु में भी खेला है, और उसके बाद मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि ये अलग अलग मैं खेलता रहा यहाँ।
0: वेल रियाज साहब, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये जो तीन स्पोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आज, साइकिलिंग, रनिंग और जो स्विमिंग है जिसमें आप महारत रखते हैं और लोगों को, बच्चों को, यूथ्स को आप ट्रेन भी करते हैं, इसके बारे में ये कितना इफेक्टिव है हमारे लिए और कितना ज़रूरी है हमारे लिए और इसका क्या मतलब रुझान है लोगों का, उस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे। लाहौता जी, मुझे लगता है एक नगमा सुनाएंगे अपने,
2: जरूर क्यों नहीं, हम अपने सुनने वालों को और अपने मेहमान को ये नगमा सुनाएंगे।

0: रिया साहब, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी मैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में झील और दरिया तो मौजूद है, लेकिन हम अभी तक बैन अक्वामी सतह के वाटर स्पोर्ट्स ये जो इवेंट्स है ना, वो कहाँ पे है, होते हैं इवेंट्स?
1: देखिए, इसका एक मसला, एक चीज है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हमारे पास अच्छे खासे स्विमिंग पूल्स हो या अच्छे खासे वो ट्रैक्स हो जहाँ पे हम वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी ज़रूरी है कि पहले बेसिक स्विमिंग होनी चाहिए। अगर आप कयाकिंग कैनोइंग करोगे, स्विमिंग तो ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप राफ्टिंग करोगे, वाइट वाटर राफ्टिंग, उसके लिए हमारे पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें हम एक्सल भी अच्छा करते हैं और हम मेडल्स वगैरह भी अच्छे खासे निकालते हैं। अब रहा स्पोर्ट जो स्विमिंग है, ये तेज तरीन स्पोर्ट है, ओलंपिक स्पोर्ट है, एक एक सेकंड का डिफरेंस रहती है। उसके लिए एक ओलंपिक साइज का पूल होना चाहिए, जो कि बन रहा है पिछले 10-12 साल से। स्पोर्ट्स काउंसिल बना रही है, तो

0: सा टाइम लगेगा, जब वो आगे आएगा तब फर्क होगी। तो अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी हमें बहुत ज़रूरत है कि मेहनत, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, कोचेज़ की ज़रूरत है, अच्छा खासा क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए जिनको पता है कि कोचिंग कैसे देते हैं, कि एक बच्चे को कैसे, टैलेंट को कैसे
1: ट्रेन
0: ढूंढना है।
1: करता
0: देखो
1: है।
0: टैलेंट मेन चीज़ जो है वो है टैलेंट। आप कैसे टैलेंट को निकालोगे बाहर, जो कोचेज़ वगैरह हो, मैं बहुत सारी जगहों पर पार्टिसिपेट किया है, मैंने लगभग मैंने 70-80 नेशनल इन 3 स्पोर्ट में खेले हैं, कुछ इंटरनेशनल्स भी खेले हैं, मैंने देखा है वो टैलेंट कैसे निकालते हैं। टैलेंट हर एक के पास होता है, लेकिन कोच को
1: उभारना होता है उसको।
0: वो देखना है कि कहाँ, वो गाँव में भी मिल सकता है, वो आपको बहुत दूर पहाड़ों पर भी मिल सकता है।
1: सही बात,
0: जो गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटी है उनके पास अच्छा खासा टैलेंट है,
1: टैलेंट है
0: उनके पास, एक नेचुरल फूड होता है जो कि हमें ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए अभी हमें बहुत काम करना पड़ेगा और इसके लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए, कुछ स्कीम्स लानी पड़ेगी। अच्छी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है हमारी वो अभी तक पेंडिंग है, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, देखते हैं, हम वेट करेंगे।
1: ये
0: अच्छा।
1: इज्तिमाही तौर हमने बात की या गवर्नमेंट के लेवल पे हमने बात की, अगर हम इंफरादी तौर देखें तो हमें अपने घरों से कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हम भी है, बट अश्रू जहन तेने गसा ओपन ज्ञान के स्विमिंग
2: स्पोर्ट्स
1: ड्रॉइंग को लेके डूबने के इतने मतलब केसेस आते हैं आजकल की डेट में बहुत ज्यादा हो गए। अगर इस पन्नी कशीर से बात करो लाओ तो रिसेंटली लखपुर बच्चा, कम से कम बच्चा एक छोटे से नाले में डूबकर।
0: देखिए ड्राउनिंग की क्या वजूहत है, मेन चीज पहले हमारे पास लाइफ गार्ड नहीं थे। मैं रिसेंटली एक एग्जाम दे के आया वाटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स जो कि गोवा में है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो, वहाँ पे वो वाटर स्पोर्ट्स की एक लाइसेंस देते हैं। तो मैंने वो आज से 16 साल पहले हासिल किए हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, 2 साल में वो उस चीज़ का रिन्यूअल मांगते हैं कि आप 2 साल के बाद जल्दी आ जाओ, एग्ज़ाम दे दो यहाँ पे, दिखाओ कि आप सही तरीके से किसी इंसान को ज़िंदा बचा सकते हो पानी में, फिर आप CPR वगैरह दे सकते हो। अगर आपको इसमें किसी का हार्ट अटैक आ जाएगा या इंजरीज आ गया, ये ट्रेनिंग हो। मैंने एग्ज़ाम 6 दिन का दिया और उसका रिन्यूअल एग्ज़ाम पास किया। लाइफ गार्ड्स हमारे पास थे ही नहीं। जो अगर आप बाहर जाओगे गोवा, वहाँ बीचेस हैं, या मुंबई जाओगे वहाँ बीचेस हैं, वहाँ हर एक बीच पे एक एक लाइफ गार्ड रहता है।
2: अच्छा,
0: जो भी शरारत करता है पानी में तो लाइफ गार्ड क्या करता है, वो जल्दी से जाके उनको बचा लेता है। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, यहाँ पे जहलिम था, 10-12 बंदे लगेंगे, हाँ कुछ SDRF के बंदे हैं, लेकिन लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग अलग होती है, उसका यही काम होता है, वो नजर रखता है कि हाँ देखो जितनी ड्रॉनिंग की मेन वजह यह है, जितनी भी गर्मी बढ़ेगी इंसान पानी की ओर जाएगा, पानी की तरफ जाएगा, पिकनिक पे वो छोटा बच्चा, उसके बाद 3 की ओर की डेथ हो गई जो बीच बिहारा साइड में, या कोई वो साइल एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी भी डेथ्स होती है, जो भी पानी के नज़दीक रिलेटेड कुछ भी काम हो। अच्छा, हमारे पास लाइफ साइविंग इक्विपमेंट भी नहीं होता है। जब हम किश्ती में चढ़ेंगे तो हमारे पास लाइफ सेविंग जैकेट होना चाहिए या लाइफ बॉय होना चाहिए, वो गोल सा एक होता है, ये चीज़ें होने चाहिए, तब जाके ड्रोनिंग्स जो इश्यूज हैं वो
2: काम
0: हो जाएंगे।
2: सही बात है।
1: जो डूबने वाला बच्चा था लाउता
2: जी,
1: बहुत कम एज थी उसकी,
2: बहुत कम एज थी।
0: देखिए वो
1: जो एग्जैक्टली जो छोटा बच्चा था शायद सिर्फ 8 साल का था। तो लाहौता और मैं इस बारे में ही बात कर रहे थे इससे पहले कि इतने छोटे से बच्चे को भी हम ट्रेन कर सकते थे स्विमिंग के लिए, ताकि हम वो जो लाइफ सेविंग हैक्स उसमें आ जाती और वो कम से कम अपने आप को बचा सकता था।
0: देखिए उसकी डेथ रिवर में हुई, रिवर में आपको पानी प्लेन नहीं मिलेगा, वो रैपिड वाला पानी मिलेगा, ऊपर नीचे और व्हाइट मिलेगा, व्हाइट वाटर। तो अगर आप जहलीम में देखोगे इसमें फ्लैट पानी है, पानी सीधा है। अगर आप रिवर में पानी देखोगे पहलगाम वाले रिदर में या सिंध में, उसमें रैपिड वाला और पत्थर मिलेंगे, उसमें भी टेक्निक्स हैं, आजकल जमाना फॉरवर्ड हो गया, उसमें भी टेक्निक्स है, स्विमर्स बैक पोजिशन होती है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब एक बंदा स्कूल में ये चीजें सीखेगा।
1: स्कूल से
0: एक लड़का आया, वो कश्मीरी लड़का है, बाहर पढ़ता था इंग्लैंड में, इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी में। तो लेट एडमिशन उसने किया, वो मेरे पास आया कि सर मुझे स्विमिंग सीखनी है। मैंने कहा अब तो इंग्लैंड में हो, वहाँ क्यों नहीं सीखी? कहा कि वहाँ वो बोलते हैं कि छोटे बच्चे को सिखाते हैं, बड़ों को हम नहीं सिखाते हैं।
2: आपके हिसाब से रिया साहब बच्चों को किस उम्र से स्विमिंग सीखनी?
1: एग्जैक्टली मेरे पूछने का मतलब ये था कि वो 8 साल का बच्चा था, तो उसको भी अगर सिखा सकते थे तो आप किस एज से?
0: किसी हद तक वो बच सकता था,
1: तो आप ट्रेन जो बच्चों को करते हैं किस एज से?
0: बच्चों को ज्यादा लेते हैं क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा सीखते हैं,
1: किस एज से
0: ज्यादा होती है, तो वो जल्दी से बस यही 5-6 साल 7 साल तक।

0: मुझे सात साल आप कह रहे हैं कि अगर हम बाहर फॉरेन कंट्रीज में देखे लाहौता जी,
1: वहाँ तो
0: छोटे छह महीने के बच्चों को वो पूल में डालकर उसको वो पानी के साथ,
1: जो बच्चा जिसको हम कुछ कहे तो वो सुन ले, वो बच्चा सीख सकता है।
0: मतलब उनको हाइड्रोफोबिया से ना, मतलब वो निकालने के लिए उनको फैमिलियर करते हैं।
1: अगर ये ना होता ना, तब सारे लोग पानी में घुस के ना स्विमिंग करते, कुछ उनकी डेथ्स भी हो जाती है अगर ये फोबिया ना होता कि पानी में डूबते हैं। क्योंकि जब भी गर्मी तेज होती है, इंसान का पहला पसंदीदा चीज पानी है,
0: पानी है,
1: पानी ही तो उसको ठंडा कर सकता है। यही चीजें होती है, ये तो जरूरी है। और डरना भी चाहिए पानी से, क्योंकि पानी में ना एक दो मिनट में आपका आपने पानी पिया, वो लंग्स में चला गया, ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया, तो डेथ आ सकती है। यही तो मेन चीज है। हाँ, कुछ ऐसे वाकत भी हो गए हैं कि जिन्होंने पानी नहीं पिया, हाथ पैर चलाए, वो आधे घंटे तक सर्वाइवल करते रहे और फिर उसके बाद कोई वहां से चला आया
0: तो
1: उसको बचा लिया। ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स आ गए।
0: तो कुल मिलाकर ये बात कि हमने पानी से डरना चाहिए, बट उसको अपना दोस्त भी बनाना चाहिए ताकि वो हमारी जिंदगी ना ले, हमारी जान ना ले।
1: ये आपने एक अच्छी बात कही कि पानी आपका फ्रेंड है, पानी आपका दोस्त है, उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है। प्यार से अगर आप अपने हाथ पैर चलाओगे, उतना रॉकेट साइंस है नहीं ये स्विमिंग। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ कोई भी सपोर्ट खेलोगे, ग्राउंड में जाओगे, क्रिकेट खेलोगे आसान है, फुटबॉल खेलोगे आसान है, लेकिन स्विमिंग में आप
0: इजी
1: नहीं ले सकते
0: हैं। इसमें टेक्निक्स काम करते हैं।
1: इसमें उतरते ही आप अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये पानी है, नीचे चले गए तो इंसान डूब सकता है।
2: इसलिए बाकी जो गेम्स हैं
1: वो बहुत आसान है,
2: उसमें इंजरी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है
1: इसमें, सीधे लाइफ थ्रेटनिंग,
0: ये लाइफ थ्रेटनिंग सपोर्ट है। बट आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे माँ बाप को जो नहीं चाहते कि उनके छोटे बच्चे पानी के करीब भी जाए, क्योंकि जब से कहा जाता ना, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को स्विमिंग सिखानी चाहिए, वो कहते हैं नहीं अभी बहुत छोटे हैं, पानी से दूर ही रखो।
1: नहीं, जरूरी है, हमारे मजहब में भी है, सुन्नत है, ये सीखनी चाहिए हमें। और अगर आप बोट में भी उतरोगे किसी जगह, आप रिस्क ले रहे हो, जब तक ना आपको लाइफ स्विमिंग जैकेट लगाओगे, मेरे ख्याल में ये रिस्क है, ये जरूरी है। इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। बाहर स्टेट्स में जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उतने वहाँ हर एक जगह SOPs फॉलो होते हैं, हर एक चीज फॉलो होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी इस स्विमिंग के सब्जेक्ट पे कि आप अपने बच्चों को
0: अलाउ करें,
1: गाइड कीजिए,
0: एक अच्छे कोच के हवाले कर दीजिए।
1: आज स्कूलों में भी बहुत सारे स्कूल्स में स्विमिंग पूल्स बन गए।
0: स्कूल में क्या,
1: पहले तो यहाँ एक स्कूल में स्विमिंग पूल हुआ करता था।
0: okay.
1: आज मेरे हिसाब से जो मेरा डाटा कलेक्शन है उसमें आज का कम से कम 30 स्कूल्स में स्विमिंग पूल्स हैं जहां बच्चे स्विमिंग सीख सकते हैं।
2: रिया साहब, ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि स्विमिंग सीखने के लिए इंसान का किस कदर फिट होना जरूरी है, मतलब उनको क्या क्या होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि स्विमिंग सीख सकते हैं हम 5 साल की उम्र से, अब कोई 14-15 साल का बच्चा है जो स्विमिंग में जाना चाहता है या आपने उसकी इंटरेस्ट है, उसके लिए आप क्या कहेंगे, मेंटली फिजिकली उसको क्या क्या जवाबित होने चाहिए इस गेम को सीखने के लिए।
1: देखिए, स्विमिंग में दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। बेसिक स्टेमिना होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि वो वहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं हमारी स्विमिंग में, ताकि वो अगर वो सुबह सवेरे फिटनेस के लिए 5-5 किलोमीटर रोज दौड़े ऑफ सीजन में, क्योंकि हमारा स्विमिंग सीजन बहुत कम होता है, सिर्फ 3.5 महीने का सीजन होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के कुछ दिन, अगर मौसम खराब रहा तो फिर 3.5 महीने। तो बाकी जो ऑफ सीजन रहता है वहाँ अगर वो रनिंग करेगा, कम से कम सुबह सवेरे निकलेगा घर से तो 5-5 किलोमीटर की रनिंग करेगा, 1 किलोमीटर की रनिंग करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा। ये एक बेसिक चीज़ है ताकि उसके अंदर जो स्टेमिना है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसका मसल पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि स्विमिंग में एक चीज़ है, वहाँ बहुत सारा मसल पावर हमें चाहिए,
0: पैरों
1: से लेग एक्शन होती है, हाथों से एक्शन होती है, फिर मुँह से हम ब्रीद आउट ब्रीद इन करते हैं, ये 2-3 चीज़ें हैं बेसिक। आहिस्ता आहिस्ता बंदा 20-21 दिन में अच्छा खासा स्विमर लॉन्ग डिस्टेंस बन सकता है, जो पूरे डल को क्रॉस कर सकता है, पूरे निगीन को क्रॉस कर सकता है, या अगर जहलम में तो छोटा है इसको भी क्रॉस कर सकता है।
0: अगर अगर रनिंग उसकी सही हो, मतलब अगर स्विमिंग सीखनी है
2: तो फिजिकली फिट होना,
1: फिजिकली
0: फिट होना जरूरी है,
1: फ्री हैंड एक्सरसाइजेस करेगा तो ये काफी।
0: तो मैं अपने सुनने वालों को यही बताना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ यू कि जो भी बंदा ये चाहता है कि मैं स्विमिंग सीखूं, वो पहले रनिंग सीखे और रनिंग के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाए ताकि उसका इंटरनल स्टैमिना जो है वो बढ़ जाए। और पानी में वाकई बहुत मेहनत लगती है जब स्विम करता है एक स्विमर, तो उसको काफी मतलब स्ट्रेंथ चाहिए होती है।
1: एक मशहूर, मुझे एक सेइंग याद आती है, मशहूर एक प्लाटो है, वो कहते हैं कि जिसको स्विमिंग नहीं आती है वो हाफ अनएजुकेटेड है।
2: अच्छा,
1: ये जरूरी है, ये तब पता चलता है जब आप पानी में फंस जाते हो किसी जगह।

0: तब ये पता चलता है। आपने देखा रिसेंटली, एक रिसेंटली यहाँ जबलपुर में एक बुआ ट्रेजरी हो गई, वो पिक्चर भी एक वायरल हो गई थी, वो माँ डूब गई थी, उसका बच्चा वो सीने से लगा हुआ था, दोनों की डेथ हो, वहाँ 39 टूरिस्ट बोट में चढ़े थे और उसमें 10 की डेथ हो गई, बाकी कुछ मिसिंग हैं, कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया।
1: जो फ्लड सिचुएशंस आई, थ्रेटनिंग सिचुएशंस थी, वो उसमें हमने सीखा कि ये स्विमिंग कितनी ज़रूरी है। और मुझे लगता है लावता हमें किसी भी एज में ये हम सीख सकते हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे कि यु लगचारस है छुन जरूरी कि लगचारस अगर ये हेचो लकड़ बच हेचो सो है कि पूरा असल पड़े हेचतन जो आप बड़ा बंदा होगा, मतलब इन्हें लगचारस है स्विमिंग अडल्ट होगा, तो उस वो अगर सीखना चाहता है इस स्विमिंग को, क्या आप उन्हें सिखा सकते हैं, वो सीख सकता है? कभी कभी इंसान के अंदर ये खौफ आता है कि अब मेरी उम्र बहुत हो गई है, शायद इस उम्र में नहीं सीख सकता हूँ, तो ऐसी कौन सी एज है, ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पर भी कंफर्टेबली आप उनको सिखा सकते हैं और वो सीख भी सकते हैं?
0: देखिए, हमने वहाँ वाटर स्पोर्ट सेंटर में 80 साल के एक बुजुर्ग को भी सिखाया। हमने वहाँ एक बंदे को सिखाया जिसको पैरों में पोलियो था, वो चल नहीं सकता, हमने उसको भी सिखाया।
2: बिग चैलेंज।
0: मैंने अप्रिसिएट किया अपने कोचेस को जो मेरे अंडर कोचेस काम करते हैं, 10-20 कोचेस काम करते हैं, सीनियर प्लेयर्स हैं, अब वो लोगों को सिखाते हैं। यही है वजह है कि हमारी अच्छी खासी तादाद रहती है वहाँ, हमारे पास ज्यादा कोचेस है। अगर आप सीखने आओगे वहाँ, फिर आप भी किसी को सिखाते हो, ये एक चेन सी बन जाती है वहाँ, ताकि हम लोगों को सिखाए। ज़्यादा अच्छा लगा हमें तब जब हमने उस पोलियो वाले बच्चे को सिखाया, उसकी दोनों टांगों में प्रॉब्लम थी, वो चल नहीं सकता था उतना देर, उसको हमने स्विमिंग सिखाई
1: और
0: लेक को क्रॉस करना है, हाँ हाथों से उसने स्विमिंग की। आप पैरा स्विमर दे सकते हो, एज का कोई इसमें मैटर नहीं है, आप आ सकते हो वहाँ,
1: हौसले बुलंद होने चाहिए।
0: मेरा वहाँ पे है एक छोटा सा सेंटर, कोशिश कर रहे हैं, आप वहाँ आ सकते हो, जितनी हमारे पास कैपेसिटी है उतना हम लेते हैं, नाराज किसी को नहीं करते और हर एक को सिखा के ही छोड़ते हैं। और ये कि नहीं, थोड़ा सा सिखाते हैं, अच्छा खासा सिखाते हैं, जो कि निगिन लेक को पूरा क्रॉस करता है।
1: एक छोटा सा सवाल पूछूंगी आपसे और उसके बाद हम चलेंगे नगमा सुनेंगे। बिल्कुल, परफेक्ट स्विमर ट्रेन्ड स्विमर, इसको भी कोई खास ख्याल रखने की जरूरत है?
0: जरूरी है। देखो, जो ये लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर है, आजकल बैलून्स आते हैं, अच्छा सा लकड़ बैलेट्स तिम लागान, थोड़ा सा ऑक्सीमीटर रस पे फगड़ू निक पट आबस मे पेट कन, जब ये निकलता है स्विमिंग करते करते आगे, वो उनमें से वो तेज कलर्स होते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स, वो बैलून्स जब ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए निकलते हैं, एक तो मोटर बोट्स का ख्याल रखना पड़ता है समंदर में, ताकि अगर वो तेज आए इसके ऊपर से चल गया तो उसके वो पीछे ना वो मोटर वगैरह होता है, उसके पंख होते हैं,
1: उससे
0: लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर जख्मी होता है।
1: हाँ,
0: तो इस बैलून से क्या होता है, इस बैलून से आइडेंटिफिकेशन होती है, नहीं कोई लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर चल रहा है। मैं अपने जेट स्की को साइड में करूँ, मैं अपने मोटर बोट को साइड, मैं अपने क्रूज को साइड में करूँ, और ये चीज है। दूसरा एक चीज है कि जो जमीन पे इसका कोच होगा या इसके चाहने वाले हो, उसको पता चलता है ये कितना कहाँ पर है, क्योंकि इंसान का सर छोटा है उस बैलून से, वो बड़ा होता है, वो 5 गुना बड़ा होता है इंसान के सर से, तो जब दूर ज्यादा चला जाता है तो फिर सर भी नहीं दिखाई देता है ये कि ये कहाँ पर पहुंचा। तो जो बैलून होता है वो बड़ा होता है, तो इंडिकेशन ये पता चलती है। हाँ, अगर वो थक जाता है, उसका अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, उसको अचानक मसल पुल हो जाता है पैरों में और हाथों में, तो फिर वो एक चीज करता है, वो उसी को पकड़ के अपने आप को गले लगा के अपने आप को सेव कर,
1: मतलब ये कि अगर अगर आप परफेक्ट स्विमर दस ट्रेंड स्विमर दस तो मिस्टर जो केहन एहतियात उन ख्याल था
0: उसको भी ख्याल
2: रखना। रियासा, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि नॉर्मल लोगों को छोड़कर आपने एक स्पेशली एबल्ड बच्चे को स्विमिंग सिखाई है, ये एक अपने
1: आप 80 इयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग को भी सिखाई,
2: 80 इयर्स ओल्ड एक सीनियर सिटीजन को आपने स्विमिंग सिखाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात,
1: हौसलों की बात है, हिम्मत और इरादे की बात है,
2: हिम्मत की बात है। आपके हौसले की दाद देना चाहेंगे यहाँ पर और हम अपने समीन को सुनवाना चाहेंगे एक नगमा,
1: खूबसूरत सा नगमा।

0: जी समीन, आपको बता दें कि आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयम सुबह, और हम हैं आपके मेजबान, मैं हूं लाहुता फरहान और मेरे साथ हैं तस्लीम। और हमारे आज के इस शो में हमारे मेहमान हैं, हमारे इस शो की जीनत हैं रियाज अहमद वानी, जो कि ट्रायथलॉन एक्सपर्ट हैं, वाटर स्पोर्ट्स हैं और साइकिलिंग में भी काफ़ी महारत है इनको। तो इनसे बात करना चाहूँगी मैं। रिया साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, अपने बारे में बताइए, आपने जो ये है स्विमिंग और साइकिलिंग, ये आपने कहाँ से सीखी, किस एज में सीखी, ये आपकी अपनी चॉइस थी या पेरेंट्स की तरफ से आपने ये, मतलब उनका उनकी चाहत थी कि आप सीखें?
1: शुक्रिया, आपने अच्छा सवाल किया, इससे पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। देखिए, मुझे आज भी याद है, बचपन से थोड़ा थोड़ा खेलता था यही रनिंग वगैरह, क्योंकि उसकी एक वजह है, जहां मैं रहता हूं नवाटा इलाके में, उस साइड में एक बादामवाड़ी आती है, वहां एक बहुत पुराने क्लब्स हुआ करते थे जो कि फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो वहाँ जाके ना वहाँ थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज की, तो थोड़ा थोड़ा शौक बढ़ा, फिर रनिंग स्टार्ट की, पहले कुछ छोटे मोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया
0: जी।
1: फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम 1994 में पास करके ही स्कूल में थोड़ा सा चांस मिला इन स्पोर्ट्स की तरफ जाने का, फिर मैंने स्टार्ट किया इन स्पोर्ट्स की तरफ जाने का आहिस्ता आहिस्ता, तो ये शौक घर वालों का नहीं था।

0: क्योंकि हमारे यहाँ उतना स्पोर्ट्स का नहीं होता था उस टाइम पे. आजकल अच्छी अवेयरनेस है लोगों में, पेरेंट्स में. आज पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चों को कि आप जाओ स्पोर्ट्स में, ये अच्छा चीज है. बाकी अगर उस उधर इधर चले गए तो ड्रग्स में लग जाओगे. तो उस टाइम पे उतनी खासी अवेयरनेस नहीं थी पेरेंट्स की. तो मेरी माँ, उसकी डेथ हो गई है 2015 में. उससे पहले वो मुझे कहा करती थी कि नहीं आप पानी में जाते हो, ये बहुत खतरा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए. हर एक की पेरेंट्स डर जाते हैं पानी से. मैंने कहा नहीं, मैं अच्छा खासा एक स्विमर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ रोज इसके बारे में. तो आहिस्ता आहिस्ता पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल पे, फिर कुछ अच्छा खासा मौका भी मिला इंटरनेशनल खेलने का. जाहिर सी बात है कि हर एक स्पोर्ट में ये तीन स्पोर्ट खेलना बहुत ही मुश्किल है
1: जी.
0: तो इन स्पोर्ट को चलाने के लिए मुझे हर एक स्पोर्ट में अलग अलग से नेशनल खेलने पड़े. मैंने ऑल इंडिया इंटरनिवर्सिटी तीन बार खेला है एथलेटिक्स में. स्विमिंग में भी बहुत सारे नेशनल्स खेले. साइकिलिंग में एज प्लेयर भी, माउंटेन बाइक साइकिलिंग में तीन स्पोर्ट है उसमें भी खेला. कुल मिला के मेरे पास अभी 70 नेशनल्स हैं. तो ऑफर भी आया जॉब का. जॉब का
1: नेशनल खेल चुके हैं आप?
0: हाँ, तीन स्पोर्ट में अलग अलग, एज अ कोच भी, एज अ प्लेयर भी. तो उसके बाद ऑफर भी आई, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर पुलिस में स्पोर्ट्स की टीमें होती हैं, वो ज़्यादातर पहले ही, सबसे पहले ही वही ऑफर देती है लड़कों को, जो कि अच्छे लड़के होते हैं, जो कि टॉप लेवल के लड़के होते हैं.
1: ये बहुत हौसला अफजा बात है रिया साहब आपके लिए, और हमारे लिए तो बहुत ही फख्र और शान की बात है कि आप इतने अच्छे लेवल पे नेशनल स्विमर खेल चुके हैं, अपना पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है.
2: रिया साहब, एक बात पूछना चाहूंगी, वो ये कि स्विमिंग ट्रेनिंग देते हैं आप, स्विमिंग की ट्रेन्ड कोच हैं आप, कभी मौका मिला जिंदगी में किसी की जान बचाने का?
0: हाँ, ये अपना अच्छा सवाल किया. देखिए, हमें तो रोज मिलता है मौका, लेकिन लाइव जो है बाहर, स्पोर्ट्स सेंटर के बाहर, वहाँ स्पोर्ट्स सेंटर के बाहर. देखो, ये तो खुशकिस्मत होता है कोई कि मुझे ऐसा अभी तक मौका नहीं मिला. लेकिन हाँ, एक चीज़ है, गाइड करता रहता हूँ जहाँ भी चलता हूँ, पानी के साइड में देखता हूँ लोगों को, उनको गाइड करता रहता हूँ, भाई अच्छी बात नहीं है, यहाँ जाना नहीं चाहिए, यहाँ डूब जाओगे. तो वो फिर क्या करते हैं, सुनते हैं बात, चले जाते हैं वहाँ से. अक्सर मैं जहाँ भी पानी देखूँ वहाँ मैं 10-15 मिनट देता हूँ, क्योंकि मैंने एज अ लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग भी की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स गोवा से. तो वहाँ की ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होती है. हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग. पूरा पूल में, पूरा समंदर में आपको बाजाबता उनको दिखाना पड़ता है कि आप क्या बचा सकते हो, किसी को जिंदा, किसी को देखा डूबते हुए उसको बचाना है. ये सारी चीज़ें मैं ट्रेनिंग में, हमें पहले ट्रेन करते हैं, फिर जाके मैं ये ट्रेनिंग अपने बच्चों को देता हूँ. हाँ, आपका सवाल ये था कि क्या किसी को बचाया आज तक, वो तो सेंटर में रोज का होता है. वहाँ सेंटर में किसी को, मैं एज अ हेड कोच कोचों को भी नजर रखता हूँ. कोई अगर सीरियस केस सामने आ जाता है कि भाई ये डूब रहा है, मैं जल्दी से छलांग मार के उसको अच्छी तरीके से सेव करके ऊपर लाता हूँ, ताकि उसको वो पानी न पिए.
3: माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे आप किसी की जिंदगी भी बचा सकते हो. और जहाँ तक ये एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, उसके अलावा ये खल्के खुदा का जो है हम खिदमत भी बोल सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं. किसी की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है. अच्छा, चलते हैं साइकिलिंग की. और साइकिलिंग का जो रुझान है, जो आप ट्रेनिंग देते हैं, और इसका जो लाइफ में इम्पैक्ट है, क्या है?
0: देखिए, साइकिलिंग एक अच्छा स्पोर्ट है. यहाँ साइकिलिंग बहुत पहले से ही लोग करते थे, चाहे वो अपने
3: क्यों करनी चाहिए. अगर हमारा यूथ हमसे सवाल पूछे, चाहे हम बच्चे को कहे कल कि साइकिलिंग सीखो, अगर वो हमसे पूछे क्यों करनी चाहिए मुझे साइकिलिंग, जबकि मेरे पास सारा कुछ अवेलेबल है, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ.
0: लेकिन साइकिलिंग एक अच्छा स्पोर्ट है. अब साइकिल देखो, अगर आप किसी जगह जाना है, साइकिलिंग में बहुत सारे फायदे है. पहले आपने कहा क्यों करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए ताकि, देखिए, अगर आप यहाँ से पहलगाम जाओगे या गुलमर्ग जाओगे, आपके गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा आ जाएगा. साइकिल पे ये खर्चा नहीं है, साइकिल पर आप जा सकते हो. पहले पहले तो लोग ज़्यादा नहीं जाते, अब आप रोज़ देखोगे हर एक टूरिस्ट प्लेस पे आप 10-20 साइकिलिस्ट को देखोगे.
3: exactly.
0: ग्रुप्स में बहुत सारे ग्रुप्स हैं. मुझे तो अब नाम भी याद नहीं है कितने सारे ग्रुप्स हैं. हर एक इलाके में, बड़े बड़े इलाके में एक एक माउंटेन बाइक का ग्रुप है, उनके पास एक अच्छी खासी साइकिल होती है. देखिए, साइकिलिंग में तीन किस्म की साइकिलिंग होती है. एक तो माउंटेन बाइक, उसके मोटे थोड़े से टायर होते हैं, वो पहाड़ पे भी चल सकता है. एक तो रोड पे, उसको रोड बाइक कहते हैं. दूसरा एक वेलोड्रोम होता है स्टेडियम, उसमें दूसरी तीसरी किस्म की बाइक लगती है. तो इन तीनों में अच्छी है माउंटेन बाइक. आप देखो, अगर आप साइकिलिंग करना चाहोगे, माउंटेन बाइक के जरिए जाओगे, उसमें गियर सिस्टम होता है, चेंज

0: सिस्टम, आपको रिलैक्स मिलता है पैडलिंग, जब आप पैडलिंग पैरों को दबाते हो पैडल पे आपको रिलैक्स मिलता है, आप आराम से गुलमर्ग तक जा सकते हो, आपको कोई थकावट उतनी ज्यादा नहीं होगी, आप
1: जी
0: नेचर के नजदीक पहुंच जाओगे, ना आपका खर्चा है फ्यूल का, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा,
1: और
0: आपके
1: आपकी हेल्थ भी
0: फर्स्ट
1: अच्छी रहेगी।
0: और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो। 50 किलोमीटर साइकिल पर सुबह सवेरे निकलना, इतनी अच्छी फिटनेस आपको कहीं नहीं मिल
1: नहीं
0: सकती
1: मिलेगी,
0: है।
1: सही।
0: और खर्चा खर्चा एक बार करना है सही कहा। अब मसला यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि कौन सी बाइक आप चूज करोगे और कैसे करोगे। अब ये भी मसला है कि कोई अच्छी बाइक आनी चाहिए, इसके लिए आप एज ए एक्सपर्ट मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि एक अच्छी खासी माउंटेन बाइक ले लो, जिसमें आपका शॉकर अच्छा हो, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक्स हो, जिसमें आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो। ये तीन चीजें आपको जरूरी देखनी है, एक तो शॉकर अच्छा होना चाहिए, एक तो डिस्क ब्रेक्स होने चाहिए, एक तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ब्रेक्स में मेरे कहने का मतलब है जिसमें वायर लगती है, अब उन ब्रेक्स में ऑयल लगता है, वो प्रेशर पे ब्रेक्स होती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, वो क्विक लगती है, किसी जगह अचानक आपको ब्रेक देनी, जैसे मोटरसाइकिल में डिस्क ब्रेक्स होती है वैसे इसमें भी। तो कि अच्छी खासी। हाँ, एक चीज का ख्याल जरूरी रखना, वो है हेलमेट। साइकिल में फर्स्ट हेलमेट, उसके बाद पहले हेलमेट लाओ, उसके बाद साइकिल लाओ, क्योंकि उसमें भी खतरे हैं एक्सीडेंट्स के। हमारे यहाँ कश्मीर डिवीजन में बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपने देखा होगा कि दिन ब दिन
1: बढ़ते
0: जरा कम नहीं होते हैं, क्योंकि साइकिलिंग में भी एक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ, अगर आपके पास अच्छी हेलमेट हो, आप आराम से साइकिलिंग कर सकते हो, आपका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो सकता है, आपका पिकनिक भी वहीं निकलेगा सारा कुछ। और इन साइकिल्स में एक चीज है, इसमें एक साइकिल आता है टैंडम बाइक, उसमें दो बंदे चढ़ सकते हैं, वो एक अच्छी बाइक है, आपका अच्छा पार्टनर हो जो फिटनेस पार्टनर होगा। क्योंकि एक जरूरी है, आपको पहले अगर आपको फिटनेस करनी है, पहले आप एक पार्टनर को चुनो जो आपको रोज उठाएगा, या आप उसको उठाओगे, आप एक ग्रुप बन जाता है, फिर आपको आप फिटनेस आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये चीजें हैं साइकिलिंग में, ये बेनिफिट्स हैं। आप कैरी भी कर सकते हो माउंटेन बाइक पे, आपका खाना, आपका जो पानी वगैरह हो, डाइट हो, कहीं भी जा सकते हैं, पिकनिक हो जा सकता है।
1: अच्छा, जो साइकिलिंग है, हेल्थ बेनिफिट्स तो हमने कहे इनके लिए कि, और इससे हमारा फ्यूल बचता है, नेचर के क्लोज आता है इंसान, हेल्थ भी अच्छी रहती है। बट साइकिलिंग करना क्यों जरूरी है, अगर हम अपने फ्यूचर के हिसाब से देखें, क्या इसमें कोई फ्यूचर साइकिलिंग सीखना, परफेक्टली साइकिलिंग एक तो हो गया नॉर्मल रूटीन में साइकिलिंग करना, दूसरा हुआ प्रोफेशनली आप साइकिलिंग करें, तो वो कितना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, या उसके लिए अगर एक यूथ को हम कहें कि साइकिलिंग सीखो, उसका उसका उसका एक थॉट ये आएगा कि बिकॉज़ हिच मे गस कन जॉब आसन, आज मैं बासान कि अत मिस्तु छु स्कोप।
0: हां, आपका सवाल, तुहन सवाल छु वारी असल। ये लि मैं स्टार्ट कर कुनु शत चुनम तस्मन तिमन दोहन अस ये साइकिलिंग करान, कॉलेज लेवल से इंटर कॉलेज होती थी, कॉलेज रेस होती थी, और कुछ लोग अपने बिजनेस के लिए साइकिल चलाते थे। बहुत पहले यहाँ ट्रांस था, एक बहुत पहले 100-80 साल पहले यहाँ साइकिल पर ही सारा कुछ काम होता था। फिर वो खत्म हो गया, अब हमने रिवाइव किया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जब मैंने कुछ लड़कों को पहले लाया, उन लड़कों को जिन इलाकों में रोड प्लेन थी, जैसे कि आप नॉर्मल काउसा में मैंने एक साइकिलिंग क्लब बनाया, चिनार साइकिलिंग क्लब, वो आज का अच्छा खासा, मैं शालीमार साइड गया, वहाँ डल रोड अच्छा था, वहाँ मैंने शालीमार साइकिलिंग क्लब बनाया, क्लब मैंने छोटे छोटे क्लब्स मैंने इनको नाम दिए, और अच्छे अच्छे लड़कों को पकड़ा, उनको ट्रेनिंग दी, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता ये नेशनल में जाने लगे। अभी जो लिस्ट निकला है 230 का आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने निकाला, जिनको जॉब मिलने वाली है, एक नोटिस निकल गई, अब इनको फाइनल, साइकिलिंग के 5 बंदे हैं, 8 का लिस्ट था, 3 बाद किस्मती से उसमें गिर गए, लेकिन 5 की जॉब कन्फर्म है 100%। उससे पहले एक लड़की की जॉब मिली है, उससे पहले भी एक लड़के की जॉब मिली है। करना क्या है, इसमें आना है, एसोसिएशन बाजाबता यहाँ बनी है,
1: ज्वाइन करना
0: स्पोर्ट्स काउंसिल आपका फाइनेंशियल ये सारा कुछ देखता है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सब कुछ स्पोर्ट्स काउंसिल देती है, गवर्नमेंट का ये फाइनेंशियल वहाँ पे सेंटर है, वो हेल्प करती है, आपको वहाँ ज्वाइन करना है, फिर आपको चूज करना कौन सा इवेंट है, फिर डेली प्रैक्टिस करनी है, अकेडमीज है, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी खेलो इंडिया सेंटर एक बनाया, जहाँ अकबर खान मेरा एक अच्छा स्टूडेंट है, उसको भी जॉब का कन्फर्म हो गया है लगभग, वो इसमें जॉब अच्छा है। हाँ, अगर आप ये रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है, اگر آپ اس میں اچھا اچھا خاصا محنت کرو گے یہ آپ کے لیے اچھا ایک فیلڈ ہے سپورٹس.
2: یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے ریاض صاحب کہ اگر ہمارے بچے محنت کریں سائیکلنگ میں ان کا فیوچر سیکیور ہے اور وہ اس میں جاب اپرچونیٹی بھی ہے. کیوں تسلیم؟
1: اور دوسری بات یہ کہ جہاں پہ جاب اپرچونیٹیز ہے وہاں پہ آپ کی ہیلتھ بھی سیکیور ہے, آپ کا ماحول بھی سیکیور ہے اور آپ کا فیول بھی بچے گا.

0: भी आपकी सिक्योर है,
1: आपकी जेब भी
0: सिक्योर। बस हौसलों की, हौसलों की जरूरत
1: है, हौसला होना चाहिए,
0: इरादे होने
1: चाहिए और डटकर इंसान इस इरादे के साथ चले
0: और आगे बढ़ता रहे,
1: आगे बढ़ता रहे। एक नगमा हो जाए तस्लीम,
0: बिल्कुल।

जी हाँ, हौसलों को बढ़ाने की जरूरत है और आरजो बढ़ाने की जरूरत है और अपने बच्चों का साथ देने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि उनका रुझान किस तरफ है और उनके लिए क्या अच्छा रहेगा। आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन के साथ अब इस वक्त जुड़े हुए हैं एफएम और मीडियम वेव पर और प्रोग्राम चल रहा है पयाम सुब में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक एक्सपर्ट, खास एक्सपर्ट, ट्रायथलॉन एक्सपर्ट, जो रनिंग में महारत रखते हैं, साइकिलिंग में महारत रखते हैं और स्विमिंग में महारत रखते हैं। साइकिलिंग की बात हम कर रहे हैं लेकिन पर्सनल सवाल एक पूछना चाहूंगी आपसे।

0: जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हर कंपटीशन में हमारी जीत हो जाए, और जब हार होती है ना तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन एक खिलाड़ी के हारने पर सबसे पहला ख्याल एक खिलाड़ी के दिमाग में क्या आना चाहिए?
1: देखिए, हारना जरूरी है। अगर हमें देखिए, एक बंदा हार सकता है, दूसरा जीत सकता है।
2: गेम का
1: पार्टिसिपेशन मस्ट है। पार्टिसिपेशन, इसको हम हारने वाले को पार्टिसिपेशन करेंगे। पार्टिसिपेशन जब नहीं होगी तो जीतेगा कैसा बंदा? पार्टिसिपेशन, मेरा उससे यही मशवरा है कि फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, फिर से आप मेहनत करो, आप उस जीतने वाले को आराम से हरा सकते हो, ये कोई मसला है नहीं।
0: मेरे ख्याल से जब इंसान हार जाता है तो उसके जहन में वो हारा हुआ इंसान नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप पे उसके सामने वो सारी खामियां होती है कि उसको कहाँ पे चोट लगी, कहाँ पे ठोकर लगी, और पूरी तरह से वो तैयार होता है कि दिन ठोकर घसने में आते लगन कीन, दिन हार घसने में आते घसन कीन, और जब वो नेक्स्ट स्टेप और इरादों और हौसलों से उठाता तो वो
2: परफेक्शन के साथ
0: यकीनन वो कामयाब हो जाता है।
1: ये डिपेंड है सारा कोच पे, कोच कैसी प्रैक्टिस देगा, कैसे उसको मोटिवेट करेगा। अच्छा। देखो, ये तो पुराना जमाना है नहीं, अब फॉरवर्ड है, सब कुछ आपके सामने है। आजकल हमारे कोचेस ऑनलाइन मिलेंगे, कुछ पैसों से आपको वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस आपको हायर कर सकते हो आप, और आपका वर्ल्ड के जो बेस्ट कोचेस हैं उनसे आप कोचिंग ले सकते हो ऑनलाइन, ऐसा कुछ है नहीं। मुझे आज भी याद है जो हमारे एक्सपेडिशंस होते हैं, हमने पहले छोटे छोटे डिस्टेंस के एक्सपेडिशंस किए। मैंने एक एक्सपेडिशन किया था श्रीनगर से लेह, 4 दिन में मैंने कंप्लीट किया। ये मैंने एक छोटा सा रिकॉर्ड रखा था यहाँ। फिर उसके बाद लोगों ने इसको 3 दिन में किया, कुछ लोगों ने इसको 2 दिन में किया, मुझे लगता है अब ये 1 दिन में भी कंप्लीट।
0: तो बात वही आई हौसलों और इरादों की, कि आप कितने मजबूत रहते अपनी जिंदगी में।
2: दिन आप आपके कहने के मुताबिक दिन ब दिन लोगों में ये रुझान ज्यादा बढ़ता है गेम्स की,
0: अवेयरनेस आ रहा है, अवेयरनेस आ रहा है,
2: और बच्चे कर रहे हैं इसमें पार्ट।
0: देखिए लाहौता जी और रियाज साहब, ये जो जिंदगी है ये खेल के मैदान तक ही हम महदूद नहीं है कि हमें मेहनत करनी है या हमें स्टेबल रहना है। मुश्किलात का सामना हमें जिंदगी में भी करना है, और खेल के मैदान में तो आते ही रहेंगे या किसी भी मैदान में जहां हम खड़े हो जाएं, लेकिन तजुर्बा जो है वो हौसलों से आता है, मजबूत इरादों से आता है। क्योंकि हमारे पास वक्त काफी कम है, बातें हमने इतनी सारी की लेकिन फिर भी लगता है कि बातें रह गई। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमें यूथ अभी सुन रहा, पेरेंट्स सुन रहे, जो हमें हमारे सुनने वाले हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देकर जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं आप उनके लिए?
2: सही बात, हमारे बच्चों के लिए कुछ कहिए। जो
1: देखिए, 53 स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है कश्मीर में, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये बाज़ाब्ता रिकॉग्नाइजेशन इनको स्पोर्ट्स काउंसिल से मिलती है, वहाँ हर एक गेम की प्रैक्टिस होती है। जो भी आपको स्पोर्ट पसंद है, डायरेक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ कॉन्टैक्ट करके उसके एसोसिएशन में आप जा सकते हो, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे पास बख्शी स्टेडियम है, हमारे पास इंडोर स्टेडियम है, वहाँ बहुत सारी इंडोर गेम्स भी होती है, आउटडोर गेम्स भी होती है, वहाँ आप जा सकते हो, अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन कर सकते हो। मामूली सी फीस वहाँ भरनी है, उतना ज़्यादा है नहीं, वो बेसिक होता है स्पोर्ट्स काउंसिल का हर एक जगह, वहाँ आप जा सकते हो। हाँ, इसके अलावा कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं, अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो पहाड़ पे, पैराग्लाइडिंग करना चाहते हो, जो ऐसे स्पोर्ट है जो मज़ेदार स्पोर्ट है, जो एरो स्पोर्ट्स होते हैं हवा में, जो जमीन पे होते हैं, जब पानी में होते हैं या पहाड़ पे होते हैं, ये सारे स्पोर्ट्स। हाँ, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें आप देख के अपने बच्चे को एडमिशन करो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही मिलेगा।
0: बिल्कुल, इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और आगे आने की ज़रूरत है, बच्चों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और देखिए आपका बच्चा कितना आगे जाता है, और हर एक चीज़ में हिस्सा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त वो नहीं रहा। हम चूंकि सोचते थे कि एक फील्ड में हम काफ़ी इनफ है हमारे लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है, वक्त की जरूरत है,
2: इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, जैसे कि रियाज साहब हैं हमारे सामने।
0: मैं तो जाते जाते इतना बोलूंगी कि स्विमिंग अपने बच्चों को जरूर सिखाइए, क्योंकि जो हमारे आसपास अभी हो रहे हैं, तो स्विमिंग सिखाइए। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाया, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत शुक्रिया रियाज साहब,
1: शुक्रिया।

0: जी हाँ, जिंदगी के रास्तों पे चलना है, सीखना है, आगे बढ़ना है और सिखाते रहना है जो भी आपके पास है,
1: दूसरों को सिखाते
0: रहना, गिरना है, गिर के संभलना है। कहते हैं ना, जो गिरता है उसमें कुछ न कुछ तो होता है, तभी तो बड़ी फोर्स से फिर से उठता है। उठे, अगर गिर जाते हैं जिंदगी से हार ना माने। फिलहाल हम आपसे लेना चाहेंगे इजाजत, मैं लेना चाहूंगी पायम सुप प्रोग्राम से आपसे इजाजत। पायम सुप यही पर काम को पहुंचता है। एक और सुबह आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज व नासिर, और आप रहिए मेरी साथी लाहुता फरहान के साथ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीमा। बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। अब आप जुड़ेंगे हमारे नए प्रोग्राम के साथ, और इसी के साथ हम लेना चाहेंगे अपने मेहमान से इजाजत। चलिए, आपका बहुत बहुत
2: शुक्रिया।

0: سامعین محترم، تو ایسو بوزان چکر درو سرکار ایسو غلا محمد گنائی سر نل تتیہند ہم نوا یہ منش بوسو تو ایک کلام لس خان فدا. یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمین دن کے 12 بجنے والے ہیں. چند ہی لمحوں بعد آپ آکاش وانی دلی سے سماعت کریں گے انگریزی اور ہندی میں خبریں.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम. तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल कवयित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है. 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है. ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली. इस अवसर पर भाजपा

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेज मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से मीडियम वेव और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 12:10 हुए हैं। आइए समाप्त करते हैं चंद फिल्मी नक में।

सभी ने आपने मिथुन अरिजीत सिंह और साशा त्रिपुति की आवाज़ों में ये प्यारा सा नगमा समाप्त किया। ये नगमा लिखा है मनोज मुंतशिर ने और मिथुन ने इस नगमे की तर्ज बनाई है।

0: समीन, आप पलक मुच्छल को सुन रहे थे और ये अरमान मलिक की मौसीकी में आपने मनोज मुंतशिर के अशार समात की फिल्म का नाम MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म नगमे आप समात कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। 12:30 हो रहे हैं। आइए अब खबरें समात करते हैं, पहले उर्दू, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आज कुपवाड़ा में मनुष्यात मुखालिफ पद यात्रा को सुबह 10:30 झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारे नुमाइंदे रफीक अहमद ने खबर दी है कि एलजी ने पद यात्रा को रवाना करने से पहले वहां मौजूद लोगों और शुरका को नशा मुक्त अभियान कामयाब बनाने का अहद दिलाया। उन्होंने कहा कि ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा, ताहम इस बिद्दत के शिकार अफराद की बाजाबादकारी के लिए मुनासिब कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मनोज सिन्हा कपवाड़ा में मरकजी स्कीमों के लिए मुस्तहकीन में सेंक्शन लेटर्स भी तकसीम कर रहे हैं। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर जिले के तरहगाम में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत मोबाइल टीबी स्क्रीनिंग वैन को भी झंडी

0: उठाएंगे। मनुष्यात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने हंदवाड़ा में नजीर अहमद पीर की 15 लाख रुपए और शोपिया में अर्शद अहमद डार नामी ड्रग स्मगलर की 10 लाख रुपए मालियत की जायदाद अटैच की है। गांदरबल, अवंतीपोरा और पुलवामा में पुलिस के अहतमाम से मनुष्यात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। सोपोर में पुलिस ने नगरोटा जम्मू के रहने वाले मोहम्मद सुल्तान मलिक नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। बांडीपोरा में पुलिस ने भंग की काश्त को तबाह कर दिया। जल जीवन मिशन से मुतलिक असेंबली की हाउस कमेटी के चेयरमैन हसनैन मसूदी की क़यादत में कमेटी ने चरारी शरीफ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां मिशन की अमल आवरी का जायजा लिया। दौरे के दौरान कमेटी के अरकान ने डाड, ओमपोरा, नागाम और जालूसा इलाकों में पीने के पानी की फराहमी के लिए मुख्तलिफ स्कीमों और पाइपलाइन बिछाने के अमल का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अतहर आमिर खान ने बीरवा का दौरा करके नाला सुखनाक पर ज़ेर तामीर मरकजी पुल के काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतलक हुकाम और तामीराती एजेंसियों को पुल की तामीर बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि बीरवा और मुल्हिका इलाकों के आवाम जल्द अज जल्द बेहतर राबता सड़कों और महफूज सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सके। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर हादसात के लिए हसास मनीगाम क्रॉसिंग का दौरा किया और वहां सूरतहाल का जायजा लेकर रोड सेफ्टी इकदामात के तहत ज़रूरी इस्लाही तदाबीर के बारे में जानकारी हासिल की। मकामी बाशिंदों से बातचीत के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मनीगाम क्रॉसिंग पर पेश आने वाले बार बार सड़क हादसात से मुतलिक उनके खदशात को गौर से सुना। मकामी लोगों ने ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने और मुसाफिरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मनीगाम क्रॉसिंग से निपोरा क्रॉसिंग तक अलाहिदा सर्विस रोड तामीर करने का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का दौरा करके 11 और 12 मई की दरमियानी शब एक मदरसे में पेश आई आग की वारदात में झुलस कर जख्मी हुए अफराद की अयादत की। उन्होंने तिब्बी अमले को हिदायत दी कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और मरीजों नीज उनके तीमारदारों के लिए दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदु कंवल चिब ने टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर के तैयार करदा GIS पर मबनी मास्टर प्लान बांडीपोरा के लिए 2026-46 के ड्राफ्ट पर वाबस्ता मुतलकीन के साथ एक मीटिंग के दौरान तबादले ख्याल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स और आवाम से मौसूल होने वाली तजावीज़ को मास्टर प्लान की रिवाइज ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी ने पुलिस अफसरान की एक मीटिंग में ज़िले में आइंदे के प्रोग्रामों के लिए इख्तियार किए जाने वाले मजमूई सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली तबादले ख्याल किया। मीटिंग के दौरान अफसरान ने मौजूदा सिक्योरिटी सूरतहाल और दरपेश चैलेंजेस के साथ साथ इनसे निमटने के इकदामात पर गौर खोज किया। SSP ने सिक्योरिटी ग्रिड का असरी नव जायजा लेने और इसे मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम हज हाउस रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने UPSC और JKPSC इम्तहानात की खातिर तैयारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। दरख्वास्तें ऑफलाइन मोड के जरिए आज यानी 13 मई से 22 मई तक जमा कराई जा सकती हैं। दाखिला इम्तहान 25 मई को होगा और दाखिले का अमल 8 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि मजकूरा इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए 50 नशस्तें दस्तियाब हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब। खबरन हुन बुलेटिन हाजिर शबनम विजपुर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान कर आज नशा मुक्त अभियान तहत कुपवारि अख पद यात्रा झंडी हवित रवाना। सानि कुपवारिक नुमाइंदा रफीक अहमदन खबर दिचमज लेफ्टिनेंट गवर्नरन तुलनाई पद यात्रा रवाना करने ब्रोह अति मौजूद लोक नशा मुक्त अभियान कामयाब बनान हलफ। तमो वो ड्रग स्मगलरन खिलाफ रोज सख्त खुद सख्त कार्रवाई जारी ताहम इन नशे सत मुतासर नफर दोबार आबाद करने खतर तुनसब इकदाम कर। मनोज सिन्हान कर कुपवारि मरकजी सिकीमन हंदन कैचन मुस्तक नफरन मन सेंक्शन लेटर तकसीम। लेफ्टिनेंट गवर्नर कर जिल किस त्रहगाम इलाकस मज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्रामस तहत मोबाइल TB स्क्रीनिंग वैन तंडी हवित रवाना। मनशियात किस कारोबारस खिलाफ पन कार्रवाई जारी थान पुलसन हंदवार नजीर अहमद पीर नाव किस नफर सुंद 15 लाखों रुपयन हूं जायदाद तो शुपियन अरशद अहमद डार नाव किस ड्रग स्मगलर सुंद 10 लाखों रुपयन हूं जायदाद कुरुक कोर्मुत। गांदरबल, ऊंधपोर तो पुलवामे आई

हमारी आवाज अब तक पहुंच रही है आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, इसके अलावा हम आपसे मुखातिब हैं DTH पर और आप हमें सुन सकते हैं आप ही के मोबाइल फोन्स पर न्यूज ऑन AIR पर भी। समय दिन का 1:01 चंदी लम्हों बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें समाप्त करेंगे। जरा सा इंतजार फरमाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। CBI ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। CBI ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. In Tamil Nadu, the Tamilaga Vetri Kadagam government led by C. Joseph Vijay won the floor test in the Tamil Nadu Assembly with 144 MLAs voting in favour, demonstrating a clear majority in the House. 22 MLAs voted against the confidence motion. The DMK major opposition party walked out of the assembly during the proceedings. Mr. Vijay was mandated by the Governor of Tamil Nadu, Rajendra Vishwanath Ardlekar, to prove his majority in the floor of the House after his party was able to secure only 108 seats in the recently concluded assembly election. The Minister of Youth Affairs and Sports, in collaboration with the Minister of Home Affairs, has launched the national-level quiz for the Viksit Vibrant Villages Programme 2026 on the My Bharat platform. The Ministry said that the quiz marks the first stage of selection for youth participation in the Immersive Border Village Engagement Programme scheduled to be held next month. ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस लीडर एन

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप।

0: गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
1: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
1: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
1: जी,
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
1: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नौ तपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
1: जी,
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
1: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी,
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी,
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
0: जी,
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी,
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा

0: होने वाली साग सब्जियां और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए?
1: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
2: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
3: अब तेरी बारी है,
4: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
3: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
4: तो कहानी सुना दो भाई।
3: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
4: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
3: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
4: हाँ चलो चलो, वहाँ
3: चलो
4: पे पानी
3: चलो
4: होगा।
3: चलते हैं।
1: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
3: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
4: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
3: हम थोड़ा पानी पी लें?
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
4: हाँ, पर ठंडा पानी था।
3: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
5: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
4: कौन है आप?
5: नहीं समझे?
4: नहीं।
5: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम।
3: अब गर्मी अम्मा है।
4: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
4: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
4: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
4: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
5: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के

0: साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
0: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
3: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
2: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
2: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
3: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
3: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
2: नहीं समझी?
1: नहीं।
2: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
1: हाँ बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
4: लाओ अम्मा,
3: लाओ अम्मा,
1: लो।
3: घर भी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
6: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
7: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती हैं।
8: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
7: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान

0: जापान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
1: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
2: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुका, रुका! जाओ वहीं रुक जाओ, रुका!
3: कौन हो तुम?
5: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
5: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा यहीं रुको। चलो कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
5: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
5: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
5: सर ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
5: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
5: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
5: शायद पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
5: साहब मेरा गांव है घर कौन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।

0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी,
5: यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर।
5: उधर से। हाँ।
2: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाए, हथियारों में

0: राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
1: सर, सर, सर।
0: कोई शक?
1: नो सर। सर
0: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
3: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
4: धीमे बोलो, धीमे
3: जी,
4: उन्हें पता ना चल जाए।
3: जी सर।
4: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे
3: जी,
4: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
3: ठीक है सर।
4: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला भेज।

0: Jacen. A to kula, Pinko.
1: गुड, वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
2: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: समय आप समाप्त कर रहे थे NCERT का तैयार करता स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग।

समीन, आपने अरिजीत सिंह को सुना फिल्म एक विलन में। आइए एक और नगमा समाप्त करते हैं, आवाज एक बार फिर अरिजीत सिंह की।

समय नगमे आप समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर के प्राइमरी स्टेशन से। समय 1:50 हुआ चाहते हैं, चंद लम्हों बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त करेंगे खबरें, जरा सा इंतजार फरमाएं।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली टीवीके हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। और IPL क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में वजीराला जोसेफ विजय की क्यादत वाली नई हुकूमत ने आज रियासती असेंबली में 144 अराकीन असेंबली की अक्सरियत साबित कर दी है और एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एडप्पड़ी पेलानी सामी की क्यादत वाले 22 AIADMK अराकीन असेंबली ने इसके खिलाफ वोट दिया। BJP और PMK से ताल्लुक रखने वाले 5 अराकीन असेंबली ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। असेंबली में अक्सरियत साबित करने की करारदाद वजीर आला ने पेश की थी। SP वेलुमनी की क्यादत वाले AIADMK ने हुकूमत की हिमायत की है। मगरबी बंगाल की 18वीं कानून साज असेंबली के 9 मुंतखब MLAs को कोलकाता में हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से MLA के तौर पर हलफ लिया, जबकि नंदीग्राम सीट को खाली रखा गया है। इसके बाद 5 दीगर काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। आम जनता उन्नयन पार्टी के MLA हुमायूं कबीर ने नोएडा सीट के लिए हलफ लिया। जनाब कबीर रेजीनगर सीट से भी जीते हैं। उबूरी स्पीकर तपस रॉय ने उन्हें हलफ दिलाया। आजमूदाकार सियासी रहनुमा और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के बानी एन रंगासामी को आज पांचवी म्याद के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। उनके साथ BJP के ए नमसिवम और ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मलाडी कृष्णा राव को भी NDA सरकार में वजीर के

0: तौर पर हलफ दिलाया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में मुनक़दा एक तकरीब में पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने वज़ीर आला और दो वज़ीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना, बीजेपी के रियासती सदर वीपिन रामा लिंगम, डीएमके के कन्वीनर आर सिवा, कानून साज असम्बली साबिक स्पीकर आर सिल्वम और नौ मुंतखब अरकान असम्बली और पार्टी के दीगर अहदेदारान मौजूद थे। हलफ बरदारी की तकरीब के बाद जनाब रंगास्वामी वजीर आला के दफ्तर गए और जिम्मेदारी संभाली। नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंगापुर के तर्ज पर पुडुचेरी को तरक्की देने के लिए काम करेगी। पुडुचेरी से बिबिन एस नाथन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अंदरून मुल्क हालिया दौरों के दौरान अपने काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में खातिरखा कमी की है। अलबत्ता स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के प्रोटोकॉल के तहत सभी सिक्योरिटी इंतजाम बरकरार रखे गए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के काफिले में मोटर गाड़ियों की तादाद में कमी गुजरात और आसाम के उनके हालिया दौरे के दौरान की गई। यह कदम मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार कम करते हुए इक्तसादी इस्तेहकाम में तआवुन के लिए शहरियों से उनकी अपील के बाद उठाया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अपील पर अपने काफिले की तादाद घटाते हुए उसे आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़राए आला ने भी वजीरों, अराकीन असेंबली और अवामी नुमाइंदों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की तादाद कम करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आला, वजीरों और दीगर अफसरान की सरकारी गाड़ियों के बेड़े में 50% कटौती करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी काफिलों से गैर जरूरी गाड़ियों को निकाल लिया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के 3 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो कल बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ सरबरा सतह की मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि वो चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। इम्कान है कि तिजारत को इस बातचीत में अहमियत हासिल रहेगी। ये शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप की 7वीं बिल मुशाफा मीटिंग होगी और ये साल 2017 के बाद से किसी अमरीकी सदर का चीन का पहला दौरा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तलबा अपने नतीजे ऑफिशियल वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना रोल नंबर लिखकर देख सकते हैं। इस साल CBSE की 12वीं क्लास के इम्तिहानात 17 फरवरी और 10 अप्रैल 2026 के दरमियान कराए गए थे। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज सुबह चिली के खारजी उमूर के वजीर फ्रांसिस्को पेरेज मैकेन्ना से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि फरीकैन ने तरजीही अशिया की बरामदात को फरोग देने और खिदमात पर मबनी मईशत को आसान बनाने की खातिर बाजारों और सोर्सिंग को वसत देने के मकसद से दोतरफा तआवुन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया। दोनों फरीक कसीर जहती फोरमों पर एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करने पर रजामंद हो गए हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% की तेजी देखी गई। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मुस्तकबिल के मार्केट में जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमत 6% के इजाफे के साथ 1,62,597 रुपये फी तोला रही। वहीं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में चांदी की कीमत 6.4% के इजाफे के बाद 2,96,821 रुपये फी किलोग्राम रही। तहम आज के कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक का इजाफा हुआ। हुकूमत ने सोने और चांदी पर सेस समेत इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% तक का इजाफा कर दिया है। प्लेटिनम पर भी इंपोर्ट ड्यूटी 6.4% से बढ़ाकर 15.4% कर दी गई है। सरकार ने आज से सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है। वजारत खजाना ने एक बयान में कहा है कि सोने और चांदी के जेवराती अज्जा पर 5% महसूल जबकि प्लेटिनम के अज्जा पर 5.4% महसूल आयद होंगे। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों से अपील की थी कि वह मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनजर सोना न खरीदें। भारत में इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। महकमे मौसमियात ने आज राजस्थान के लिए लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, महाराष्ट्र और मगरबी मध्य प्रदेश में भी गर्म हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के शुमाल मशरक़ी हिस्सों और अंडमान और निकोबार जजायर के लिए कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई भी की है। محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں اگلے 24 گھنٹے کے دوران

0: ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साबिक सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया और गुलाय अकीदत नजर किए। फखरुद्दीन अली अहमद ने मुल्क के पांचवें सदर जमहूरिया के तौर पर 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक अपने इंतकाल तक फराइज अंजाम दिए। वो पहले ऐसे सदर जमहूरिया हैं जिनका ओहदे पर फायज रहते हुए इंतकाल हुआ। सीबीआई की टीम नीट इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले की तहकीकात के लिए जयपुर पहुंच गई है। उसने तकरीबन 2 दर्जन अफराद से पूछताछ की है जिन्हें राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने हिरासत में लिया है। इस दौरान एसओजी ने सीकर और उसके अतराफ के इलाकों में सैकड़ों अफराद से भी पूछताछ की है। पंजाब सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी वजा करने का फैसला किया है ताकि दिफाई अफवाज में उनकी म्याद मुकम्मल करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी दी जा सके। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली टीवी के हुकूमत ने रियासती असेंबली में आसानी से अक्सरियत साबित करते हुए एतमाद का वोट जीत लिया है। वहीं एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं मुद्दत के लिए पुडुचेरी के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। मगरबी एशिया के तनाज़े की वजह से पैदा हुए तवानाई के आलमी बहरान के दरमियान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर मरकज और रियासतों ने ईंधन की बचत के इकदाम तेज कर दिए हैं। CBSE ने आज 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर करीब 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% का इजाफा हो गया है। और भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि इस साल जुनूब मगरबी मानसून की जल्द आमद का इम्कान है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। In Tamil Nadu, C. Joseph Vijay-led TVK government wins floor test in state assembly with comfortable majority. N. Rangaswamy sworn-in as chief minister of Puducherry for a record 5th term. Sentence states intensify fuel-saving measures following Prime Minister Narendra Modi's appeal amid global energy crisis triggered by West Asia conflict. CBSE declares All India Senior Secondary Class 12th results. Gold silver prices jump over 6% after government hiked import duty to around 15%. IMD says monsoon likely to arrive early this year. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to take on Kolkata Knight Riders in Raipur this evening. The newly sworn-in government led by Chief Minister Joseph Vijay has proven majority of 144 MLAs and has won the vote of confidence today. 22 AIA DMK MLAs led by Edappadi Palaniswamy have opposed it. 5 MLAs, including the BJP MLA and PMK, remained neutral. DMK and other alliance partners did not participate in the motion and walked out of the assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in the assembly. The AIA DMK led by SP Velumani supported the government. We have a report.
2: It was a day of expectation in Tamil Nadu politics. The TVK government had to face a floor test in which the ADMK party faced a split. The former chief minister and general secretary of the party, Edappadi Palaniswamy, criticized the ruling TVK government for encouraging a split in the party. He also criticized the speaker for allowing the breakaway group of AIADMK leader SP Velumani to speak on the motion of confidence. In his speech, Velumani said that they had to take a stand in support of the government to continue the ideals of MGR and Jayalalitha. In his speech, after winning the motion of confidence, Chief Minister Joseph Vijay assured that his government will definitely protect the welfare of the minorities and work for the welfare of the people. He said that the people will accept this government because the welfare schemes implemented by the earlier governments will be continued. Udayanidhi Stalin, the opposition leader, said that the Secular Progressive Alliance will continue to work for the wishes of the people. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
1: Veteran political leader and founder of the All India NR Congress, N. Rangaswamy, today took oath as the Chief Minister of Puducherry for a record 5th term. Along with him, A. Namasivayam of the BJP and Maladi Krishna Rao of All India NR Congress were also sworn in

पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूं दुनिया के चमन में। यह आवाज़ थी, जहां ये दिलकश आवाज़ थी लता मंगेशकर की। इस नगमे को हमने लिया था फिल्म चोरी चोरी से।

समीन, आप राजेंद्र कृष्ण के अशआर समाप्त कर रहे थे सलील चौधरी की मौसीकी में। ये आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और तलत महमूद की। दोस्तों, इस नगमे को हमने लिया था फिल्म छाया से।

समीन, आप सुन रहे थे पुराने सदाबहार फिल्मी नगमे। ये जो आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव जहत्तर अठा शहरी अठाक मीटर ते एफ एम जहाँ शहरिया पाँच मेगाहर्ट्ज़ पर समीन दूची ढाई बजे वलिव छकर तो रो बोसो। ये कला में समद मीर सदाकार छे गुलाम मोहम्मद गनाई सरनिल तिथि हिंद हम नवा।

Todo mundo! Diga-lhe que ele tá... Dá uma...

Samri Mohtaram to Yesubozan Chakr Turu, Yos Kalami Samatmir, Sarakaris Olam Mohammed Ganai Sarnil Titihin Hamnava. हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव और एफएम 203.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय से पहर के ठीक 3 बज रहे हैं। अब पेश होता है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी नगमों का प्रोग्राम।

फौजीबाइयों, प्रोग्राम की शुरुआत में आपने स्वामी फिल्म से की नगमा समाप्त किया। अमित खन्ना के बेहतरीन अशार आपने राजेश रोशन की मौसीकी में समाप्त किए और ये दिलकश आवाज़ थी लता मंगेशकर की।

फौजी भाइयों, आपने आनंद बख्शी के अशार समात किए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में। आशा भोसले एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजें थी और फिल्म का नाम अंधा कानून। आदत बदल लूं कैसे तेरे इंतजार की, आदत बदल लूं कैसे तेरे इंतजार की, ये बात अब नहीं मेरे अख्तियार की। देखा नहीं तुझ ही को फिर भी याद कर लिया, देखा नहीं तुझी को फिर भी याद कर लिया, ऐसे बसी है तेरी खुशबू मेरे दिल में प्यार की।

फौजी भाइयों, लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म एक नज़र में। मजरू सुल्तानपुरी के अशार आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में। आवाज़ हमने आपको बता दी कि लता मंगेशकर की थी। दोस्तों, मोहब्बत हमेशा एक ही ज़बान समझती है, मोहब्बत, प्यार, और अगर हालात ठीक न रहे तो कुर्बानी और ईसार। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत न सिर्फ मर्द और जन की, मोहब्बत दो भाइयों की, दो दोस्तों की, दो बहनों की, दो सहेलियों की। मोहब्बत बहुत वसी लफ्ज़ है, और मोहब्बत में सबसे बड़ी बात यह है कि ध्यान रखना चाहिए कि सख्त रवैये जो हैं बात को मोहब्बत में इंसान को मनवा देते हैं, लेकिन उसी मोहब्बत में, उसी रिश्ते में दिलों में फासले पड़ जाते हैं। अगर रहना ही है, जब रहना ही है हमें साथ, तो दोनों तरफ के रवैयों में लचक होना ज़रूरी है, कुर्बानी होना ज़रूरी है, ईसार होना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि झुक जाने में कामयाबी है। हम अगरचे सख्त रवैयों की वजह से अपने आप को किसी हद तक मनवा भी लेते हैं, लेकिन दिलों में कहीं ना कहीं गिरहें बन जाती हैं। दोस्तों, मोहब्बत ऐसी हो, दोस्ती ऐसी हो, रिश्ता ऐसा हो कि कुछ उसमें मनवा लिया और कुछ मान गए।

0: फौजी दोस्तों, आपने फिल्म अपनापन से ये नगमा समाप्त किया। आवाज़ थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। दोस्तों, प्रोग्राम जारी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है ना, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
4: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: फौजी दोस्तों, वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है।

दोस्तों किशोर कुमार और आरती मुखर्जी को आप सुन रहे थे। दोस्तों जिंदगी में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इंतजार लोग जिसका इजहार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, वो लोग जो आपके सामने आपकी कमियों और सलाहियतों का इजहार करते हैं और आपको बुरे कामों से इज्तनाब करने को कहते हैं और आपकी कामयाबी पर खुश होते हैं, सही मानों में वही होते हैं आपके सच्चे दोस्त।

फौजी भाइयों, अमित खन्ना के अशारा सुन रहे हैं और बप्पी लहरी ने इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी है किशोर कुमार की आवाज़ में। आप नगमा सुन रहे हैं, फिल्म का नाम है और कौन।

फौजी भाई, यू आइए। अब किशोर कुमार के बाद लता मंगेशकर को सुनते हैं। फिल्म का नाम है कर्तव्य, और वर्मा मलिक के अशार आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में सुनेंगे।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव और FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन 3:50 हुआ चाहते हैं। आइए अब समाप्त करते हैं उर्दू खबरों का बुलेटिन।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सेफर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं तजमुल अंदराबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने समाज को मनुष्यात की लानत से पाक करने का दोहराया अज़्म। कुपवाड़ा में मनुष्यात मुखालिफ पद यात्रा में की शिरकत। एलजी ने त्रहगाम कुपवाड़ा में कई तरक्याती प्रोजेक्टों को किया कौम के नाम वक्फ। कहा सरहदी देहात की मजमूई तरक्की इंतजामे की अवली तरजीह। जम्मू कश्मीर में खवातीन को बा इख्तियार बनाने का सफर जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दी तरक्की महकमे और JKRLM के इकदाम की तारीफ। और IPL क्रिकेट मैच, रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत के 32 दिनों में सिविल और पुलिस इंतजामिया ने पूरे ड्रग स्मगलिंग के निजाम को खत्म करने के लिए लाजमी इकदाम किए और मनुष्यात के खिलाफ तहरीक अब एक इनकलाबी सूरत इख्तियार कर रही है। कुपवाड़ा में आज मनुष्यात मुखालिफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मनुष्यात के खिलाफ जंग तवील है। उन्होंने कहा कि दहाइयों तक जम्मू कश्मीर ने मनुष्यात और दहशत पसंदी को अलग अलग खतरात की नजर से देखा, लेकिन दो मसाइल होने के बावजूद ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग स्मगलरों के खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है तो हम इस बिद्दत में फंसे लोगों के साथ हमदर्दी का रवैया इख्तियार करने की जरूरत है।
1: मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस नशा विरोधी अभियान में आप भी जुटिए और जिन लोगों ने नारको पैलेस खड़ा किया है, 6 साल पहले उनके पास भोजन नहीं था, आज उनके माल खड़े हैं, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आपको भी अगर कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को प्रशासन को दीजिए। हम आपको भरोसा देते हैं किसी नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा, उसे उनके दायरे में ला करके कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और जो हमारे युवा साथी गलती से फंसे के लत में आ गए, उनके साथ पूरा प्रशासन संवेदना के साथ, सहानुभूति के साथ उनकी काउंसलिंग, उनका इलाज और उनका पूरी तरह रिहेबिलिटेशन कराने का जिम्मा जम्मू कश्मीर प्रशासन का है।
0: इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत महकमे जंगलात के कुपवाड़ा फॉरेस्ट लीग और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की वॉलीबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफीज की भी नकाब कुशाई की। मनुष्यात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में एक मारूफ कलमकार बशीर अहमद बस ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: मौजूदा दौर में हमारी नौजवान नस्ल कई नशेली आदतों में मुलव्वस होते जा रहे हैं।

0: जिनसे न सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है बल्कि वो अपने वालिदैन को भी परेशानियों में मुबतला कर देते हैं। लेकिन वालिदैन पर भी ये फर्ज आयद हो जाता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी सोहबत पर नजर रखें, और हर एक शख्स पे ये फर्ज आयद होता है कि वो इस नशीली आदत को काबू पाने में अपना ताउन बराबर जारी रखे।
1: पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए पुलवामा वहीद रहमान पन्ना ने जम्मू कश्मीर में मनुष्यात के कारोबार और इसके इस्तेमाल के ताल्लुक से अपनी गहरी तश्वीश का इजहार किया है। आकाशवाणी ने उसको दस्तियाब कराए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में समाजी इंसाफ की मरकजी वजारत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 5.5 लाख अफराद ओपियॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 1,70,000 अफराद नशीली अद्वियात और तकरीबन 1.5 लाख अफराद चरस के इस्तेमाल की आदत में मुबतला हैं। वहीद रहमान पन्ना ने कहा कि इस लत में मुबतला अफराद को कार्रवाई का निशाना बनाना मसले का हल नहीं है, बल्कि ड्रग स्मगलरों और इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतलूब नताइज हासिल करने के लिए अलामात के बजाय इस संगीन मसले की असल जड़ को खत्म करना होगा। कुपवाड़ा में पदयात्रा में शिरकत के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वाइब्रेंट विलेज त्रिहग्राम का दौरा करके वहां मुतद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कई एक का संघीय बुनियाद रखा। उन्होंने लोगों के तरक्याती मसाइल और जरूरियात का भी जायजा लिया। तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि वजीर अजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मरकजी सरकार सरहदी इलाकों की तेजतर तरक्की को यकीनी बनाने की वादबंद है। उन्होंने कहा कि हर एक गांव को बेहतर सड़क राबते, जदीद स्कूल और नौजवानों के लिए मसावी मौके फराहम करने की तरफ खसूसी तवज्जो दी जा रही है।
2: महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि त्रिहग्राम तथा अन्य 15 वाइब्रेंट विलेजेस के में हर सरकारी योजना का 100% सिचुएशन हो जाए, हर सरकारी योजना का हर पात्र व्यक्ति हर घर तक हर परिवार तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित प्रशासन कर रहा है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिक दायित्व उनका हमारा होना चाहिए कि समाज का हर वर्ग केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर प्रशासन योजनाओं का लाभ इन गाँव में पा सके। कुपवाड़ा में वाइब्रेंट विलेज का कोई परिवार न छूटे, इसकी कार्य योजना जिला प्रशासन ने बनाई है। हमारे सभी सीनियर अफसरान अपने अपने डिपार्टमेंट के कामों का भी रिव्यू करके इन्हें सेचुरेट कराएंगे। लाइवलीहुड जनरेशन के लिए भी जिला प्रशासन ने बहुत ही सराहनीय पहल यहाँ प्रारंभ की है।
1: दही तरक्की महकमा और जैन के रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर में खवातीन के मियारी हयात में बेहतरी लाने और उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए खातिरखा इकदाम कर रहे हैं। इन महकमों ने यूटी की 8,10,000 खवातीन को मुतहरिक करके 96,000 से जायद सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम करके उन्हें 3,106 करोड़ रुपये के बैंक कर्जे फराहम किए। इतलात के मुताबिक लखपति दीदी पहल के तहत सालाना 1 लाख रुपये की आमदन हासिल करने वाली खवातीन की तादाद 2,30,000 से तजावज कर गई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस अहम पेशरफ के लिए इन दोनों महकमों को मुबारकबाद दी है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने भी खवातीन को बा इख्तियार बनाने और उनकी शमूलियाती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की काविशों की सराहना की है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लावरू ने आज श्रीनगर में बडशाह पुल का दौरा करके वहां इसकी फेंसिंग के इम्कान का जायजा लिया। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुल के साथ साथ कमरवारी में हाल ही में मुकम्मल किए गए पुल की फेंसिंग का काम अनकरीब ही शुरू किया जाएगा।
3: पिछले कुछ दिनों में देखा होगा आप लोगों ने कि जो बडशाह ब्रिज है वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसपे लोगों ने यहाँ से जो पानी में है कूदने की कोशिश की। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स फ्रॉम पुलिस दैट वी हैव रिसीव्ड कि यहाँ पे एक ऐसा वल्नरेबल पॉइंट बन गया है जहाँ पे अटेम्प्टेड सुसाइड करने की कोशिश बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज हम अपनी टीम के साथ हमारे RNB के SC एक्सियन साहब, हमारे CPO साहब, हमारी रेवेन्यू KDC साहब, हम सब मिलकर ये देखना चाह रहे थे कि कितना जल्द बडशाह ब्रिज को भी फेंस कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द RNB इस पे अपना काम शुरू कर ले। इसी तरीके से जो हमारा सीमेंट ब्रिज नूरजहां ब्रिज जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था वहां से भी सिमिलर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। इसके बाद हम वहां पे भी एक साइट विजिट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको भी एस्थेटिकली हम फेंस करें।
1: जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जेर एहतमाम हज हाउस रेजिडेंशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने UPSC और JKPSC इम्तहान की खातिर तैयारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग के लिए दरखास्तें तलब की हैं। दरखास्तें ऑफलाइन मोड के जरिए आज यानी 13 मई से 22 मई तक जमा कराई जा सकती हैं। दाखिला इम्तहान 25 मई को होगा और दाखिले का अमल 8 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। ये बात काबिल जिक्र है कि मजकूर इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए 50 नशस्तें दस्तियाब हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने PM जन आरोग्य योजना को अमलाने और इसके फवायद मुस्तहकीन तक पहुंचाने में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। श्रीनगर में स्टेट हेल्थ एजेंसी की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान उन्होंने स्कीम की अमल आवरी में

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम कैनकम में आ तुसदा मेज़बान ख्वाजा परवेज प्यार खलूस और ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ते प्रोग्राम बिच जी आया को आखदा। उम्मीद है तुसी ठीक ठाक हो सो ते प्रोग्राम दिलचस्पी नाल सुन दे हो सो। सामीन इधरों जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफों जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक दसवीं और बारहवीं जमातों के प्राइवेट यानी दोबारा आने वाले इम्तिहानों वास्ते फार्म जमा कराने का शड्यूल और इन दियां तारीखां बदा छुड़ी दी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के तालबे इल्मा को आन 20 मई तक अपने इम्तिहानी फार्म जमा कराने हो सुन। ये फार्म ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों तरीक़े नाल जमा कराले जुल सकते हैं। 20 मई तो 26 मई तक लेट फीस अदा करनी पेसी। जिन्हां तालबे इल्मां अजे तक फार्म जमा नहीं कराले दे उन्हां को मशोरा दिता जुलदा है कि वह आखिरी तारीख तो पहले फार्म जमा करन। सामीन आओ प्रोग्राम को अगे बधेंदे होया मसरत नाज़ दी आवाज़ भी सुनदे हां ए गीत।

जी सामीन, मसरत नाज़ पेश कर रही आसियां गीत। ते सामीन, जम्मू कश्मीर बिच हालिया बारिशां और मौसमी तब्दीली सुन मकई ते बाकी फसलां दी काश्त और पैदावार उत्ते डूंगे असरात सट छोड़े दिन। इस महीने बिच आने वाली बारिशां और क्रीड़ी सुन ज़िरात ते बागबानी दे शोबियां को खासा नुकसान पहुँचाया है। माहरीन और ज़री यूनिवर्सिटी सुकास्ट सुन किसानां वास्ते हदायतां जारी कीती दियां हन कि डोगियां और बागां बिच जमा होए दे पानियां को कढ़न तां जी बूटियां दियां जड़ां गलने और तरकने तो बच सकन ते फंगस दी बीमारी तो बचाया जुल सकै। ते शदीद बारिश या तूफान दी पेशगोई दे दौरान ज़री दवाइयां न छणकन। किसानां को ये मशोरा भी दिता गया है कि वह मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने वास्ते ज़िरात दे एजे भी इस्तेमाल करन जड़े कामयाब रेवन। सामीन, प्रोग्राम जारी है ते आओ अगे ज़हूर गिलानी दी आवाज़ बिच सुनदे हां ए गीत।

जी सामीन, जहूर गिलानी पेश कर रहा से गीत। ते सामीन, इधरों बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू कश्मीर दी तरफों एक नोटिफिकेशन दे जरिए बाकी जबाना दे नाल नाल पहाड़ी जबान बिच भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को दाखले वास्ते मदु कीता गया है। ए अस दी जबान सकाफत और शिनाखत दे तहफ्फुज़ दा एक अहम और हौसला अफजा कदम है। पहाड़ी बिच बी ए और एम ए प्रोग्रामा नाल पहाड़ी अदब लसानियात और सकाफती विरसे दा इलम हासिल होंदा है। इसी तरह क्लासिकी पहाड़ी नुस्खे जबानी रवायतां और लोक दास्ताना उते डूंगी तवज्जा दिती गेंदी है और पहाड़ी जबान दे बाकी पहलुआं दे नाल नाल तहकीक दे मौके भी मिलते हैं और मीडिया सियाहत तर्जमा सकाफती विरसा और तहकीक बिच मुस्तकबल दे राह मिलते हैं। इसी तरह पहाड़ी जबान दे कनी कनी लहजियां बरादरियां और लिसानी इलम दा बराए रास्त राबता होंदा है। पहाड़ी बिच बी ए दा दौरानिया 4 साल मुकरर है। अहलियत 12 मई 12वीं पास किसी भी तस्लीम शुदा इदारे थी होवे और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एम ए वास्ते दौरानिया 1 थी 2 साल है। अहलियत किसी भी स्ट्रीम और तस्लीम शुदा इदारे बिचो बी ए दी डिग्री हासिल कीती दी होवे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ऑनलाइन दरखास्तां जमा करा सकते हैं। बी ए पहाड़ी वास्ते आखिरी तारीख 26 मई 2026 मुकरर कीती गई दी है और एम ए पहाड़ी वास्ते 14 जून 2026 मुकरर कीती गई दी है। मजीद जानकारी वास्ते बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी दी ऑफिशियल वैबसाइट उते राबता कायम कीता जुल सकता है। तसामीन, आओ प्रोग्राम दे आखिर ते सैयद मोहम्मद इकबाल मलनगामी दी आवाज़ बिच सुनदे हां ए गीत कलाम है मजरू मलनगामी दा।

जी सामीन, सैयद मोहम्मद इकबाल मलंगामी पेश कर रहा से गीत, ते इस दे नाल ही अस दे अज दे पहाड़ी प्रोग्राम दा वेला भी मुकम्मल हो गया। अपने मेज़बान ख्वाजा परवेज़ और प्रोड्यूसर मारूफुल निसा जी को कल 4 बजे तुनी दे इजाज़त। अल्लाह बेली।

0: समय अभी आप पहाड़ी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर है, 4:20 हो रहे हैं। आइए पहाड़ी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, पहाड़ी खबरनामा किन का में हाँ लियाकत अब्बास। पहले पेश हैं कुछ खास खबरों दिया सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन समाज को मंशियात दिलाने से पाक करने का दोहराया अजम। कुपवाड़ा बीच मंशियात मुखालफ पद यात्रा बीच की शिरकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन त्रेगाम कुपवाड़ा बीच लड़ सारे तरक्याती प्रोजेक्टा को कीता कौम देना वक्फ। आखिया सरहदी ग्रां की मजमू तरक्की इंतजामिया दी है अवलीन तरजीह। जम्मू कश्मीर भी कुड़ियों को बाख्तियार बनाने का सफर है जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन ग्राई तरक्की महकमे तय जेके RLM के इकदाम की की तारीफ। और IPL क्रिकेट के बिच अज रायपुर बिच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का टाकरा उसी कोलकाता नाइट राइडर्स ने। हूँ खबर तफसील नाल सुनो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आखे जे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के 32 ध्याड़ियों बिच सिविल इंतजामिया और पुलिस हूँ पूरे ड्रग स्मगलिंग के निजाम को जड़ थी मुकाने वास्ते जरूरी इकदाम किए। तो मंशियात के खिलाफ तहरीक हूँ एक इनकलाबी सूरत इख्तियार कर रही है। कुपवाड़ा बच्चे अज मंशियात मुखालफ पद यात्रा को चांडी दस का विद्या करने के बाद खिताब करद LG सुनाखे जो मंशियात के खिलाफ जंग लम्मी है। उन्हें सुनाखे जे दाइया तोनी जम्मू कश्मीर सुन मंशियात है दहशत पसंदी को कनी कनी खतरे की नज़र थी देखे गया। लेकिन दो मसले होने के बावजूद एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्हें सुनाखे जे ड्रग स्मगलरों के खिलाफ अगरचे डाढ़ी कार्रवाई करने की लड़ है तहम इस बिदत बिच फंसे दे लोगों नाल हमदर्दी का रवैया भी इख्तियार करने की लड़ है।
2: मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि नशा विरोधी अभियान में आप भी जुटिए और जिन लोगों ने नारको पहले खड़ा किया है, 6 साल पहले उनके पास भोजन नहीं था, आज उनके माल खड़े हैं, पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आपको भी अगर कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को प्रशासन को दीजिए। हम आपको भरोसा देते हैं किसी नशे नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा, उसे कानून के दायरे में ला करके कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और जो हमारे युवा साथी गलती से नशे के लत में आ गए उनके साथ पूरा प्रशासन संवेदना के साथ सहानुभूति के साथ उनकी काउंसलिंग, उनका इलाज और उनका पूरी तरह रिहेबिलिटेशन कराने का जिम्मा जम्मू कश्मीर प्रशासन का है।
1: उस मौके तक LG सुन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जंगलों के महकमे के कुपवाड़ा फॉरेस्ट लीग ते यूथ सर्विसेज ते स्पोर्ट्स दियां वॉलीबॉल शिप दियां ट्रॉफियां भी नकाब कुशाई की। मंशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दा सुनिया।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत ही दूर रखने वास्ते किए जुड़े इकदाम बारे एक मारूफ कलमकार बशीर अहमद बस हूँ आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल करदे आख्या।

0: दौर में हमारी नौजवान नस्ल कई नशीली आदतों में मुलव्वस होते जा रहे हैं, जिनसे न सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है बल्कि वो अपने वालिदैन को भी परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन वालिदैन पर भी ये फर्ज आयद हो जाता है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी सोहबत पर नजर रखें, और हर एक शख्स पे ये फर्ज आयद होता है कि वो इस नशीली आदत को काबू पाने में अपना ताउन बराबर जारी रखे।
1: पीडीपी दे सीनियर लीडर ते एमएलए पुलवामा वहीद रहमान परा सुन जम्मू कश्मीर विच मनशियात दे कारोबार ते इस दे इस्तेमाल दे तालुक नाल अपनी डूंगी तशवीश जाहिर कीती है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को मिले एक सोशल मीडिया पोस्ट दा समाजी बहबूदी मरकजी वजारत दा हवाला देंदिया उन्होंने सुन आखिया जम्मू कश्मीर विच लगभग 5.5 लाख नफर इस दा इस्तेमाल करते हैं, जबकि 1,70,000 नफर नशे आलियां दवाइयां ते लगभग 1.5 लाख नफर चरस का इस्तेमाल करते हैं। वहीद रहमान परा सुनाखे इस लत बिच पे नफरों को कार्रवाई का निशाना बनाना मसले दाल नहीं बल्कि ड्रग समगलों का इसका कारोबार करने वाले के खिलाफ डाढ़ी कार्रवाई करने की लड़ है। उन्होंने सुनाखे जे डाढ़ी नतीजे हासिल करने वास्ते अलामत के बदले इस संगीन मसले को असल जड़ों ही मुकाना उसी पद यात्रा भी शिरकत करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन कुपवाड़ा बीच वाइब्रेंट विलेज त्रेगाम का दौरा करके उत्थ लड़ सारे तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया तो कुछ एक बटा भी लाया। उन्होंने सुन लोगों के तरक्याती मसलों तो जरूरतों का भी जायजा किया। तकरीर नाल खिताब करदे लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन आखे जे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत बिच मरकजी सरकार सरहदी इलाकों की तेज तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद है। उन्होंने सुन आखे जे हर एक ग्रां को चंगे सड़क रबते नवे तरज के स्कूल और नौजवानों वास्ते बराबरी के मौके देने तर
2: जम्मू कश्मीर प्रशासन का पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि त्रेगाम तथा अन्य 15 वाइब्रेंट विलेजेस के में हर सरकारी योजना का 100% सिचुएशन हो जाए, हर सरकारी योजना का हर पात्र व्यक्ति हर घर तक हर परिवार तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित प्रशासन कर रहा है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिक दायित्व का हमारा होना चाहिए कि समाज का हर वर्ग केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर प्रशासन योजनाओं का लाभ इन गाँव में पा सके। कुपवाड़ा में वाइब्रेंट विलेज का कोई परिवार न छूटे इसकी कार्य योजना जिला प्रशासन ने बनाई है। हमारे सभी सीनियर अफसरान अपने अपने डिपार्टमेंट के कामों का भी रिव्यू करके इन्हें सिचुएट कराएंगे। लाइवलीहुड जनरेशन के लिए भी जिला प्रशासन ने बहुत ही सराहनीय पहल यहाँ प्रारंभ की है।
1: ग्राएं तरक्की महकमा ते जे एंड के रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर की कुड़ियों की जिंदगी भी बेहतरी आने ते इन्हें वास्ते रोजगार के मौके पैदा करने वास्ते लड़सर इकदाम कर रहे हैं। इन्हें महकमे सुन यूटी दियां 8,10,000 कुड़ियों को मुतहर कर 96,000 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ाकर इन्हों को 3,106 करोड़ रुपये के बैंक कर्जे भी दिते। इतलात के मुताबिक लखपति दीदी पहल के तहत साल बिच 1,00,000 रुपये की आमदन हासिल करने वाली कुड़ियों की तादाद 2,30,000 से ज़्यादा हो गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन इस अहम पेशरफ वास्ते उन्होंने दोनों महकमे को मुबारकबाद दी है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान सुन भी कुड़ियों को बाख्तियार बनाने तो इन्हों की शमूलियाती तरक्की को यकीनी बनाने वास्ते जम्मू कश्मीर हुकूमत कोशिशों की तारीफ की है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरूस ने आज श्रीनगर बिच बड़शाह पुल का दौरा करके उत्था इसकी दीवारबंदी के इम्कान का जायजा किया। बाद भी मीडिया नाल गल करदे उन्होंने सुना आखे जे इस पुल के नाल नाल कमरवारी बिच हाल ही बिच मुकम्मल किए गए पुल की दीवारबंदी का काम तावलियां ही शुरू किए गए।
3: पिछले कुछ दिनों में देखा होगा आप लोगों ने कि जो बड़शाह ब्रिज है वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसपे लोगों ने यहाँ से जो पानी में है कूदने की कोशिश की। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स फ्रॉम पुलिस दैट वी हैव रिसीव्ड कि यहाँ पे एक ऐसा वल्नरेबल पॉइंट बन गया है जहाँ पे अटेम्प्टेड सुसाइड करने की कोशिश बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज हम अपनी टीम के साथ हमारे RNB के SC एक्जियन साहब, हमारे CPO साहब, हमारी रेवेन्यू KDC साहब, हम सब मिलकर ये देखना चाह रहे थे कि कितना जल्द बड़शाह ब्रिज को भी फेंस कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द RNB इस पे अपना काम शुरू कर ले। इसी तरीके से जो हमारा सीमेंट ब्रिज नूरजहां ब्रिज जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था वहाँ से भी सिमिलर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है। इसके बाद हम वहाँ पे भी एक साइट विजिट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको भी एस्थेटिकली हम फेंस करें।
1: जम्मू कश्मीर हज कमेटी के जेरे निगरानी हज हाउस प्रेसिडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट सुन UPSC ते JKPSC इम्तिहान वास्ते तैयारी करने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की कोचिंग वास्ते दरखास्त मंगी हैं। दरखास्त ऑफलाइन मूड के जरिए अज यानी 13 मई थी 22 मई तोड़ी जमा कराई जा सकती हैं। दाखिला इम्तिहान 5 मई को उसी और दाखिले का अमल 8 जून तोड़ी मुकम्मल किए गए। यह गल काबिल जिक्र है जो इस इदारे बिच कोचिंग वास्ते 50 सीटा रखी गई हैं। चीफ सैकटरी अटल डुल्लू सुन आखे जम्मू कश्मीर सुन PM जन आरोग्य योजना को अमलाने तो इसके फायदे मुस्तक नफरत तोड़ी पहुँचाए भी।

0: गैर मामूली कारकरदगी का मुजाहरा किया है। श्रीनगर में स्टेट हेल्थ एजेंसी की गवर्निंग कौंसल मीटिंग के दौरान उन्होंने स्कीम की अमलावरी में और शफाफियत आने और रुके पे मामलों का हल ढूंढने की हिदायत दी। दी कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन सुन एक प्रेस बयान में आखे जे वादी के मुई सारे इलाकों में हाल ही हुई बारिशा एंड तेज हवावान थी मेवा सनत को मुई ज्यादा नुकसान होया। इस बारे यूनियन सुन लेफ्टिनेंट गवर्नर तफजरे आला थे अपील की जे जम्मू कश्मीर के बागबानी शोबे वास्ते क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम शुरू किए जुलनी चाहिए। इसके अलावा मार्केट इंटरवेंशन स्कीम दोबारा मुतारफ किए जुलने की लड़ है और इसके नाल नाल बागबानी और बाग मालकों को हुए नुकसान का पूरा पूरा मुआवजा दिता जुलना चाहिए। मरकजी सरकार ने सोने के दुई कीमती दातों की दरामदी डिप्टी भी वादा किया है। मालियात की मरकजी वजारत के एक बयान के मुताबिक सोने ते चांदी की दरामद डिप्टी में 5% वादा किया गया है। नवी शरह इतनी लागू हो गई हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE सुन 12वीं जमात के इम्तिहान के नतीजे का अज ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 17,68,000 गदरे ते गजियां शामिल हुई जिन्हों 15,70,000 गदरे ते गजियां कामयाब हुई। इस तरह कामयाब हुए उम्मीदवारों की शरह 85.20% रही है। इस दे नाल ही पहाड़ी खबरनामा मुक गया। अस्ता अगला खबरनामा 5:50 का गोजी जबान भी नशो सी। देव इजाजत, खुदा हाफिज।
1: ये चा आकाशवाणी श्रीनगर समीन मोहतरम जोर मजीद 30 मिनट सा पैदे पेश खदमत छुछा करते रहो। पेश करन गुलाम मोहम्मद गनाई सनल दिए हैं से थी कलामी न्याम साहब।

सजनो, नशो इंसान का सिर्फ अंदर ही ना नहीं तबाह कर दो, बल्कि उसका किरदार ना ख़त्म कर छोड़ा है, उसकी शख्सियत ना यो उथड़ पुथड़ कर छोड़ा है, उसकी इनफरादियत ना ख़त्म कर छोड़ा है, उसका इरादा ना कमज़ोर कर छोड़ा है, उसका हौसला ना पस्त कर छोड़ा है, और उसकी सेहत ना बर्बाद कर छोड़ा है। इस करके नशा मुक्त भारत का इस मुहिम वो हिस्सों बन गया है, नशा ते दूर हो गया, मजबूत भारत, कामयाब भारत, शिष्ट भारत और विकसित भारत वाली बखी हमने जान की लोड़ है। ते अगे इस तरह करा सजनों के शशि चोपड़ा की आवाज़ में एक गज़ल सुन लिया।

इसके नाल ही गोजरी प्रोग्राम वालों मुकर नाव है। गोजरी प्रोग्राम का प्रोड्यूसर है वसीम फारूक वानी, अपना मेजबान अल्ताफ निजामी ना। अगली मुलाकात तुड़ी दो इजाजत, चलना जी फिर, रब रखो।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीर आपको बताते चलें कि आज शब के 9:30 पर प्रोग्राम समाप्त करें सुन फनकार। प्रोग्राम के आज के मेहमान हैं मौसीकार और गुलकार मुनीर अहमद मीर। उनसे हम कलाम होंगे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और मेज़बान गुलाम रसूल आखुन। समीन शब के 10:00 उर्दू गज़लों से तरतीब दिया हुआ फ़ोन इन प्रोग्राम समाप्त करें। हेलो महफ़िल ग़ज़ल।

0: اگلو خبرنامو آکاشوانی سرینگر تے شام 6:05 پر کشمیری وانا شرویگو دیو سامین اجازت خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سرینگر ہے. سمیرا جی آپ کو لیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی کے اسٹوڈیوز ہندی خبروں کے لیے. رلے کا بس ذرا سا انتظار.
2: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है.
3: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से. और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT.
2: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

0: पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये छा आकाशवाणी श्रीनगर, समय मोहतरम 6:05 पेश खदमत प्रोग्राम गर्मी बाइन खतरा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: इकबाल सब खबर आत रही बोज।
9: बिल्कुल सन बोजन वाल तुम सान प्रोग्राम शू
8: नज तुम नयर ये प्रोग्राम तुम्हें वनान कि तुम क्या करो क्या ना करो, तो तिज कथ्स लोल भरान तिज कथ मठ मठ कर।
9: सिलसिल करो क्या कल ब्रो शुरू बनाओ ये प्रोग्राम बापत ई मेल हन ये तुम पी राय पीन शिकायत अम वन हूँ सू ई मेल हन कर एक लट नोट तो अम वन पी ई मेल ID GBHKAIR@gmail.com।
8: तो ये ईमेल क्या आमुत दौलत पोरा क्रीरी बारामुला पेठ लेखन वाल अब्दुल रशीद गुलाम रसूल तो मोहम्मद इब्राहिम इम लेखान दबान अस वत कोहिनूर क्रिकेट ग्राउंड दौलत पोरा मे अत वत खसान अतुक अड़सी वत बंड मगर इस ब्रो कुन वत खसान बराबर ग्राउंडस तान इस ब्या महल तकन द्रामुत या अप पूरे गामक बाग तो मगर इस वत की सुकड़ आम तो इस हेर ग्राउंड पे रुदव वसान सू तम वत नस्बत छलित वजम कुर आला हुकाम लट अपील गई BDO वागूरह तो MLA वागूरह क्रीरी तम त्र चिट मगर अख वरी गो व्यक तय आई ना कहें कारवाई कर। हाल हाल कुर MLA सबन गामुक दौर तो तथा दुन आश्वासन कि नबाड़स तहत ई वत अत ई बंड दिन तो ई वत ई बराबर कर बराबर ग्राउंडस तय मगर तथ पे गई नहीं अमल
9: पे ये प्रोग्राम के वसादत आला हुकाम या हाकिम अत सबस्त अत महकम सीन गुजारिश जमे इलाक दीरीन मांग ग पूरी कर तेज वह सड़क आमद रफ्त जरिए तो तुम फरमा अत इलाक अप बाग या वत पकुन आसान इंसान यम सात अमिस वत सोद आह वह कर पगह गाड़ खाल और या रेड खाल या पैदल इंसान
8: इकबाल सब ये परन कुन जाए हमें इंसान दपा आब तकान तौर वात बिजली तकान तौर वात सड़क
9: बिल्कुल बिल्कुल बाबा सब तो आज बुधवार
8: बुधवार दिन ब्या मजलिस थाना जारी पे नवनिहाल महफिल फलवन टूरी।

0: कोई अमली कदम उठाए और गवर्नमेंट की तरफ से, सुकास्ट की तरफ से, मणिपुर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की तरफ से एक टीम जानी चाहिए, वो एसेस करे कितना नुकसान है और अगर इसमें कोई बचने की थोड़ी सी उम्मीद है वो सुकास्ट वाले तजवीज करें कौन सी दवाई लगनी, क्या करना, क्या करना चाहिए। तो इसकी तरफ गवर्नमेंट को फौरी तौर की बुनियादों पर अभी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और जो हमारी गुजारिश है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, MI स्कीम और क्रॉप इंश्योरेंस, ये फौरी तौर लागू होना चाहिए, वरना यहाँ की ये जो इंडस्ट्री है बहुत हर साल इसमें इसी की वजह से नुकसान हो रहे हैं। इसकी तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। सबसे बड़ा सेक्टर है जो गाड़ी हमारी वासी कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है और GDP में एक खासा रोल है और हम लाखों लोगों को रोजगार फराहम करते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह होनी चाहिए, यहाँ बागवानी का जो शोभा है, हॉर्टिकल्चर का शोभा, इसकी तरफ खसूसी तवज्जो होनी चाहिए। अगर जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हमने क्रॉप इंश्योरेंस के लिए रकम मुख्तस की है बजट इजलास में, मगर अभी तक उस पर अमली कदम नहीं है, उसमें कोई तैयारी की गई तो अभी इसको लागू की गई, इसकी तरह हम गवर्नमेंट से फिर एक बार इंतजार करेंगे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम और MI स्कीम पूरी तौर लागू किया जाए और जहाँ ये जालाबारी हुए वहाँ अफसरों का हमारे मिनिस्टर साहब खुद जाए बुझाते खुद देखे कितना नुकसान है।
1: ये थे जम्मू कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद बशीर। दरियासिना वादी के साथ साथ जम्मू के बाज़ इलाकों में गुज़श्ता रोज से हो रही जलाबारी, तेज आंधी और बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शहरबीन को बताया कि महकमे ने इसकी पहले ही पेशगोई कर रखी थी, जबकि 15 और 16 मई के साथ साथ 18 और 19 मई को भी हवा में दबाव पैदा होने के बायस वादी के कई इलाकों में तेज आंधी चलने और जलाबारी की उम्मीद की जा सकती है, जबकि बाज़ अज़ला में बारिश का भी इम्कान है।
2: जैसे एक्सपेक्टेड था 11-12 मई के आसपास बारिशें हुई, थंडर स्टॉर्म, गस्ती विंड्स और उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म के इंसिडेंट्स भी जो है रिपोर्ट किए गए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, खासकर कल दोपहर से, और आज भी मौसम अबरालुद बना हुआ है। कुछ एक पॉकेट्स के अंदर हेल स्टॉर्म के चांसेस फिर से हैं और गस्ती विंड्स के साथ साथ थंडर लाइटनिंग की भी पॉसिबिलिटी है, और आने वाले दिनों में खासकर अभी 15-16 के आसपास फिर से WD अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण एक बार फिर थंडर स्टॉर्म, गस्ती विंड्स और बारिशें होंगी, खासकर यहाँ वैली के अंदर और जम्मू के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अदर, और हेल स्टॉर्म के भी जो है काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो कमिंग डेज में खासकर अभी 15-16 के आसपास मौसम जो है थोड़ा सा अबरालुद रहने के चांसेस हैं, हल्की बारिशों के साथ थोड़े से हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है, और उसके बाद फिर आने वाले दिनों में 19-20 के आसपास भी एक फीबल WD है, तो हल्की बारिशों के साथ थंडर गस्टिंग से रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो है कोई ऐसे मेजर रेनफॉल या कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी ऐसा कोई फोकस नहीं है, तो मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस है।
1: ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। अब एक और मौसम। सविन अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क्यादत वाली हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत का हेडक्वार्टर मैराथन ट्रैक्स और गुलमर्ग की सिकी डलवानों के दरमियान कहीं वाकया है। इत्तला के मुताबिक सुनील शर्मा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ अशराफिया के मफादात का तहफ्फुज़ कर रही है, जबकि आम आवाम के मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सहूलियात की कमी है, सड़कों की हालत खराब है और आवाम को मुफ्त बिजली के बजाय भारी बिलों का सामना करना पड़ रहा है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि BJP जम्मू कश्मीर की सियासी हकीकतों से नावाकिफ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम की पहली पसंद रही है। उन्होंने कहा कि वो सुनील शर्मा को कॉफी पेश करके याद दिलाना चाहेंगे कि यहाँ की सियासत आसाम से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी मैंडेट से इक्तदार में आई है और आइंदे इंतखाबात के बाद भी दोबारा हुकूमत बनाएगी। तनवीर सादिक ने अपोजिशन की जानिब से बैकडोर तकर्रियों और बदउनवानियों के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए नाकदीन को सबूत पेश करने का चैलेंज दिया। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से, इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: एक बार ट्राई करके तो देख, तू डरता है? कुछ नहीं होता, किसी को पता नहीं चलेगा।
5: नशा किसी भी तरह का हो, एक बार इसकी लत लग जाए तो इतनी आसानी से नहीं छूटती। नशा सिर्फ आपका जीवन ही बर्बाद नहीं करता, बल्कि ये आपके परिवार, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल, आपके फ्यूचर को अंधकार में ले जाएगा।
6: क्यों? सुन के डर लगा ना? अभी भी देर नहीं हुई है, आप अब भी नशे को छोड़ सकते हैं और जिंदगी से फिर से अपना

0: ता जोड़ सकते हैं। से बाय बाय टू ड्रग्स एंड हाई टू गुड लाइफ।
1: तो आइए आज से हम सब मिलकर खुद को, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को, अपने जिले, अपनी यूटी को नशा मुक्त बनाने का प्रण लें और इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना योगदान दें।
0: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समय जम्मू कश्मीर कौंसल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने साल 2026-27 के लिए मुख्तलिफ अहम असेंबली कमेटियों की तश्कील से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी की हैं। स्पीकर अब्दुलरहीम राते ने मुख्तलिफ माली और मौजूदाती कमेटियों के लिए अराकीन नामजद किए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन सुरजीत सिंह सलाथिया मुकर्रर किए गए हैं, जबकि अंदाजा जाती कमेटी के सरबराह नजीर अहमद खान गुरेजी होंगे। इसी तरह पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के चेयरमैन सैफुल्ला मीर होंगे, जबकि माहौलियाती कमेटी की कयादत सीनियर सीपीएम लीडर मोहम्मद यूसुफ तारीगामी करेंगे। असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ये कमेटियां काउंसलर्स असेंबली के कवायद जवाबित के तहत तश्कील दी गई हैं। समय जम्मू कश्मीर में बकरवाल तबके से वाबस्ता लोग मौसम बदलने के साथ ही अपनी चरागाहें भी बदलते हैं और ये रिवायत सदियों से जारी है। इस साल मौसमी हालात, बेवक्त की बारिश, बर्फबारी और मुगल रोड बंद होने के बायस इन चरवाहों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये चरवाहे जम्मू खत्ते के मुख्तलिफ इलाकों से जब वादी का सफर बांधते हैं तो मखसूस दिनों के लिए राशन और जरूरियात की चीजें साथ रखते हैं। चंद बरस कबल तक उन्हें रास्ते में ही गजाई अजना सरकार की तरफ से फराहम की जाती थी, मगर अब ये रिवायत भी बंद कर दी गई है, जबकि मौसमी हालात के बायस उन्हें पुरखतर इलाकों में कई कई दिन तक रुकना पड़ता है, जिससे जानवर भी बाज़ाओकात हलाक हो जाते हैं। एक रिपोर्ट केडी मेनी से।
3: इस बरस 2 अप्रैल और मई में मौसम के बदलते हुए तेवरों के बायस पीर पंचाल के आर पार बेवक्ती बर्फबारी, बारिशों और तूफान की वजह से बकरवाल कबायल के रवायती काफले बार बार रद्द में आ रहे हैं। कई जगह ठंड, कोहरे और यालाबारी ने उन्हें आग दबोचा है, जिसकी वजह से देर चिराग इलाकों में रेवड़ बीमार हो रहे हैं, खाने के लिए चारा नहीं मिल रहा और सर छिपाने के लिए पनाहगाहें दस्तियाब नहीं है, जिसकी वजह से भेड़ बकरियां तल्फ हो जाती हैं, बीमार हो रही हैं और या फिर जख्मी हो रही हैं। ऐसे वक्त में सबसे बड़ी मुश्किल रेवड़ू के लिए चारे की होती है, क्योंकि चिट्टा पानी से लाल गुलाम तक कहीं भी चारा दस्तियाब नहीं होता, ना ही पनाहगाहें हासिल होती हैं और अक्सर बर्फबारी और तूफान में ऐसी जगहों में दरमांदा कबाइल और उनके रेवड़ जानी और माली नुकसान उठा रहे हैं। राजौरी के एक ऐसे ही काफले के सरदार इलमदीन ने शहरदीन को बताया कि आज से 4 बरस कबल ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए महकमा कबायली अमूर की जानब से रेवड़ू को मखसूस इलाकों से गाड़ियों में ले जाकर डोकू तक पहुंचाया जाता था, जिसके बायस ये कबायल रेवड़ू के साथ 1 या 2 दिन में मंजिल तक पहुंच जाते थे, मगर पिछले 2 बरस से कबायल को मिलने वाली इस सहूलत को वापस ले लिया गया था, क्योंकि उनकी सदियों पुरानी रवायती पहचान को के खत्म होने का अंदेशा था और इसके बजाय कबाइल को ढोकू और मरगू में सोलर लाइट, टर्पोलीन और टेंट वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी में राहत लाई जा सके। इन हालात में कबाइल का मतालबा है कि अगर मौसम ठीक रहे तो काफलों को रवायती तौर पर चलने दिया जाए, लेकिन नासाजगार मौसमी हालात का सामना करने के लिए कबाइल की मदद के लिए खातर खुआ इंतजाम करके रखे जाएं, ताकि दरमांदा कबाइल की बर वक्त मदद हो सके।
2: आपने केडी मेनी की रिपोर्ट सुनी। जमीन कुपवाड़ा में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मुनक्कदा पद यात्रा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज शिरकत की और कहा कि गुज़श्ता 32 दिनों में मनुष्यात स्मगलिंग के नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। उन्होंने बताया कि 730 से जायद मनुष्यात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि करोड़ों की जायदादें जब्त की गई हैं। उन्होंने मनुष्यात के आदि नौजवानों की बाजाबादकारी पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें हमदर्दी और इलाज की जरूरत है। एलजी मनोज सिन्हा के आज के कुपवाड़ा दौरे के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट के साथ फैयाज समीद।
4: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बॉयज हायर सेकेंडरी कुपवाड़ा में हजारों लोगों से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को नशे से आजाद करने के लिए जो मुहिम अप्रैल के माह में शुरू की गई है वो अवाम के ताउन के सबब अब तहरीक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन के सबब इस गैर कानूनी काम में मुलवस अफराद अब बेनकाब भी हो रहे हैं और गिरफ्तार भी हो रहे हैं। لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ گزشتہ

0: 30 दिनों से जो यलगार पुलिस और सिविल इंतजामिया ने इस धंधे में मुलस अफराद पर की है, उसने उनकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि इन 32 दिनों में इस गिरोह ने जुर्म में मुलवस 730 अफराद को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि साला साल से दहशतगर्दी और मंशात को दो जुर्मों में बांट दिया जाता था, लेकिन ये हकीकत नहीं है। असल में ये एक सांप के दो सिर है, एक सिर से पैसा कमाया जाता है और दूसरे सिर से इसी मंशात के पैसों से हासिल होने वाले पैसे से यहाँ के लोगों का कत्ल किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साथ ही कहा कि जो कार्रवाइयां एक महीने कबल इन अफराद के खिलाफ शुरू की गई, उन कार्रवाइयों में आने वाले दिनों में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और दीगर हिफाजती एजेंसियों को हिदायत दी गई है कि किसी बेगुनाह को छेड़ना नहीं है और किसी भी गुनाहगार को छोड़ना नहीं है।
1: जम्मू कश्मीर अभियान तीन मुख्य फ्रंट पर फोकस करेगा। पहला है ड्रग्स के सप्लाई चेन पर प्रहार, कश्मीर घाटी और विशेष रूप से कुपवाड़ा पुलिस को इसके लिए विशेष मेहनत करनी है। इस कार्यक्रम में जनता का जो सहयोग मिल रहा है, मैं आभारी हूँ, आत्मविभोर हूँ। मैं कुपवाड़ा के हर नागरिक से, हर राजनीतिक नेता से, हर धार्मिक नेता से, सिविल सोसाइटी के हर मेंबर से, हर प्रिंसिपल से, हर टीचर से, हर बुजुर्ग से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की आस्थान बनिए।
0: हायर सेकेंडरी से लेफ्टिनेंट गवर्नर पैदल बाईपास के रास्ते से होते हुए बुर्गीपोरा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने नशे से पाक कुपवाड़ा बनाने के लिए दस्तखत मुहिम का आगाज किया। रिगीपोरा से लेफ्टिनेंट गवर्नर त्रैगाम पहुंचे, जहां उन्होंने कई तामीराती प्रोजेक्टों का इब्तिदा किया। आज की तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा एमएलए कुपवाड़ा फयाज अहमद मीर, एमएलए त्रैगाम मीर सैफला, एमएलए लोलाब कैसर जमशीद लोन, एमएलए करना जवेद अहमद मिर्जा और एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन भी मौजूद थे।
2: ये थे कुपवाड़ा से फयाज हमीद। इधर नशा मुक्त अभियान के तहत आज किश्तवाड़ में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के जेरी निगरानी चल रहे नर्सिंग कॉलेज की तालिबात ने मनुष्यात के खिलाफ बेदारी रैली निकाली। रैली के दौरान तालिबात ने नशा मुखालिफ नारे बुलंद किए और शहर के मुख्तलिफ बाजारों का गश्त करते हुए अवाम में बेदारी पैदा करने की कोशिश की। इस दौरान नशा मुक्त अभियान के सिलसिले में आज त्राल के एक स्कूल में एक आगाही प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। प्रोग्राम का एहतमाम म्यूनिसिपल कमेटी त्राल, पुलिस और इंतजामिया के इश्तराक से किया गया था। इस मौके पर सीनियर सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक त्राली, महकमा पुलिस के अफसरान, आशा वर्कर्स और तलबा तलबात की खासी तादाद ने तकरीब में शमूलियत की। मुकर्ररीन ने इन मनशियात के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सभी शोपियां से मौसला इत्तलात के मुताबिक जिले के सरकारी स्कूलों में गुजशत चंद बरसों से इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बेहतरी रोनमा हुई है और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत बेशतर स्कूलों में जदीद सहूलियात दस्तियाब कराई गई है। अलबत्ता जिले के दर्जन स्कूलों में प्रिंसिपल और साथी जड़ियूज की कुर्सियां आज भी खाली पड़ी हैं। फयाज वानी की रिपोर्ट।
0: जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले की सरजमीन, जहां कभी तालीबी सहूलियात की कमी, दूर दराज इलाकों में स्कूलों तक महदूद रसाई और मौसमी नकली मकामी जैसे मसाइल बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की राह में बड़ी रुकावट समझी जाती थी, लेकिन आज वही जिला जदीद तालीम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शमूलियती तालीमी निजाम के सारे तरक्की की राह पर गामजन है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले में गुजशतर चंद बरसों के दौरान तालीमी मैदान में नुमाया तब्दीली देखने को मिली, जहां अब रवायती दर्स तदरीस की जगह स्मार्ट क्लासरूम, आईटी बेस्ट लर्निंग और जदीद सहूलियात ने लेना शुरू कर दिया है। तारीखी तौर पर शोपियां में तालीम का सफर कई नशीब फराज से गुजरा है और एक वक्त था जब जिले के बुनियादी तालीमी ढांचे में बहुत ही खामियां पाई जा रही थी। तमाम वक्त के साथ साथ तालीमी शोर में इजाफा हुआ और आज शोपियां को शराखानदगी में नुमाया बेहतरी के साथ एक उभरते हुए तालीमी जिले के तौर पर देखा जा रहा है। माली साल 2025-2026 के दौरान महकमे स्कूली तालीम और समग्रा शिक्षा की जानिब से शुरू की गई इकदाम ने जिले के तालीमी मंजरनामे को एक नई सिमत दी है और सरकारी जराय से शहरबीन को मिली तफसलात के मुताबिक कि जिले में 42 स्कूलों को स्मार्ट क्लास स्कूल मनसूबे के तहत जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया, जबकि मजीद 25 स्कूलों में तकरीबन 45 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट क्लासरूम कायम किए गए हैं और इन इदारों में स्मार्ट बोर्ड्स, कंप्यूटर लैब्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद तदरीसी आलात फराहम किए गए हैं ताकि तलबा को टेक्नोलॉजी से हमांग मयारी तालीम मयसर हो सके। राय ने बताया कि इसी सिलसिले में 74 स्मार्ट स्टडीज की तनसीब भी अमल में लाई गई, جس کا مقصد جدید تدریسی مواد اور ڈیجیٹل لرننگ کو فروغ دینا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ بنیادی تعلیم کے شعبے میں بھی

0: जमा कराई जा सकती हैं। दाखला इम्तिहान 25 मई को होगा और दाखिले का अमल 8 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। ये बात काबिले जिक्र है कि मजकूर इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए 50 नशस्तें दस्तियाब हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं जमात के इम्तिहान के नतज का ऐलान किया। तफसलात के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 17,68,000 तलबा शामिल हुए, जिनमें से 15,07,000 तलबा कामयाब करार दिए गए और यूं कामयाब उम्मीदवारों की शरह 85.2% रही। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 10वीं और 12वीं जमात के सालाना प्राइवेट बाई एनुअल 2026 इम्तिहान के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तौसी का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 20 मई मुकर्रर की गई है, जबकि लेट फीस के साथ फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 26 मई मुकर्रर की गई है। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज और कश्मीर वैली थिएटर के इश्तराक से आज अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज बिमना में शेख मोहम्मद हनीफ का तहरीर करदा थिएटर ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट पेश किया गया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब 5:30 पर और गुरूबी आफ्ताब 7:25 पर होगा। के साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन पेश खदमत है तबसरा।
2: समीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं बसारत गुल। जम्मू कश्मीर में नशे से पाक जम्मू कश्मीर मुहिम गुज़श्ता 11 अप्रैल से मुसलसल जारी है और गुज़श्ता रोज इस मुहिम का एक माह मुकम्मल हो गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के अलावा वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में पद यात्रा और अवामी बेदारी प्रोग्रामों में शिरकत की, जिसने रफ्ता रफ्ता एक सरकारी मुहिम से बढ़कर अवामी तहरीक की सूरत अख्तियार कर ली है। ये इस हकीकत का सबूत है कि मनुष्यात के खिलाफ जंग सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की मुश्तरक जिम्मेदारी है। समीन, मनुष्यात आज के दौर में नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के लिए एक संगीन खतरा बन चुकी है। बेरोजगारी, जहनी दबाव, समाजी बेचैनी और गलत सोहबत जैसे अवामिल नौजवानों को इस दलदल की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसे हालात में अगर हुकूमत अवाम को साथ लेकर बेदारी मुहिम चलाती है तो इसके मुस्बत नतायज सामने आना फितरी अमर है। जम्मू कश्मीर में जारी ये मुहिम इसी शोर की एक मजबूत मिसाल बनकर उभर रही है। गुज़श्ता 31 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर भर में हजारों अवामी रसाई तकरीबात का इनेकाद किया गया, जो इस मुहिम की वसत और संजीदगी को जाहिर करता है। इसी अरसे में 44,000 से जायद OPD मरीजों का इलाज किया गया। तकरीबन 700 मुनशियात फरोशों और स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुनशियात की सप्लाई चेन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई गई। ये एदाद शुमार वाजा करते हैं कि इंतजामिया महज नारों तक महदूद नहीं बल्कि अमली सतह पर भी मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की यह हिदायत नहायत अहम और बर वक्त है कि अगले 69 दिनों में जम्मू कश्मीर के हर स्कूल, कॉलेज और इबादत गाह में मुनशियात के मौजू पर हफ्तावार फैमिली डायलॉग मुनाकिद किए जाए। दरअसल मुनशियात के खात्मे के लिए सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारे काफी नहीं होते बल्कि घर, तालीमी इदारे और मजहबी मराकज भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। वालदेन, असातिजा, उल्मा और समाजी कारकुन अगर नौजवानों के साथ मुसलसल मुकालमा जारी रखे तो कई जिंदगियां तबाही से बचाई जा सकती है। जरूरत इस बात की है कि इस मुहिम को वक्ती सरगर्मी तक महदूद न रखा जाए बल्कि इसे मुस्तकिल समाजी तहरीक बनाया जाए। नौजवानों को खेल, तालीम, हुनर और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करना वक्त की अहम जरूरत है। तबसरा खत्म हुआ। शब खैर।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
4: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 PM.

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन, डिजिटल दौर में मालूमात तक रसाई पहले से कई ज्यादा आसान हो चुकी है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल जराए अबलाग ने खबरों और मालूमात के फैलाव को इंतहाई तेज कर दिया है। ताहम इसी तेजी के साथ फेक न्यूज या झूठी खबरों का मसला भी एक संगीन समाजी बहरान बन चुका है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेक न्यूज न सिर्फ अवामी शऊर को मुतासर कर रही है बल्कि माशरती हम आहंगी, सियासी इस्तेहकाम और इज्तिमाई सोच पर भी गहरे असरात मुरतब कर रही है। फेक न्यूज के फैलाव की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल है। आज हर फर्द मालूमात फैलाने का जरिया बन चुका है, मगर अक्सर लोग बगैर तहकीक या तस्दीक के खबरें शेयर कर देते हैं। इसके नतीजे में छोटी या गुमराहकुन मालूमात तेजी से अवाम तक पहुंचती है और हकीकत और अफवाह के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सामिन, सियासी और नजरियाती तकसीम भी फेक न्यूज के फरोग में अहम किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ ग्रोह अपनी हिमायत या मुखालफीन को नुकसान पहुँचाने के

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समिन शहरी सकाफत और समाजी तन्हाई का रुझान जदीद शहरी जिंदगी ने इंसान को बेशुमार सहूलियात, तरक्की के मौके और तेज रफ्तार तर्ज जिंदगी फराहम किया है, मगर इस तरक्की के साथ कई समाजी मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े शहरों में तेजी से बदलती हुई शहरी सकाफत ने जहां रहन सहन और तर्ज फिक्र को मुतासर किया है, वहीं समाजी तन्हाई का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा मुआशरा जो कभी मजबूत समाजी रवाबित, खानदानी कुर्बत और इज्तिमाई जिंदगी के लिए जाना जाता था, अब आहिस्ता आहिस्ता इनफरादी जिंदगी और जज्बाती फासले का शिकार होता दिखाई देता है। शहरी सकाफत की एक नुमाया खसूसियत मसरूफ तर्ज जिंदगी है। बड़े शहरों में लोग रोजगार, तालीम और मौशी जिम्मेदारियों में इस कदर मसरूफ हो जाते हैं कि उनके पास समाजी ताल्लुकात के लिए वक्त कम रह जाता है। इस मुसलसल मसरूफियत के बायस खानदान, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ रवाबित कमजोर होने लगते हैं, जो समाजी तन्हाई को जन्म देता है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने भी इस रुझान को मजीद बढ़ाया है। अगरचे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने रबते आसान बनाए हैं, मगर हकीकी समाजी ताल्लुकात कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में लोग अमली मुलाकातों और गुफ्तगू के बजाय वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा वक्त गुजारने लगे हैं, जिससे जज्बाती कुर्बत और समाजी वाबस्तगी मुतासर हो चुकी है। शहरी जिंदगी में इनफरादियत का बढ़ता हुआ रुझान भी एक अहम अंसर है। जदीद मुआशरे में ज़ाती कामयाबी, निजी जिंदगी और खुद मुख्तारी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिसके नतीजे में इज्तिमाई इकदार कमज़ोर पड़ने लगती है। लोग दूसरों के मसाइल और जज्बात से लातालुक होते जा रहे हैं, जिससे समाजी फासले बढ़ते हैं। खानदानी निज़ाम में तब्दीली भी समाजी तन्हाई के रुझान को तकवीत दे रही है। मुश्तरका खानदानों की जगह छोटे और महदूद खानदानों ने ले ली है, जहां अफराद के दरमियान वक्त और राबता कम होता जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के शहरों में रिहायश की तंगी और महदूद समाजी माहौल भी ताल्लुकात मुतासर कर रही है। मौशी दबाव और

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर के अलावा FM 103.5 MHz पर।

0: लॉट करेंगे, उसका मेंटेनेंस ऑपरेशन उसका जो है जिम्मेवारी किसी को वहाँ पे सौंपेंगे, वो जो कि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, जो वहीं के जगह के लोगों जो उसको गाड़ी को चलाएंगे, घर घर जाके कूड़ा इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद जो है अपने अपने जो साइट्स है वहाँ पे उसको पहले तो सेग्रीगेट करेंगे, सेग्रीगेट करने के बाद जो गीला कचरा है उसको कंपोस्ट पिट में जो है वो डालेंगे एंड उसके बाद जो ड्राई जो प्लास्टिक वेस्ट बच जाएगा उसको प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट में लाके डालेंगे। ये तो हो गई रूरल एरिया की बात। अर्बन एरिया में जैसे आप देखेंगे हमारा म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम का जो लीरो में है वहां पे एक फैसिलिटी है, वहां पे एक 10 टीपीडी का जो ट्रॉम्बेल है, फुल्ली फंक्शनल ट्रॉम्बेल जो है वो एसबीएम जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है उसने जो है डायरेक्टर ने उसको सैंक्शन किए हैं एंड वहां पे जो है वो पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा अगले एक दो महीने में। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो करने के बाद जब वो फंक्शनल हो जाएगा तो म्युनिसिपल काउंसिल का जो पूरा जो कचरा है वो पूरी तरीके से उसमें प्रोसेस हो पाएगा। वहां पे बहुत सारे लीगेसी वेस्ट पड़े हुए हैं उसका जो प्रोसेस करने का भी टेंडर जो है वो सॉलिड स्वच्छ भारत मिशन का जो डायरेक्टरेट है उन्होंने उसका कर रखा है, उसका भी प्रोसेसिंग होगा। उसके अलावा फ्रीसल में हमारा एक जो है फैसिलिटी बनाने का प्रोविजन है जो अभी थोड़ा सा उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजोल्व करने, यारीपुरा में हमारा एक फैसिलिटी बनाने की है। बट जब तक अगर ये धीरे धीरे दूसरे फैसिलिटीज बनेंगे तब तक जो है ये जो अब जो फैसिलिटीज हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं उसको जो है ऑगमेंट करके, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे अर्बन एरिया में हो, जितने फैसिलिटीज बन चुके हैं उनके ऑपरेशनल और उनको फंक्शनल करने पे पहले फोकस किया जाएगा।
1: सर, फरवरी से आप यहाँ पे तैनात है, बहुत से इलाकों का आपने दौरा भी किया, अगर हम अनंतनाग से लेके अहरबल तक या दूसरे जो इलाके हैं आपने वहाँ भी विजिट किया है, लेकिन ये देखा गया है कि जितने भी सड़कें हैं जितने भी रोड्स बनाए गए उन पे सेग्रीगेशन शेड बनाए गए हैं और देखा होगा आपने कूड़ा
0: बिल्कुल वहीं बिल्कुल बिल्कुल
1: उसको साफ करने के लिए और सड़क पे जितनी भी सेग्रीगेशन शेड्स है क्या उनके लिए क्या प्रयोजन रहेगा, क्या वो बंद किए जाएंगे या उनसे जो वहां पे कूड़ा करकट जमा है उन्हें किसी जगह ठिकाना लगाया जाएगा?
0: जितने कूड़ा करकट जमा है इसका डायरेक्शन जो है एसीडी को एंड बीडीओ को जो है क्लियर कट दिया जा चुका है कि जितने कूड़े जमे हैं उनको तो सबसे पहले डिस्पोज करके हमारे डिफरेंट डंपिंग यार्ड्स है जो या लीरो में जो फैसिलिटी है वहां पे पहले उसको क्लियर आउट करना है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास 44 गाड़ियां हैं, 178 पंचायत है, तो टोटल इस तरीके से हम 44 जोन क्रिएट कर सकेंगे और इस 44 जोन में हर जोन में एक गाड़ी, उसके अंदर जो सेग्रीगेशन शेड है उसके अंदर जो कंपोस्ट पिट है वो हम एक किसी को उसको कोई एसएचजी ग्रुप हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकता है, उसको मैनेज करने के लिए देंगे ताकि जो सेग्रीगेशन शेड पे वहां पे भी मैन पावर डिप्लॉय करेंगे जिसकी पूरी जिम्मेवारी होगी कि वहां पे सेग्रीगेशन शेड को चलाना, उसको मेंटेन करना, वहां पे कोई कूड़ा फेंके तो तुरंत उसको सेग्रीगेट करने के लिए जो है इंश्योर करना। तो वो ताकि जो है अभी आप देखेंगे सेग्रीगेशन शेड पे लोग क्यों फेंक देते हैं, क्योंकि वहां कोई मैन पावर नहीं, उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो इसके लिए जो है इस बार गवर्नमेंट ने जो है डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का 10% जो पीआरआई ग्रांट है उसको जो है डेडिकेटेड इस चीज के लिए जो है वो रखा है एंड उससे जो है काफी ज्यादा मदद मिलेगी और अगले एक साल में जो है डेफिनेटली जो है इस चीज में हमें एक फर्क नजर आएगा।
1: सर, आखिर पर लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा सफाई के हवाले से?
0: लोगों के लिए यही संदेश रहेगा कि जब भी आपके घर पे ये कूड़ा कलेक्ट करने के लिए जब कोई भी गाड़ी आए तो वहां पे आप उसको टाइमली दें। आप जो है जब अगर गाड़ी एक बार हमारी ये पूरी सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए तो गाड़ी अगर आने के बाद जो है आप उसको कूड़ा जरूर दें, आप कूड़ा को कहीं अपने तरफ से जो है इधर उधर ना फेंकें। अगर कोई गाड़ी की फ्रीक्वेंसी मान लो दो दिन में एक बार गाड़ी आती है तो उस दो दिन तक अगले दिन जो है जब गाड़ी आए, ऐसा नहीं कि जब गाड़ी नहीं आए तो कूड़े को तब तक फेंक दिए, उस तरह करने से जो है इस तरह की गंदगी फैलती है। मेरा सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हम कूड़े को जो है गाड़ी को ही देने के लिए जो है हम देना की इधर उधर फेंके।
2: समीन स्वच्छ भारत मिशन के मिशन डायरेक्टर दिवांश यादव ने हाल ही में कुलगाम के लिरव इलाके में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का दौरा करके यहां पर हो रहे कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो फुजले को गली कोचों या खुली जगहों पर फेंकने के बजाय उसे मुतय्यन मकामात पर ही डंप करके अपने आस पड़ोस को साफ रखने में हुकूमत को ताउन पेश करें। उन्होंने साथ ही खबरदार किया कि जो लोग कूड़ा करकट को गली कोचों और खुली जगहों में फेंकने के कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: पुराना जो इधर लेगेसी वेस्ट भी पड़ा हुआ है उसका भी हम लोगों ने टेंडर किया हुआ है, तो वो भी 15 जून तक हमारा काम शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है आने वाले एक दो महीने में इस जगह का काफी सारा वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम ठीक हो जाएगा और डीसी साहब भी इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे एसएचजीज बड़ी सारी इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कम्युनिटी की तरफ से भी एक रुझान है कि वेस्ट को लेके हमने एक्शन लेना है और उससे यहाँ का लाइवलीहुड, हेल्थ और

टूरिज्म सब कुछ ही जुड़ा हुआ है। तो सभी लोगों से भी हम लोग अपील करेंगे कि अब जो नए रूल्स आए हैं उसमें तो बाहर में कूड़ा फेंकने पे भी बहुत हैवी पेनल्टी, यहाँ तक बिजली के कनेक्शन भी कट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को पर्सनली मॉनिटर भी कर रहा है। तो सभी लोग इस मुहिम के साथ जुड़ें और जल्द से जल्द कोशिश करें कि कैसे अपनी यूज़र फीस टाइम पे देनी है, अपने घर में कूड़े को सूखे और गीले को अलग अलग रखना है, और म्यूनिसिपल बॉडी के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें ताकि आपका शहर साफ रहे। यहाँ पर जितना भी इनका रिसोर्स आता है, जो इनका ओन सोर्स रेवेन्यू है वो भी है, और ग्रांटेड में भी इनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे एजेंसीज एंगेज की जा चुकी हैं जो कि यहाँ पे मैन पावर अपनी लगाएंगी और पर टन के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। तो वो जो उनको पैसा मिलेगा रोज का, उसके बेसिस पे वो यहाँ पे एमआरएफ को खुद चलाएंगे और मैन पावर भी वही लोग लेके आएंगे, ताकि एक प्राइवेट एजेंसी के लगने से यहाँ पे एफिशिएंसी भी निकलेगी और रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। कुलगाम मेरे को लगता है बहुत ही हाई पोटेंशियल की जगह है, आपके डीसी साहब भी इसमें बड़े पेन्स ले रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एरिया को साफ रखें, अपनी म्युनिसिपल बॉडी के साथ कोऑपरेट करें, और जितना भी हमारा कूड़ा होता है उसको म्युनिसिपल गाड़ी में ही फेंकें, ताकि शहर में इस तरह के

0: एफिशिएंसी भी निकलेगी और रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। कुलगाम मेरे को लगता है बहुत ही हाई पोटेंशियल की जगह है, आपके डीसी साहब भी इसमें बड़े पेन्स ले रहे हैं, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एरिया को साफ रखें, अपनी म्युनिसिपल बॉडी के साथ कोऑपरेट करें और जितना भी हमारा कूड़ा होता है उसको म्युनिसिपल गाड़ी में ही फेंकें ताकि शहर में इस तरह के इश्यूज आगे ना आए।
1: सभी जिला इंतजामिया कुलगाम ने पिछले चंद बरसों के दौरान जिले के कुर्बोजवार में आलूदा हुए चश्मों और नदी नालों की बहाली का काम सरंजाम दिया। इस मुहिम के तहत पानी के इन जखायर को आलूदगी से पाक करके इनके पानी को एक बार फिर काबिल इस्तेमाल बनाया गया। जिला इंतजामिया ने चंद बड़े देहात के लिए फजला जमा करने वाली वैन सर्विस भी चालू की और अब जिले के अक्सर बेशतर देहात पॉलीथीन और दीगर फजले की आलूदगी से पाक हो रहे हैं। जिला इंतजामिया की इन कोशिशों की अवामी सतह पर जबरदस्त जीराई हो रही है और लोगों का मुतालबा है कि गांव देहात को साफ और पाक रखने के ताल्लुक से बाजाबता तौर एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए ताकि जमीन को पॉलिथीन की कसाफत से पाक बनाया जा सके। हमारे नुमाइंदे ने जिले के चंद बाशिंदगान के साथ बात की तो उन्होंने अपने तासुरात यूं बयान किए।
2: सफाई के हवाले से हम बात करेंगे, ये जो इनिशिएटिव FSTP के तहत गवर्नमेंट ने ले लिया है ये एक बहुत ही बड़ा इकदाम है। इसमें जो हमारे वाटर बॉडीज थी वो गंदी हो जाती थी, जो हमारी जमीन थी जो जरखेज थी वो खराब हो जाती थी, क्योंकि ये जो वेस्ट है खासकर प्लास्टिक वगैरह सदियों ये खत्म ही नहीं होता है, इसलिए अगर इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए साइंटिफिक तरीके से ये बहुत ही बड़ा इकदाम है, बहुत ही बड़ा कदम है गवर्नमेंट की तरफ से।
3: सफाई मुतलिक हर कुछ फर्ज अख सपदन के अस पज पन ओंद पुख माहौल साफ शफाफ थो जम सोन जनरेशन पे गए बुरा असर पे खासकर सठा शुक्रिया कर चूंकि एडमिनिस्ट्रेशनों एडमिनिस्ट्रेशनों सान खुद बलदियाती सर्विस थो तक मे गाड़ी थे डोर टू डोर कलेक्शन कर और चाहे अर्बन या रूरल लकन तजे कॉपरेट कर म्यूनसपलिटी सैनिटेशन वर्कर प्रमित डोर टू डोर काम कर तम तॉपरेट कर पजन कल ओंद पुख एरिया साफ थोन यम सोन माहौल शुभन तो लुभन रोजे शुक्रिया कर कुलगाम एडमिनिस्ट्रेशन जन डैम्पिंग साइड बन सैनसी तौर यो टेक्नोलॉजी बनो गवर्नमेंट इंतजामिया पे अत जोर दिन ताकि अच्छे सहूलियत उत वादने खतर तो रोजे ये ओंद पुख माहौल साफ।
4: मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली जो हमारे ACD साहब है बिलाल अहमद कामगार साहब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि पहला ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है रूरल सेटिंग में एंड कुलगाम पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जहाँ पे ये FSTC प्लांट स्टार्ट हुआ है। और जब हम सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा FSTP की, क्योंकि जो लोग जब सकर्स यूज करके लैट्रीन्स या वॉशरूम्स क्लीन करते थे फिर वो ज्यादातर देखा जाता था कि उनको ईजी होता था उन सकर्स को ये सारा जो वेस्ट निकलता था पूरा डंप करते थे इधर इन वाटर बॉडी या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी पब्लिक डीलिंग बहुत होती थी।
1: इसके साथ ही जिलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरानी आला तारिक राथर, तरतीब तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौशकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नूरुलैन इशरत, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
5: समीन आप डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर समाप्त कर रहे थे। यह हमारे शब खबर की पेशकश थे, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं समीन, आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज हिंदी खबरों के लिए।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। CBI ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच CBI को सौंपने का फैसला, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वर यादव ने 2 पदक जीते।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: होल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है।

0: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect।
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3rd भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। US एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं

0: और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
1: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
2: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये छा आकाशवाणी श्रीनगर समय ने मोहतरम वरियो के कशिर बद बोझाओ।

0: ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इख्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफे को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए इत्तिलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत ने खरीफ फसलों की MSP में इसलिए इजाफा किया है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की माकूल कीमत को यकीनी बनाया सके। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को दी जाने वाली तखमीना रकम 2,60,000 करोड़ रहेगी। उन्होंने कहा कि इस सीजन के दौरान 824,00,000 मैट्रिक टन से ज्यादा फसलों के अंदाजन सरकारी खरीद की जाएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि सूरजमुखी के बीज के लिए सबसे ज्यादा 622 रुपये फी क्विंटल कम अज कम इमदादी कीमत की तजवीज पेश की गई है, जिसके बाद कपास के लिए 557 रुपये फी क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपये फी क्विंटल की तजवीज है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824,00,000 मैट्रिक टन LMT।
0: मरकजी काबीना ने 37,500 करोड़ के अखराजात से जमीन की सतह के करीब पाए जाने वाले कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने के प्रोजेक्टों को फरोग देने की एक स्कीम को मंजूरी दी है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इत्तिलात और नशियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्कीम भारत के कोयला और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोग्राम को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने की जानिब एक बड़ा कदम है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि स्कीम सिर्फ कानकरनी के शोबे से सालाना 6,300 करोड़ की आमदनी पैदा करेगी और मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी हालात के दौरान आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम को भी मजबूत करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से कोयले की पैदावार वाले इलाकों में तकरीबन 50,000 रोजगार के मौके पैदा होने की तवक्को है। मरकजी काबीना ने सरकारी व निजी शराकतदारी के तहत निजी शराकतदार के जरिए तवील मुद्दती लाइसेंस हासिल करके नागपुर बैन अक्वामी हवाई अड्डे की जदीदकारी और तजीनकारी की मंजूरी दी है। काबीना की मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए इत्तिलात नशियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम नागपुर हवाई अड्डे को इलाकाई हवाई हवाबाजी के मरकज में तब्दील करने की खातिर एक अहम संग मील है। इस काम को मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर MIHAN प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया जाएगा। GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GNIL नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बैन अक्वामी हवाई अड्डे को आलमी मेयार की सहूलतों में तब्दील करेगी। मरहलावार तरक्याती प्रोजेक्ट के तहत मस्कूरा हवाई अड्डे की सालाना मुसाफिरों को संभालने की गुंजाइश 3 करोड़ तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है, जिससे ये वस्ती भारत का एक अहम हवाई अड्डा साबित होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी काबीना की जानिब से मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की कम से कम इमदादी कीमत में इजाफे का फैसला मुल्क के करोड़ों किसानों के लिए जरी पैदावार की मुनसिफाना और मुनाफे बख्श कीमत को यकीनी बनाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि यह फैसला मुल्क के किसानों की जिंदगी में मजीद खुशहाली लाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अहमदाबाद सरखेज धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट से मुतालिक काबीना का फैसला मुल्क के रेलवे जदीदकारी के सफर में एक अहम संग मील है। वजीर आजम ने कहा कि काबीना से मंजूर शुदा जमीन की सतह के करीब के कोयले और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोजेक्टों को फरोग देने की स्कीम तवानाई की यकीनी फराहमी को मजीद मुस्तहकम करेगी, सरमायाकारी में इजाफा करेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। मरकजी तहकीकती ब्यूरो यानी CBI ने नीट UG 2000

0: 26 इम्तिहान से मुतालिक मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक के मामले में 5 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 मुलजिमों में से 3 का ताल्लुक जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 का ताल्लुक नासिक से है। फिलहाल मुतअद्दिद दिगर मुश्तबा अफराद की जांच की जा रही है। एजेंसी ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर भी तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी ने मोबाइल फोन समेत मुतअद्दिद काबिल एतराज अशिया और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। एजेंसी राजस्थान के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप के साथ भी मिलकर कार्रवाई कर रही है, जिसने मामले की शुरुआती जांच की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी जुमे को मुत्तहद अरब इमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने मुतला किया कि अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी जुमे के रोज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ खास तौर से तवानाई के सिलसिले में इश्तराक समेत बाहमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 मुल्कों का दौरा करेंगे, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात और 4 यूरोपीय ममालिक नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। वज़ीर आज़म के दौरे का आगाज 15 मई से होगा, जिसके तहत वो यूएई पहुंचेंगे, जहां वो यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ तवानाई में इश्तराक पर बाहमी बातचीत करेंगे।
0: जनाब जॉर्ज ने कहा कि अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत वजीर आजम उसी दिन नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इस दौरान जनाब मोदी शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम रॉब जेटन्स के साथ बातचीत करेंगे। अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत जनाब मोदी इतवार के रोज स्वीडन पहुंचेंगे। वजीर आजम ने मोदी की ईंधन के इस्तेमाल में कमी की अपील का गहरा असर देखने में आया है, जिसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। वजीर आजम ने इसकी नज़ीर कायम करते हुए खुद अपने काफिले का हजम नुमाया तौर पर कम किया, जिसके बाद बीजेपी के कई वज़राए आला और दिगर रहनुमाओं ने भी इस तर्ज अमल को अपनाया। वजीर आजम की अपील को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरकारी गाड़ियों के काफिले में फौरी तौर पर 50% कमी करने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भी ऐलान किया कि वो अपने काफिले में कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और अपने वजीरों को भी ऐसा करने को कहा है। उन्होंने आवाम को सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की भी तरगीब दी। मगरबी एशिया में जारी तनाजे के दौरान वजीर आजम ने इतवार को अवाम से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने और जर मुबादला की बचत के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की थी। वजीर आजम ने मोदी ने हरियाणा के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी के की कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस जीत ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि अवाम ने तरक्की और बेहतर हुक्मरानी की पॉलिसियों पर अपना मुसलसल एतमाद जाहिर किया है। वजीर आजम ने कहा कि ये कामयाबी इस बात की भी अलामत है कि हरियाणा के अवाम रियासत की डबल इंजन हुकूमत पर भरपूर एतमाद रखते हैं। वजीर आजम ने उन तमाम पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी जिन्होंने बीजेपी की इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फलों, सब्जियों, तिलहन, गजाई अजनास, मवेशियों के इस्तेमाल की अशिया और दिगर लाजमी मसनूआत की बैन रियासती नकल व हरकत पर तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। साबिक टीएमसी हुकूमत ने इन अशिया पर पाबंदी आयद की थी। इख्तदार में आने से कबल बीजेपी ने किसानों को पाबंदियां हटाने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने टीचरों, म्यूनिसपैलिटी और कोऑपरेटिव की भर्ती में हुए घोटाले के मामलों को मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई के हवाले करने का फैसला किया है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने आज टीएमसी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसने बदउनवान अफसरों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत ने उन अफराद की मुलाजमत भी खत्म कर दी है जिन्हें टीएमसी हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत दी थी। आसाम हुकूमत इस माह की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला

0: विश्व शर्मा ने नई मुद्दतेकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब शर्मा ने कहा कि आसाम असेंबली का खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनाकिद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यकसां सिविल कोड बिल असेंबली इजलास के आखिरी दिन पेश किया जाएगा। इस इकदाम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बन जाएगी। मणिपुर में आज सुबह तकरीबन 10:10 पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 बोलेरो गाड़ियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 4 दिगर जख्मी हो गए। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि अमरीका में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट से चुराए गए 3 भारतीय नवादरात की वतन वापसी का मकसद भारत के सकाफती विरसे की हिफाजत है। नई दिल्ली में इन तारीखी नवादरात की वापसी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये कोशिश अजायब घरों में अखलाकी उसूलों को मजबूत बनाने के लिए भारत के अज़्म को जाहिर करती है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है, उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए आज बीजिंग पहुंचे हैं। कल शुरू होने वाली अपनी 2 रोजा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त, तिजारत और मसनूई जहानत समेत अहम मामलों पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आज गांधीनगर में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 तमगे जीते, जिसमें चांदी और कांसे का एक एक तमगा शामिल है। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलोग्राम स्नैच जुमरे में चांदी का तमगा जीता और फिर मजमूई तौर पर 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने बैंकॉक में मुनाकिदा सिंगल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुतालिक 37,500 करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने की भी मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी के वज़ीर आला और दिगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

दोस्तों, रात का ये पहर, खामोश फ़िज़ा और दिल में किसी की यादों की हलचल, ऐसे में अगर एक बेहतरीन गज़ल का साथ मिल जाए तो ज़िंदगी थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे जिसके लिए आसमान से गिरते हैं।

0: प्रोग्राम की पहली कॉल सुनते हैं। हेलो महफिले गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैम आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कौन
1: बस
0: है और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैं औरन हाल अनंतनाग से एजाज सूफी बात कर रहा हूँ।
0: जी एजाज साहब, कैसे हैं आप?
1: बस अल्लाह के फजल से ठीक है।
0: तो गजलें सुनते हैं आप?
1: हाँ
0: क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी?
1: बस अपने काम में मसरूफ रहते हैं मैम।
0: जी, तो कौन सी गजल आप आज सुनना चाहेंगे?
1: गुलाम अली एक हमें तो अब भी वो गुजरा जमाना याद आता है, तुम्हें भी क्या कोई दीवाना याद आता है।
0: जी, हम आपके लिए ज़रूर ये गज़ल पेश करेंगे। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चंद साथी भी हैं मैं मेरे
0: जी
1: साथ।
0: जी बताइए।
1: पहले उरनहाल बनगाम से फहीम उल हक,
0: जी
1: टेलर बशीर अहमद खांडे, गुरी बिजबारा से फारूक अहमद इत्तू,
0: जी
1: और है मेरा बेटा सूफी इमाद, और है मेरी सूफी आलमा।
0: जी बिल्कुल, आपके लिए और आपके साथियों के लिए हम ये गज़ल ज़रूर

0: हेलो महफिल गजल।
1: हेलो महफिल गजल, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
1: जी तू छो ठीक?
0: अहन अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बुश बख्श बला बाणी पोरा पे मोहम्मद अल्ताफ दार जना।
0: जी बिल्कुल, वनवज कुस गजल छु यसान तू आज बोजिन?
1: जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह की आवाज का जरूर जना।
0: जगजीत सिंह तो चित्रा सिंह ने आवाज मंज। बिल्कुल, हम आपके लिए जरूर ये गजल जो है पेश करेंगे। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो महफिल गजल।
1: सलाम अलैकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कमल शो
1: शफात कर
0: जी। शफात साहब, आपकी क्या क्या मसरूफियात रहती हैं?
1: हम पश्मीने के साथ करते हैं मैम।
0: जी जी बिल्कुल। तो आप गजलों के शौकीन हैं?
1: हाँ बिल्कुल मैम।
0: जी, तो कौन सी गजल आज आप सुनना चाहेंगे?
1: मुझे सुनना है, ये गाई है, गजल गई गुलाम अली ने,
0: जी
1: इतना टूटा हुआ कि छूने से बिखर जाऊंगा।
0: जी बिल्कुल, आपके लिए हम ये गजल जरूर पेश करेंगे। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो महफिल गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम दीदी। दीदी
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इम्तियाज अहमद मलिक बेगम बड़गाम से फोन कर रहा हूँ। मैंने बहुत साल बाद आज फोन किया है, 3 साल के बाद दीदी इस
0: जी
1: प्रोग्राम में।
0: जी तो आपका हम खैर मकदम करते हैं इस प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं कि आपकी कॉल अब हमें आती रहेंगी। तो आज आप किस गजल की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: गुलाम अली साहब की आवाज में एक गजल है
0: जी,
1: ये कौन आ गई दिल रुबा महकी महकी।
0: जी बिल्कुल, हम आपके लिए ये गजल जरूर पेश करेंगे।
1: मेरे दोस्त हैं मेरे साथ
0: जी, बताएं।
1: मेरा नन्ना सा बेटा अनस इम्तियाज
0: जी
1: और मेरा मोहम्मद इकबाल मलिक।
0: जी जी, आपके लिए और आपके साथियों के लिए गजल जरूर पेश करेंगे। आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। आपका भी शुक्रिया। सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, महफिल गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं
1: जी? मैं नईम मलिक बात कर रहा हूँ मैडम जी, वड़गाम बीरवा बड़गाम।
0: जी नईम साहब, कैसे हैं आप?
1: अल्लाह ताला का फजल करम होना चाहिए। आप मैडम जी, आप बताए आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं होनी चाहिए। तो नईम साहब, कौन सी गजल की फरमाइश आज आप करना चाहेंगे?
1: जी गजल की फरमाइश, ये जो गजल की बोली, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए ये गजल जरूर पेश करेंगे। आपके साथ आपके कोई साथी हैं?
1: सबसे पहले आप ही सुनेंगे हमारे साथ, और मेरा भाई रियाज अहमद मलिक, दो सिस्टर बरानी तबसुम, और दिल के साथ जान भी सुनेंगे हमारे साथ, और नौ पर चाड़ो रहे उसका नाम खाल दे जी, जान भी सुनेंगे और मिलजुल कर आकाशवाणी से हमारे साथ इस गीत को एंजॉय करेंगे।
0: जरूर, हम आपके लिए आपकी पसंद की ये गजल पेश करेंगे, आप सुनिए। और आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो महफिल गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम जी।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
1: लाल हुसैन गोजर पाल पंजर से बोल रहा हूँ
0: जी। कैसे हैं आप
1: जी? आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: शुक्र खुदा का। आप ठीक हो?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, क्या मसरूफियात रहती हैं आपकी?
1: बस मैं यही काम में बिजी। और
0: ठीक है, तो बताइए आज आप कौन सी गजल सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे सुनना है ना, बेवफा मुस्कुराना याद आने के काबिल नहीं। साथियों का नाम बताना है?
0: जी जी बिल्कुल, आप बताएं कौन से साथी आपके साथ हैं?
1: जलालुद्दीन गोजर, रियाज अहमद गोजर, नजीर अहमद गोजर और मंजूर अहमद गोजर।
0: बिल्कुल, हम आप सबके लिए ये गजल जरूर पेश करेंगे। आप सुनिए आपकी पसंदीदा गजल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

तो दोस्तों, इस गजल के साथ ही अब आज के इस प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ चाहता है। इसी महफिल में अगली बार आपके साथ फिर से मुलाकात होंगी। जब तक के लिए आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह हाफिज़।

0: سمعین اردو غزوں سے ترتیب دیا ہوا فونین پروگرام آپ سماعت کر رہے تھے. ہیلو محفل غزل. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھیں فرزانہ. یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے جبکہ 11 بج رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاش وانی دلی کے اسٹوڈیوز ہندی اور انگریزی خبروں کے لیے.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है.
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से. और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है. मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है. श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है.
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी. 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे.
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का

0: राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnav said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for Kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that crores of food providers in the country receive fair and profitable prices for their produce. In a social media post, Mr. Modi said that this decision will bring greater prosperity

प्रोग्राम सुबह ही सदा नशर होता है सुबह के 10 बजे। कल का प्रोग्राम सूफी शायर प्रकाश राम भट्ट से मुतालिक है। तहरीर व आवाज गुलाम रसूल आखून। समीन पाम सुबह की नशियात में सुबह के 10:30 पर मेहमान होंगी साइमा अहद, KS ऑफिसर। उनसे हम कलाम होंगी रिफत आरा और लाहूत फरहान। समीन सूफियाना मौसिकी समाप्त करें सुबह के 11:30 पर। पेश करेंगे उस्ताद गुलाम मोहम्मद साज नवाज और साथी मकामी तोदी। इन्हीं से मकाम रिहावी दिन में 2:30 समाप्त करें। खातीन की महफिल सजेगी प्रोग्राम बज़्म-ए-निस्वां में दिन में 12:40 पर। प्रोग्राम कायदारियाँ पेश करेंगी शहनाज रहीम। NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नश्र होगा 1:10 पर। समीन सपहर 3 बजे फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम नश्र होता है। पहाड़ी प्रोग्राम 4 बजे चलत गुलाम नबी डोलवाल और साथी पेश करेंगे 4:45 पर कलाम जानबाज। गोजी प्रोग्राम रोज की तरह शाम के 5 बजे नश्र होगा। समीन देहाती भाइयों के लिए प्रोग्राम नश्र होता है गर्मी बायन हिंदी खद्र शाम के 6:05 पर। हालात वाकत पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन रोज की तरह शाम के 7 बजे और प्रोग्राम वादी की आवाज़ का वक्त रहेगा रात के 8 बजे। समय ने थी तफसील हमारे यहाँ से कल नशर होने वाले प्रोग्रामों की। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.1 मीटर के अलावा FM 103.5 MHz पर। समीन शब के 11:14 हुए हैं। हमारी आज की नशियात अब अपने अख्तिताम को पहुंच रही है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शब बख़ैर। जय हिंद।

0: से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14

0: खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम में 189 करोड़ रुपए के मिजोरम अदरक मिशन की शुरुआत की। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहुमा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा है कि ये मिशन कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों की योजनाओं के साथ मिलकर शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कल ये मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 3 विकेट पर 161 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ।

तेरे बगैर जीने में रखा क्या है, तेरे बगैर जीने में रखा क्या है, तू नहीं तो दुनिया में रखा क्या है, और तुमसे बिछड़कर भी जिंदा रहना, इससे बड़ी मेरे लिए सजा क्या है।

बिन तेरे कुछ भी नहीं जिंदगी मेरी, बिन तेरे कुछ भी नहीं जिंदगी मेरी, आ दो पल पास बैठ कर मेरे, कर दे पूरी जिंदगी की घड़ी। वैसे मुकम्मल ना हुई ये जमीन।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष

0: कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
0: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों, समय हुआ है 12:31 और 5 सेकंड। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है निशिगंधा और मैं हूँ आपके साथ अंजू।

तुम्हारे सिवा इस दिल को कहां कुछ और चाहिए, ख्वाब हो या हो हकीकत, मुझे तो बस तुम ही चाहिए। जो तुम मिल जाओ जिंदगी में, तो फिर इस जिंदगी से कहां कुछ और चाहिए।

तुम्हें क्या पता कि जब भी उठती हैं निगाहें उनकी, इस दिल में एक हलचल सी मच जाती है। बिना कहे कुछ वो सब कुछ कह जाते हैं और हमारी धड़कन यूं ही बस थम जाती है।

फूलों से कहो कि वो महफिल सजाएं, फूलों से कहो कि वो महफिल सजाएं, मेरे दिलबर की राहों को महकाएं। जिंदगी में बहार आई है उनके आने से, और इन धड़कनों से कहो कि वो जरा धीरे गाएं।

सभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार एक बजकर 10 मिनट पर फिर से आपसे मिलेंगे गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को किसानों की आय बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नई सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की

समय हुआ है 1:11। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने, जिस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अपने बहुत ही मधुर गीत। रहेगा मेरा यानी अंजू का साथ और उम्मीद करती हूं कि ये सफर बहुत अच्छा गुजरेगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

तेरी यादों में खोकर मेरी रातें और भी सुहानी हो जाती हैं। तेरी यादों में खोकर मेरी रातें और भी सुहानी हो जाती हैं। चांद के नीचे बैठकर आज मैंने फिर से तुझे याद किया।

तेरी मेरी प्रेम कहानी खामोशी में ही लिखी गई। तेरी मेरी प्रेम कहानी खामोशी में ही लिखी गई। नजरों ने जो बात कही वो जुबान से ना कही गई। तेरे साथ हर लम्हा जैसे एक इबादत सा लगता है और तेरी एक मुस्कान में ही मेरी पूरी जिंदगी संवर गई।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, बेचैन इस कदर था कि सोया ना रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर।

तुम देख लेना, न छोड़ेंगे कभी साथ तुम्हारा, साया बनकर साथ चलेंगे हम, धूप हो या घना अंधेरा, हर हाल में संग रहेंगे हम।

मोहब्बत का तरीका मैंने सबसे छुपा रखा है, मोहब्बत का तरीका मैंने सबसे छुपा रखा है, जिक्र हर बात में तेरा है, बस तेरा नाम छुपा रखा है।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल कार्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 8 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से अंजू, लेकर आई हूं बहुत ही मधुर और सुरीले गीत। रहिए इस सफर में मेरे साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, और ना हो निगाह में शोखी तो फिर ये दिलबरी क्या है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

देखो तो जरा इस तारों की बारात को, सजाया है खुदा ने इस रात को। मेरा दिल तुझसे बस यही कहता है कि कभी खोना मत इस साथ को।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। भारती लेकर आएंगे कार्यक्रम हमराही। मुझे अनुमति दीजिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार से मेडिकल पाठ्यक्रमों में नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने और राज्यों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से नतीजे देख सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स

समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की, लेकिन आप सबका मैं प्यार भरा स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमराही में। पहला गीत सुनते हैं फिल्म पुकार से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। शुरुआत ही कर लेते हैं इस कार्यक्रम इस प्यारे से गीत के साथ।

किस्मत की बाजी में छुपे एहसास जैसे दिल को ये यकीन दिलाते हैं कि सच्चा प्यार हर हाल में अपना रास्ता बना ही लेता है।

प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है, इस सवाल में वही मासूम बेचैनी है जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कना सीखता है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1।

प्यार में मीठी शरारतें रिश्तों में हंसी और मोहब्बत के रंग भर देती है, और यही शरारतें रिश्ते को और गहरा बना भी देती हैं।

चांद और तारों की चमक। चांद और तारों की चमक यही कहती है कि जब साथ अपनों का हो तो पूरी दुनिया भी किसी खूबसूरत ख्वाब जैसी लगने लगती है।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए आपसे ले रही हूँ अनुमति और कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। वे ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच जारी है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आज 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित करेगी। परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों में नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnav said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesame. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2461 rupees per quintal, for jowar hybrid it will be 4023 rupees per quintal, for bajra the MSP will be 2900 rupees and for Tur it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEEA, has approved

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस प्यारी सी गीत के साथ। गीत है फिल्म पायल की झनकार से सुलक्षणा पंडित और यशुदास की आवाज में, गीतकार राजकमल, संगीतकार माया गोविंद।

इस गीत के गीतकार SH बिहारी और संगीतकार OP नायर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म सत्य पे सत्ता से आशा भोसले, किशोर कुमार, बासु, RD बर्मन, भूपेंद्र सिंह और स्वपन चक्रवर्ती की आवाज में, गीतकार गुलशन बाबरा और संगीतकार राज NCP।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा अरुणिमा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं अगला गीत, फिल्म दोस्ताना से मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति के साथ और यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 5:10 पर फिर से मुलाकात होगी प्रोग्राम भोर सुहानी में। तब तक के लिए आनंद लीजिए इस लास्ट जो हमारी प्रस्तुति है उसका, जिसको अपनी आवाज से सजाया है अनुराधा पोटवाल ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धुलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना

0: योजना देश की रेल संपर्क यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मालदीव और चिली के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय वार्ता की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। असम सरकार इस महीने की 26 तारीख को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को ये जानकारी दी। श्री शर्मा ने कहा कि असम विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायक शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि सत्र के अंतिम दिन यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे, जिसके लिए वे कल अबुधाबी पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कल से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ जारी युद्ध के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की गुप्त यात्रा की और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। इसकी पुष्टि आज उनके कार्यालय ने की। प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। बयान में कहा गया है कि इस बैठक से इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हालांकि इस प्रगति से जुड़े किसी विशेष विवरण का खुलासा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर मुकाबला जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सिंग टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क की अमाली शूल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियनशिप किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाश by Ashish Abraham. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved increase in minimum support prices for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce.
2: किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया।
3: अ मेजर डिसीजन वॉज टेकन फॉर फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप। द एमएसपी हैज बीन फिक्स्ड एट कॉस्ट प्लस 50% और इवन हायर। विद दिस डिसीजन फार्मर्स विल रिसीव अ टोटल पे आउट ऑफ 2,60,000 crore रुपीज। द एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट फॉर दिस ईयर विल बी 824 लाख मेट्रिक टन।
2: खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम भोज।

फूल हमें सिखाते हैं मुस्कुराना, हालातों पर नहीं, अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। खुशबू बांटते रहिए, दुनिया अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी।